الشعر وما

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

I'm good.

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या कि ये मुझे।
2: I love FM 101.

आऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा। मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। यौम फजाइया आज कौमी फख्र के साथ मनाया जा रहा है, जिसका मकसद सितंबर 1965 की जंग में भारतीय जारियत के खिलाफ मुल्क की फजाई हदूद का दिफा करने वाले मुहाफिजों की बहादुरी को खराज तहसीन पेश करना है। वजीर आजम की बहरी असलाहत की टास्क फोर्स के तहत पाकिस्तान के बहरी शोबे में खुद इन्हसारी की जानिब नुमाया पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर की हैसियत से मुतालिक भारत के बेबुनियाद दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। और अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की जानिब से आयद मुसलसल पाबंदियां अवाम तक इमदाद पहुंचाने में बड़ी रुकावट बन गई हैं।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

दिल मुब्तला है कब से अजाबे सुकूत में, तू रब्बे नुतको लब है मुझे बोलना सिखा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम लाहौर। वेलकम, खुश आमदीद जी आनु एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लाइव ऑन एयर स्टूडियोज में। हमेशा की तरह आप सुनेंगे प्रोग्राम लेडीज लाउंज मेरे यानी के साथ या रफीक के साथ। एवरी मंडे हम और आप होते हैं साथ 11 से लेकर ठीक 1 बजे तक। तो जनाब उसी खूबसूरत से साथ को निभाने के लिए एक बार फिर से मौजूद हैं हम आपके साथ। कहिए कैसे हैं आप।

वेल वेल वेल वेल, उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप सब लोग, हंसते गाते मुस्कुराते हमारे साथ साथ होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को और वेदर को लाहौर के, जो कि बहुत बदल रहा है। और जनाब, दो दिन बारिश के बाद आज अगेन ऐसा लग रहा है कि बारिश तो हुई नहीं इतनी गर्मी, इतनी धूप बाहर। और जनाब, जो टेम्परेचर की बात करें तो दैट इज़ 33 डिग्री सेल्सियस ऑन द स्केल एज पर रिकॉर्डेड एट 11 AM। आज के दिन के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्रीज, जबकि कम से कम टेम्परेचर 27 डिग्रीज रहने की उम्मीद की जा रही है। 33 डिग्री सेल्सियस ऑन द स्केल एज पर रिकॉर्डेड एट 11 AM। आज के दिन के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर

Anyhow, जनाब, let's hope for good. और बहुत सारे लोग ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जनाब इस दफ़ा शायद सर्दियाँ कुछ जल्दी आ जाएं, लेकिन कौन क्या कहे पता नहीं चलता. जैसे पिछले शो में भी हम यही बात कर रहे थे कि पूरा हफ्ता सिर्फ और सिर्फ धूप और सूरज दिख रहे थे हमें, लेकिन हुआ क्या कि वीकेंड आते आते इतनी बारिश हो गई. सो मशीनों पे हम कहाँ तक डिपेंड कर सकते हैं. मशीनों की भी एक हद होती है, कहीं ना कहीं जाके उनकी बस हो जाती है, क्योंकि नेचर हमेशा सरप्राइज करने को तैयार रहती है. सो गम ना करें, दुख ना करें. अगर आपकी प्रिडिक्शंस मशीनों की बेस पे अगर कभी गलत हो भी जाए तो कीप एंजॉयिंग, कीप लिसनिंग FM 101. इस ट्रैक से आगाज करें, वापस आते हैं लौट कर. स्टिक अराउंड, दिस इज FM 101.

sorry listeners, welcome back once again. Lord Cratchy Cap ke saath ek bar phir se. रस्ते में सफर में जो लोग हमें सुन रहे हैं और हमारे साथ साथ हैं, आपसे कहेंगे हैव सेफ वे, बहुत एहतियात से, बहुत देखभाल कर दाएं बाएं आगे पीछे जहां तक आपकी नजर जाती है घुमा लीजिए और इत्मीनान कर लीजिए कि आप ठीक जा रहे हैं, आपके आसपास के लोग भी ठीक जा रहे हैं. बी केयरफुल और ट्रैफिक के रूल्स को हमेशा फॉलो करते हुए चलें.

charge na especially उन तमाम खवातीन को, उन तमाम बच्चियों को, यंग गर्ल्स को जो आजकल राइड करती हुई नज़र आती हैं सड़कों पे, आई वुड से कि मोर पावर टू यू. बस कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहिए, अपनी जगह बनाते रहिए. मुझे ज़ाती तौर पे पर्सनली बहुत खुशी होती है जब मैं लड़कियों को इंडिपेंडेंटली ड्राइव करते हुए, मूव करते हुए देखती हूँ. जनाब आज कुछ सरप्राइजेस भी हमारे साथ साथ हैं, और वो सरप्राइजेस क्या हैं आपको बताते हैं. कुछ लोग हमारे साथ हैं जनाब स्टूडियोज में मौजूद जो आपको ज्वाइन करेंगे, मिलजुल कर करेंगे जनाब आज हम बातें. और लेडीज लाउंज जो है वो एक्चुअली में लेडीज लाउंज बनने जा रहा है. सो आई होप आप लोग भी इंजॉय करेंगे और हमारे साथ साथ रहेंगे. आप लोगों से बात होगी ऑफ एयर. 04221000101 इज द नंबर. facebook.com/fm101 लाहौर इज द पेज जिस पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. हमारा शो अपडेट आपको मिल जाएगा वहाँ पे. Right now we're heading towards another song. ये song play करते हैं, वापस आते हैं, बात करते हैं आज के topic पर.

0: This is FM 101.
1: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

जी तो जनाब लौट कर आ चुके आपके साथ एक बार फिर से FM 101 रेडियो पाकिस्तान

0: और मुझे कहते हैं सातिया रफीक। हमारे साथ तो दो और लोग मौजूद हैं जनाब, पोटेंशियल आरजेस। और आप लोगों से मुखातिब होंगी अभी साइमा और मैमूना। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं।
0: कैसे जज्बे हैं?
1: सॉरी,
0: कैसे जज्बे हैं आपके?
1: जज्बे जवानों वाले इतनी उरूज पे।
0: ऑलराइट, माइक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अब बोलिए दोबारा। जी जी जी जी,
1: दीदनी उरूज पे,
0: दीदनी है उरूज पे हैं, बिल्कुल सही। और मैमूना के?
2: मैंने ये कहा था कि हमारे जज्बे बिल्कुल जवानों वाले हैं, जैसे वो जो एक गर्म जोश नहीं होता।
0: जवानों वाले से क्या मुराद है? आप मतलब जवान हैं तो
2: बताना चाहती हूँ कि हम जवान हैं। सुनने वाले को बताना चाहते हैं।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, और जो सुनने वाले हैं वो बहुत तेज हैं, वो पहचान लेते हैं
2: आवाज से
0: पहचान लेते हैं।
2: आवाज की यही ताकत है,
0: यही ताकत है। सो वो कहते हैं रेडियो पर तस्वीर आपके तखय्युल की। सो तखय्युलात की दुनिया में जो लिसनर्स होते हैं, स्पेशली वो चूँकि सुन रहे होते हैं मुझे और आपको ही नहीं, बहुत सारे लोगों को सुन रहे होते हैं, सो दे नो वेरी वेल। एनीवे जनाब, क्या ख्याल था दिल में, क्या सोचा था कि आज जाएंगे तो क्या करेंगे? साइमा बताएं।
3: बस यही सोचा था, पहले तो नाम जब जहन में आया तो कोशिश की कि
0: किसका नाम,
3: आपका नाम जब जहन में आया पता चला कि आपके साथ कुछ लम्हात मिलेंगे शेयर करने के लिए। सबसे पहले कोशिश मैंने यही की कि देखूं कि कैसी दिखती हैं आप, मतलब कि जानना चाह रही थी मैं बेसिकली आपको, बट मुझे शायद उस तरह से नहीं पता चला कि सादिया कौन है, बट आई तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। उम्मीद है कि दो घंटे हमारे बहुत अच्छे जाएंगे
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह
2: इंशाल्लाह।
0: सो राइट, वेल जनाब, आज के दिन हम बात करने वाले हैं, ये सरप्राइज है मैमूना के लिए भी और साइमा के लिए भी, और क्योंकि टॉपिक पे हम बात नहीं कर सके बिफोर एंड आपस में डिस्कस नहीं कर सके, लेकिन इट इज अबाउट प्लांटेशन बेसिकली, विच इज द नीड ऑफ द आवर। और आज हमने अपनी बातों से साबित करना है कि ये कितनी जरूरी है, ठीक है? और अपने लिसनर्स से हम जानना चाहेंगे कि जनाब आपका फेवरेट प्लांट या आपका फेवरेट ट्री कौन सा है, और उसके लिए डायल आपने क्या करना है 0422111001। आप लोगों से बात होती है इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में, आज मैं थोड़ा सा बिजी रही हूँ। तो ये हुआ है कि हमने बात नहीं की, अब तक बात नहीं की है किसी से भी, सो सॉरी फॉर दैट। और स्पेशली जो लोग डायल कर रहे हैं, बार बार डायल कर रहे हैं, आपसे हम कहेंगे बस इंतज़ार थोड़ा सा रह गया।
2: सब्र का फल मीठा होता है,
0: सब्र का फल बहुत मीठा होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। एनीवे जनाब, नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर रहे हैं और इस सॉन्ग के बाद लौट कर आते हैं, करेंगे चिट चैट लेडीज लाउंज में हमारा और आपका साथ ठीक 1 बजे तक।

0: राइट ले जनाब, ऐसा भी होता है. अब मुझे ना तीन तीन फेडर्स एक साथ मैनेज करने पड़ रहे हैं, तो ये देखें हालात मेरे दिमाग के बाकियों के ऑन कर दिए, अपना ऑन करना. सो मल्टी टास्किंग कभी कभी जनाब चैलेंजिंग भी हो सकती है.
1: इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि आप हमें पहले इम्पोर्टेंस दे रही हैं अपने से ज्यादा.
0: Yes, it happens. और स्पेशली हम ख्वातीन के साथ तो ऐसे ही होता है कि हम दूसरों के काम करते करते खुद को भूल जाते हैं,
1: अपनी जात को बाज़ुकात हम नज़रअंदाज कर जाते हैं.
0: जी तो जनाब प्लांटेशन की बात हो रही है, फेवरेट ट्री की और पौधे की बात हो रही है, और अभी ऑफर हमारी ना साजदा साहिबा से बात हो रही थी, हमारी बहुत रेगुलर लिसनर हैं, कॉलर हैं. सो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जनाब कि मेरा फेवरेट जो पौधा है ना वो मनी प्लांट है और एलोवेरा जो है. वो कहती कि जितने ग्रीन ग्रीन किस्म के पौधे होते हैं ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं. सो जनाब हम भी विश करते हैं कि आपको भी खुली डुली जगह मिले, बड़ा सारा घर मिले और ढेर सारे पौधे लगाएं. सो दिस इज द फैक्ट बेसिकली आजकल के दौर में कि हमारे घर इतने कंजस्टेड से हो गए हैं शहरी जिंदगी में रहते रहते कि वो जो खुले खुले सेहनों का एक कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया. जहाँ पे एक दो तीन दरख्त भी लगाए होते थे माओ ने कि छाओं भी रहे, घरों में हरियाली भी रहे, अब वो तो सीन नहीं है. लेकिन ये कि हम अपना शौक बहरहाल प्लांट्स लगा के गमले रख के पूरा कर सकते हैं जहाँ तक मुमकिन है, और करना चाहिए. जो लोग नहीं लगा सकते ज़मीन में पौधा वो कोशिश करें कि अपने आसपास हरियाली रखें, किसी भी सूरत में रखें, बिकॉज दिस इज लाइफ. लाइफ को सिंबलाइज करती है हरियाली जो है, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इतनी खामोशी से क्यों मुझे देख रही हैं?
2: और से सुन रही हूं, आप कैसे
0: नहीं आप बोलें, क्योंकि यहाँ से तस्वीर नहीं जा रही, आवाज जानी है.
1: वो कह रही है कि लिसनर्स में एक और इजाफा करना चाहती है.
0: तो बताएं आपने कौन से पौधे लगाए हैं घर में?
2: मेरी जो वालिदा है वो बेसिकली क्या करती है कि वो जहाँ पे भी जाए, आपने कहा कि हम जब शहरों में आ गए हैं या फिर हमारे जो घर है वो बहुत छोटे हो गए हैं, तो वो कहती हैं कि छोटा घर हो या बड़ा घर हो या हम शहर में हम कहीं भी माइग्रेट कर जाएं, तो उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बेसिकली. तो वो एक ऐसी खातून है जिनको बहुत पौधों से प्यार है. तो अगर कभी आप देखें तो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी भी, तो हरियाली हरियाली है, मतलब पूरा गार्डन जो है ना पूरा बना हुआ है हरियाली है, जो मुख्तलिफ एग्जाम के जो है पौधे वगैरह लगे हुए हैं. इवन तो मुझे उनके नाम भी नहीं आते होंगे, तो देखना पड़ेगा कि कौन कौन से हैं, बट बहुत ज़्यादा हैं डिफरेंट सब्जी वगैरह का, आई गेस हरियाली, वो भी पौधे बहुत अच्छे होते हैं और फूल वगैरह. वैसे पर्सनली बताऊँ तो मुझे गुलाब बहुत पसंद है, मोतिया बहुत पसंद है, और बस.
0: यस जनाब, फूल तो सबको ही बहुत पसंद आते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है. और हमारे घरों में अक्सर जो है वो फूलों को ही जो है वो प्रेफर किया जाता है. लेकिन अभी हम थोड़ी देर में ना किचन गार्डनिंग के हवाले से स्पेशली बात करेंगे. साइमन से भी अभी हवाला दिया सब्जियों का, तो इस पे भी हम बात करते हैं, क्योंकि लेडीज लाउंज में बैठे हैं हम, तो लेडीज वाली सारी बातें करनी है, हमने घरदारी वाली सारी बातें करनी है. सो उसके लिए जनाब आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ साथ, और एक और सॉन्ग हम प्ले करते हैं और इसके बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं. FM 101 के लाइव ऑन एयर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं लेडीज लाउंज, सादिया रफीक, साइमा और मैमूना, हम सब आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ साथ रहिए.

0: This is FM 101.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: Derek listens, we're back. और जनाब बात कर रहे हैं हम आज पौधों की, हरियाली की, सब्ज़ी की, और रौनक लगाने की कोशिश की है हमने, रंग भरने की कोशिश की है अपने शो में. और ये रंग भरता है असल में हमारे लिसनर्स से, जो कि शो का हिस्सा बनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, रौनक आ जाती है, रंग आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं. बोधी जट साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमेशा मौजूद होते हैं, उनकी कॉल जब भी आती है ना, मैं कहती हूँ कि ऐसे लगता है कि हम भी रावी किनारे पहुँच गए हैं. सो एक फील आती है उनकी कॉल में, और वो बात भी इसी तरह से करते हैं कि हम रावी के किनारे से बात कर रहे हैं आपके साथ. तो मैंने उनसे पूछा, जनाब कि बताएं आपने कौन कौन से पौधे लगाए हैं. तो उन्होंने कहा, जनाब कि हमने ढेर सारे दरख्त लगाए हैं, हमने नीम के दरख्त लगाए हैं, कीकर लगाए हैं, हमने टालियाँ लगाई हैं. सो सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. और मैं ये समझती हूँ कि हम सबका फ़र्ज़ है, और स्पेशली आई वुड से कि हमें अपने बच्चों को ये सिखाने की ज़रूरत है, उनके अंदर ये चीज़ें डालने की ज़रूरत है कि पौधे हमारी ज़िंदगी के लिए, हम इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए, एंड स्पेशली इस दुनिया के लिए, इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. और जनाब बात कर रहे थे हम सब्जियों की, तो मेरे जहन में आया जनाब एक पॉइंट किचन गार्डनिंग के हवाले से. इसकी भी बहुत बहुत आजकल जो है वो कॉन्सेप्ट ये चल रहा है, और लोग जो हैं घरों के अंदर ख़ुद से सब्जियां उगाते हैं, और उगानी चाहिए बिकॉज वो ऑर्गेनिक होती हैं. और इससे एक तो आपको जो है अपने किचन के लिए सब्जियां मिल जाती हैं, दूसरा आपको एक मशगला मिल जाता है, एक हॉबी मिल जाती है,
1: और तीसरा ये कि साफ सुथरी चीज खाने को मिल जाती है. मतलब ये कि बाजुकात हमें नहीं पता होता हम जहाँ से ला रहे हैं वो ठीक है नहीं है, कैसे हुई. तो मुझे लगता है जब खुद आप पानी दे रहे होते हैं ना अपने पौधे को, तो खुद आप उसको वो एक तरह से पाल रहे होते हैं बच्चे की तरह. और जब वो एक प्रोडक्ट बन के आपके सामने आती है, तो फिर आपको लगता है कि साफ है.
2: जो हम बाजारों से शहरों में अक्सर औकात लेकर आते हैं, तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि हम लगता है कि कोई मसनूई होगी या इसमें ऐसी कोई चीज़ डाली होगी जिसकी वजह से जो इसकी बेस हमें देखने में वो इतनी अच्छी लग रही है, इतना मोटा ये फल या सब्ज़ी लग गया, जो कि इन एक्चुअल वैसे होती नहीं है. तो जब खुद करते हो और फिर जब आपकी सब्ज़ी लग जाती है, आपका फल लग जाता है, तो उसको आप तोड़ के जब तोड़ते हो ना, आई गेस वो वाली भी बहुत
0: फीलिंग होती है. बिल्कुल,
2: मेरा एक दो दफ़ा गांव जाना हुआ तो लगी हुई थी ऑलरेडी, तो मैंने एक दो बार कुछ फल वगैरह वहाँ से तोड़े, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग में मज़ा भी आता है. और फिर वो जो ख़वातीन हैं जो खुद इसको लगाती हैं और इस पूरे प्रोसेस से गुजरती हैं, उनका जो जज्बा है, उनकी जो खुशी है, वो तो बहुत ही अलग लेवल की होती होगी.
1: ऐसे ही मतलब ये ऐसे है जैसे आप पूरा महीना काम करके आपको सैलरी मिलने वाले दिन जो खुशी होती है ना, ये इस तरह से आप पूरा उस पौधे को पालते हैं, मैंने जैसे कहा ना बच्चों की तरह, रोजाना पानी दे रहे हैं, देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं.
2: हाँ, ज्यादा मेहनत की हुई है. अभी अभी हमने कहा था कि सबर का फल मीठा होता है.
1: हाँ,
2: ऐड कर लिया इसके अंदर.
1: बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, आपके घर कौन से पौधे लगे हैं?
0: मैं पूरी लिस्ट दे के जाऊंगी जाने.
1: अच्छा. मेरे यहाँ पे भी काफी है वैसे.
0: अच्छा, वैसे आप लोगों ने शहरों में किचन गार्डनिंग करते हुए देखा है किसी को?
1: यस. और इवन छोटे छोटे गमलों में भी, गमलों में भी जो है ना,
0: तो जी जी बोले.
1: जब वो अपने टेरेस में जो अक्सर रखे होते हैं, तो उसमें कोई ना कोई चीज, जैसे छोटी मोटी चीजें ना, पुदीना है, धनिया है, वो लोग रियली लगा लेते हैं. और बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि ये चीजें, इस तरह की चीजें वो बाजार से नहीं लेते हैं, रोजाना वो तोड़ते हैं फ्रेश, उसकी खुशबू भी एक सालन में वो एक मजेदार सी आती है, और वो उसको रोजाना की बुनियाद पर जो है वो तोड़ के डाल रहे होते हैं. और इसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे लेमन है, ये हम ग्रो कर सकते हैं, या अंगूर, ये बहुत सारे लोग, ये मेरे अपने घर में भी लगी हुई है, मेरी मामा को बड़ा शौक है, और हमारे घर में कलियां भी लगी हैं. मेरी मामा रोजाना सुबह जो है ना वो फजर की नमाज के बाद जाती हैं बाहर लॉन में, और कलियां तोड़ के जो है वो एक शीशे के बाउल में ला के जो है वो मेन टेबल पे रख देती है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है उसकी खुशबू और इस तरह से.
2: उन्होंने ना एक छोटा सा पोर्शन बनाया हुआ बेसिकली सब्जी का, اس میں بینگن بھی لگائے ہوئے ہیں, اس میں سبز مرچیں بھی لگائی ہوئی ہیں, جس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی ان کو حالانکہ ہے تھوڑی تعداد میں بٹ وہ بہت اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کے. میں ان کو اکثر کہتی ہوں کہ کیا سب کچھ تو باہر سے لیتے ہیں تو یہ کسی کی کیا ضرورت ہے, تو پھر بھی کہتی ہیں کہ شوق ہے تو اس کے مطابق جتنے ان کو ہوتا ہے ان کے شوق کے مطابق بیسیکلی, اس سے ظاہر سی بات ہم گھر کا اتنا کچھ تو نہیں ہوتا بٹ پھر بھی وہ شوق کے مطابق جو ان سے ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت انہوں نے سائڈ پہ لگایا ہوا ہے, تو اس کو دیکھ کے بس ہم بھی دیکھتے ہیں کہ چلو لگی ہوئی ہے ان کو شوق ہے تو پورا کرنے دیں.
0: اور جناب نیکسٹ سانگ کی جانب ہم موو کر رہے ہیں, نیکسٹ سانگ پلے کرتے ہیں اور اٹس 11:50 آن دا ڈائل رائٹ ناؤ. تھوڑی ہی دیر میں ہم نے نیوز بریک کی جانب بھی بڑھنا ہے اور نیوز بریک کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کی لائیو کالز جو ہیں وہ بھی ہمارے شو کا حصہ ہوں گی. سو کی پیلنگ 04221100101 لیڈیز لاؤنج میں ساتھیہ رفیق, سائمہ اور میمونہ آپ کے ساتھ ساتھ.

0: All right, listeners, welcome back for once again. You're listening to FM 101 Radio Pakistan. लेडीज़ लाउंज और जनाब लेडीज़ लाउंज में आज हो रही हैं पौधों की बातें, सब्जियों की बातें, हरियाली की बातें, किचन गार्डनिंग की हम कर रहे थे बातें. सो जिससे कि मुझे अचानक से याद आया कि दिस इज़ द हाई टाइम कि जिस दौर में, जिस महीनों में काश्त होती है, अब सब्जियों का सर्दियों का मौसम आने वाला है तो सर्दियों की जो सब्जियाँ हैं वो इन महीनों में काश्त हो रही होती हैं बेसिकली, ताकि सर्दी आते आते वो बड़े भी हो जाएं, फल भी लग जाएं, पक भी जाएं, पहुंच जाएं लोगों को. सो आप लोग भी ज़रूर एक्सपेरिमेंट कीजिए. थोड़ी सी भी जगह हो, आप गमलों के अंदर बड़ी आसानी से जो है वो सब्जियां उगा सकते हैं. बहुत थोड़ी सी जगह उनको चाहिए होती है, बहुत डीप सॉइल भी नहीं चाहिए होती है, और बड़ी जल्दी जो इसकी यील्ड आपको मिल जाती है ना. फल का दरख्त हम लगाएं तो सालों वेट करते हैं लगा के कि कब बड़ा होगा, कब इस पर फल आएगा. सो सब्जियों के मामले में ऐसा नहीं होता. आप इतनी खामोशी से मुझे क्यों देख रहे हैं?
1: आपके हाथों की मूवमेंट को भी बेसिकली देख रहे हैं कि आप पैडल कैसे ऑपरेट कर रहे हैं.
0: आप सीख रहे हैं?
2: हाँ जी, यस.
0: ऑलराइट, सो जनाब ये हमारे साथ दो स्टूडेंट्स मौजूद हैं. हमने इनको सिखाना है, सिखा के इनको बड़ा करना है.
2: जैसे पौधे को हम बड़ा करते हैं, ये हम आपसे सीख रहे हैं.
0: ये हम पौधे लगा रहे हैं बेसिकली. सो किचन गार्डनिंग के मैंने इतने मज़े के कॉन्सेप्ट्स देखे हैं कि घरों के अंदर ख़वातीन ने किचन की दराज़ों के अंदर थोड़ी थोड़ी सॉइल डाल के उनके अंदर सब्जियां लगाई हुई होती हैं.
2: अच्छा, वैसे मैंने नहीं ये दराज़ों वाला देखा, लेकिन ये कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है.
0: यस यस,
3: न्यू थिंग, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है.
0: कि आपको कोई जगह ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, आप किचन के अंदर ही लगाएं उसको. और आप जो ना धूप आ रही है खिड़कियों से, जैसे हमारे किचन में विंडोज़ होती हैं, विंडोज से धूप आ रही होती है, उनको धूप में मिल रही है.
3: और मनी प्लांट भी ज़्यादातर लगाया जाता है खूबसूरती के लिए, अगर हम हरियाली की बात करें तो. और उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट भी है, आई डोंट नो कि वो सही है, रियल है, कि मनी प्लांट का हम रेफर करते हैं तो मैंने
2: पैसा ज़्यादा आ जाएगा.
3: और मैंने इसका ये भी सुना है कि कहते हैं कि अगर आपने लगाना है बेसिकली और आप इस नीयत से लगाते हैं तो आपको चोरी करके लगाना है. ये मैंने सुना है एग्जैक्टली कि अगर आपने लगाना है तो आपको चोरी करके लगाओ तो ही इसका असर होगा. अब मुझे नहीं पता कि ये रियलिटी है, आप बताइए कि क्या रियलिटी है.
0: नहीं, मुझे नहीं लगता. कोई साइमा को ये ना बता दे कि हमारे घर में मनी प्लांट है.
3: साइमा के घर में शुमार है बहुत.
2: हाँ, वरना साइमा जो है वो वहां से चोरी कर लेंगे,
0: चोरी करने पहुंच जाएंगे. इन्होंने कहा ना हमारे घर में तो इतने हैं, चोरी वाला कोई नहीं.
3: नहीं, मुझे
2: और चोरी वाले से ही पैसा आएगा
3: सुना है बट.
0: और सच में कि आजकल बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, मतलब इतने इतने पॉट्स में, बिल्कुल छोटे छोटे पॉट्स के अंदर वो फैंसी पौधे होते हैं कि उनके हमें नाम भी नहीं आते हैं बोल तो.
2: हाँ,
0: लेकिन वो इतने क्यूट लगते हैं. मैंने भी ला के ना छोटे छोटे छोटे छोटे किचन में और हर जगह पे छोटे छोटे रखे हुए हैं, जिनको अक्सर लोग देख के पहचान ही नहीं पाते कि ये ओरिजिनल पौधे हैं. वो लग रहा होता है कि आर्टिफिशियल पौधे हैं, लेकिन वो माशाल्लाह इतने अच्छी उनकी ग्रोथ होती है कि मैंने जो अपने किचन के लिए ला के रखे थे वो 2-4 पत्तों के साथ एक पौधा आया था जिसके 12-15 वो पत्ते इतने बड़े बड़े जो है वो बन चुके हैं और वो इतना क्यूट लगता है.
2: अच्छा, उनके जो पत्ते हैं ना वो भी थोड़े से आर्टिफिशियल लग रहे होते हैं, जैसे होते हैं ना वो सॉफ्ट से ग्रीन कलर, तो वो लग रहा होता है, लेकिन जब वो आप टच करते हुए आपको पता चलता है नहीं ओरिजिनल है.
3: डार्क ग्रीन टोन में जा रही थी. डार्क ग्रीन भी ऐसे होते हैं काफी,
0: लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन भी होते हैं
2: लेकिन लाइट भी
0: वो होते हैं. और ये चीज़ें कि ये इन चीज़ों को आपने अपने आँखों के आसपास अपनी जहाँ पे ज़्यादा दिन का वक्त गुजरता है वहाँ रखा हो ना तो वैसे ही बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपके अंदर आती है. देख देख के बहुत अच्छा फील हो रहा होता है कि कहीं ना कहीं नेचर हमारे आसपास है.
2: अच्छा, इसका एक लिंक हमारी मेंटल हेल्थ के साथ भी है क्योंकि ये चीज़ रिसर्च में प्रूव हो चुकी है कि आप जितना ज़्यादा ग्रीन कलर को देखते हैं ना उतना ज़्यादा आप का अगर स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस लेवल भी कम होता है और अगर आप एंजाइटी का शिकार हैं तो वो भी चीज़ आपकी इससे मिनिमाइज होती है. तो इसलिए कहते हैं कि आप हरियाली में ज़्यादा जाएं या अक्सर जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनको सजेस्ट किया जाता है आप मॉर्निंग वॉक करें और ज़्यादा हरी भरी जगहों पर रहें, तो वो बेसिकली उसका उसके पीछे की लॉजिक ये होती है.
0: अरे जनाब, हरी भरी बातें हम कर रहे हैं लेडीज़ लाउंज से और ये बातें जारी रहेंगी इसी तरह से, लेकिन अभी हमने बढ़ना है थोड़ी ही देर में न्यूज़ ब्रेक की जानिब से. मैंने कहा वो याद रहे, जहन में रहे. سے ایک چھوٹی سی میوزیکل بریک لیتے ہیں جناب, اور نیوز بریک کی جانب موو کرتے ہیں, لوٹ کر آتے ہیں اور آپ سے کرتے ہیں بات چیت لائیو. 0422111001.

0: जी जनाब, लौट कर आ चुके हम न्यूज ब्रेक के बाद. 12:06 ऑन द डायल राइट नाउ. लेडीज लाउंज मुझे कहते हैं सादिया रफीक, और मेरे साथ मौजूद हैं
1: मैमुना
2: और साइमा.
0: ले भी सीख गए हैं, थोड़ा थोड़ा सीख गए हैं बच्चे. और जनाब बातें कर रहे हैं हम आज किचन गार्डनिंग की, सब्जी की, फूलों की, पौधों की. और हमने आपसे ये जानने की कोशिश की है आज के शो में कि आपका फेवरेट पौधा, आपका फेवरेट ट्री कौन सा है. और बड़ी अच्छी बात यह है कि जितने भी कॉलर से अभी तक मेरी बात हुई है उन सब ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया है और बताया भी है. सो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अभी भी हरियाली को प्यार करने वाले लोग हैं. ट्री कौन सा है? और बड़ी अच्छी बात यह है कि जितने भी कॉलर से अभी तक मेरी बात हुई है उन सब ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया है और बताया भी है.

0: ऊपरी ऊपरी सतह पे उसके सब्जियों के बीज डाल के कंपोस्ट के अंदर जो है वो उनको वाटर कर दिया जाता है।
1: अच्छा, आपकी बात से अंदाजा हो रहा है कि आपने वाकई मतलब जिसने किया होता है ना वो ठीक से आप एक्सप्लेन कर पा रही हैं। मैंने चूंकि खुद नहीं किया हुआ तो, क्योंकि घर में अगर मदर कर रही है तो इसलिए शायद मैं उस तरह से, या मेरे ख्याल से हम उस तरह से नहीं बात कर पा रहे।
2: बट ये न्यू था कैबिन्स के अंदर लगाने वाला।
1: हाँ, कैबिन्स के अंदर लगाने वाला बिल्कुल न्यू था।
2: ये देखना पड़ेगा।
0: लाइक अभी जो चूंकि जेन जी की भी बात होती है तो जेन जी तो लाइफ हैक्स पे बहुत सारी चीजें, डू इट योरसेल्फ पे बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, तो उसमें भी कि वो कैसे बॉटल्स को, प्लास्टिक की बॉटल्स को काट काट के दीवार पे लगा के इवन उसके अंदर भी आप सब्जियां उगा सकते हैं। सब्जियों को इतनी जगह नहीं चाहिए होती है, अनटिल एंड अनलेस कोई बेल वाली सब्जी है जिसको जगह चाहिए, जगह चाहिए, और जिस कि या सब्जी कह लें कि कोई वजन वाली ऐसी सब्जी है कि जिसको वेट में उसका मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जनाब लाइव कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं और अब हमारा बात करने का वक्त हुआ चाहता है, वेट नहीं कराते। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
0: जी।
3: क्या टॉपिक क्या है भाई? लाहौर में तो आपकी ट्रांसमिशन नहीं आ रही है।
0: ट्रांसमिशन नहीं आ रही है। आपने मुझे ये बताना है आपका फेवरेट पौधा या दरख्त कौन सा है?
3: जामुन।
0: जामुन
3: जो कि मेरे घर में लगा हुआ है। नाउ एट दैट टाइम आई एम एट कोहाट।
0: ओके
3: ओके। मान बाबा बोल रहा हूँ।
0: जी जी जी जी।
3: पहचान लिया?
0: जी जी पहचान लिया, बिल्कुल पहचान लिया। तो जामुन जो है वो फल देता है आपका?
3: यस, हम तो सारे गली मोहल्ले को भी खिलाते हैं।
0: जामुन का फल बहुत गिरता है ना नीचे, वो जब जब पकते हैं नीचे गिर
1: जाते हैं, नीचे गिरे होते हैं।
3: नहीं, आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन जामुन जामुन पे बात है। अभी आप जो लाहौर का जामुन है ना, वो आपका साथ घूमता है, गले में फंस जाता है। लेकिन जो कुहाट का जामुन है, खासकर यानी कुहाट का
0: अच्छा जी, तो मिट्टी की तासीर है या वो बीज अलग है, वो नस्ल अलग है?
3: ये बात है, नस्ल अलग है। तकरीबन इसके हमारे साथ हो गए हैं 25 years ago।
0: नाइस।
3: तो ये तकरीबन है, हाइट इनकी तकरीबन 12 से लेकर 16 फीट तक है। वो जो घर जो है ना हमारा कैमोफ्लेज बना हुआ है, गर्मी का नामो निशान भी नहीं है।
0: बिल्कुल सही। चले, बहुत शुक्रिया, आप शो में शामिल हुए। अल्लाह हाफिज़। ले जनाब, आज भरपूर नॉलेज में इजाफा हो रहा है हमारे। आज हमें पता चला लाहौर का जामुन और है, कोहाट का और है। ठीक है।
1: अच्छा, ये जमीन का फर्क होता है वैसे, एरिया का, और वो जो उनको हवा मिल रही होती है तो वो मेरे ख्याल से फर्क होता है,
2: और वो भी हर सब्जी में हर फल के अकॉर्डिंग डिफरेंट ही होता होगा।
1: वो हम लोग अक्सर कहते हैं ना, जैसे आम मुल्तान के जो है वो मशहूर है, आम बाकी जगहों के भी होते हैं, लेकिन जो टेस्ट या जो वो मशहूर, वो इस वजह से है कि उनका बेसिकली टेस्ट अच्छा होता है, एक्सपोर्ट भी होते हैं।
0: उसको डिटेल से मैं बता नहीं सकूंगी, लेकिन मैंने इस पे एक रिसर्च आर्टिकल भी पढ़ा, और ये जो है मुल्तान के आम इसीलिए मशहूर हैं, वो उनकी नस्ल से ज़्यादा जो मुल्तान की मिट्टी है और जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, ओवरऑल एटमॉस्फेयर है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है उनके ऊपर। वहाँ की रातें जो हैं, दिन बहुत गर्म होते हैं लेकिन रातें निस्बतन बहुत ठंडी हो जाते हैं। सो ये जो इस तरह का वेदर होता है वो आमों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न बेसिकली। और भी बहुत सारी टेक्निकल बातें थी उसके अंदर, लेकिन जो मेन आप कह लें कि जो चीता चीता बात है वो यही है कि जो मिट्टी मुल्तान की है, जो एटमॉस्फेयर मुल्तान का है, दैट इज मोस्ट फेवरेबल फॉर मैंगोज। लें जनाब, कहाँ से बात चलती है और कहाँ पहुँच जाती है।
1: बात निकलती है तो फिर दूर तलक जाती है।
0: एग्जैक्टली, बात चलती है तो फिर चलती चली जाती है। वालेकुम अस्सलाम, कौन हमारे साथ?
4: खुशामदीद, आप कहते हैं आप?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से
4: जी। बंदा नाजीज को रजा चौधरी कहते हैं।
0: अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कहाँ थे आप? पहले तो ये बताएं कहाँ थे आप?
4: मैं दुनिया से जी मैं लाहौर से, मेरे लिए खुशकिस्मती है कि शादिया भाजी मैं आपको मिला भी हूँ 2022 में। तो

0: याद करें।
1: तो आप मुझे ये बताएं ना, आप थे कहाँ, आप इतने दिन बाद आए कहाँ से?
0: नहीं नहीं बस आ गए हैं, जैसे ये देखो अभी मौसम जैसे जैसे तब्दील हो रहा था, रजा चोरी भी अपने वो पुराने रूप में पुराने अंदाज में आ गया है। हाँ। गया तो वेलकम टू द शो।
1: थैंक यू।
0: मैं सुनने वाले को ये बताता चलूँ कि सारी आबादी जब शो करती है अलग पता जाता है,
1: अलग पता जाता
0: है। ये 12-13-14 की बात है जब हम भी थे नए, माशाल्लाह बड़े अच्छे ग्रेट आर्जे। मेरे लिए खुश है नसीब भी और खुश किस्मती भी है कि मेरी आपसे भी मुलाकात हुई, लेकिन हमारी एक आर्जे थी नेहा खालिद, वो आजकल नहीं आ रही, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे जिधर भी हैं।
1: तो आमीन।
0: पूछ रही हैं आप क्या घर में, मैं अपना क्योंकि मेरा तला गांव से है, पेंडू बंदे हैं हम, तो हम लगाते हैं वो चीजें जिसका मतलब छाया भी मिले और फल भी मिले।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरे घर में अनार के है, दो पौधे अनार के हैं, एक हमने जामुन लगाया है। तो जामुन ऐसी नस्ल का जामुन है कि जब जामुन मार्केट में आएंगे ना वो खत्म हो जाएगा।
1: अच्छा।
0: हाँ जी, तो सबसे पहले लगता है वो फल उसको, और सबसे पहले खत्म हो जाता है,
1: जीत जाता है वो।
0: हाँ जी, वो बिल्कुल इतना है कि मुंह में रखेंगे जैसे रसगुल्ला नहीं आप खाते हैं, इतना मोटा मोटा जैसे बेर नहीं होते हैं। तो दूसरा दरख्त मैंने लगाया, तीसरा जो वो बेर का लगाया है, जो उतने कुछ साऊ बेर मोटे बेर होते हैं जो वो लगाया है। तो फिर जो हमारे फैमिली वाले रिश्तेदार हैं उनको हम गिफ्ट भी करते हैं, जो जब जब इनका मौसम आता है बेर भी और नार वगैरह भी हम उनको देते हैं। लेकिन कोशिश करें दरख्त वो लगाएं इसका कोई फायदा भी हो, जैसे हम लगा लेते हैं कि ये क्या है फायदे का दरख्त, ये पता है ना कि ये जमीन से पानी बहुत
1: जी एब्जॉर्ब करता है,
0: फायदा नहीं है। तो कोशिश करें कि ऐसे ऐसे लगाएं कि जिसका फायदा आपको आने वाली नस्लों में, आपकी फैमिली के बच्चों को भी हो, फल भी खाएं और लकड़ी भी इसकी इस्तेमाल हो। शुक्रिया।
1: आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब।
0: साथी आप एक बार फिर कि मेरी कार मिल
1: गई। जी जी बिल्कुल सही, आपने जाके कुछ मीठा बांटना है ना।
0: नहीं नहीं मैंने अभी क्या, मैं एक दोस्त मुझे कह रहा है यार मेरा मुंह मीठा कर, मैं कहता हूं दादा से कि चीनी लाता हूं आपका मुंह मीठा कर।
1: हां तो मुंह ही मीठा कराना है, चीनी ठीक है।
0: बाजी हमारी आपकी बड़ी पुरानी हमारी शादी है, बाजी शो करती थी लाल, लेकिन मेरे लिए खुशी नसीब है कि जब आप आई हैं दूसरी दफा मेरी कार लगी है।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रजा भाई।
0: सुनने वालों को मेरे पूरे ग्रुप को
1: रजा चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे बहुत प्यारे स्वीट लिसनर और कॉलर, बहुत रेगुलरली शोज का हिस्सा बनते हैं। सो जनाब आज काफ़ी दिन बाद बात हुई। अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे फारूकाबाद से, हमें सुनते हैं बहुत रेगुलरली और बहुत खूबसूरत बातें कर रहे थे, वो भी प्लांटेशन के हवाले से, पौधों के हवाले से। उन्होंने कहा कि हमने 2-3 साल पहले जो अनार लगाया था पौधा, अब हम उसका फल खाने लग गए हैं। सो ये जो एक कामयाबी की फील होती है इसमें, फल तो जो आप खा रहे हैं लेकिन जो ये जाती तौर पे एक खुशी होती है ना अंदर से कि हमने अपने हाथों से लगाया और अब हम वो उसको यील्ड कर रहे हैं, उसका फल ले रहे हैं। सो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। उन्होंने कहा कि इस साल हमने अमरूद का पौधा लगाया, हर साल 14 अगस्त पे हमारी ये कोशिश होती है कि हम एक पौधा ज़रूर लगाएं। तो दैट इज़ सच अ ब्यूटीफुल जेस्चर इन द नेम ऑफ पाकिस्तान, हमारा और आपका सबका बहुत प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो ये हरियाली है, ये आबाद रहे, इसी के लिए हम जनाब कोशिश कर रहे हैं। आज के शो में भी हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया जनाब फेसबुक पे भी, अभी आप लोगों का भी हम जिक्र करते हैं। लेकिन जनाब पहले हमने बढ़ना है एक और ट्रैक की जानिब और एक म्यूज़िक जो है वो प्ले करते हैं, उसके बाद आप लोगों को वापस ज्वाइन करते हैं। और स्टिक अराउंड, दिस इज़ FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर।

0: This is FM 101.
1: सोना लाया है NPS, तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: You're listening to FM 101, a bale bale o shower shower.

0: जी जनाब, लौट कर आ चुके आपके साथ एक बार फिर से 12:32 ऑन द डायल राइट नाउ, और हम बात कर रहे हैं, ढेर सारी बातें बल्कि कर रहे हैं हम दरख्तों की, पौधों की और फूलों की और क्यारियों की, सब्जियों की और पता नहीं किस किस की, सेल्फियों की भी सेल्फियों की भी बातें हो रही है जनाब साथ साथ। और सेल्फी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, हमने एक दिन जो है ना इस पर बात करनी है
1: क्योंकि सेल्फी भी हमारी ज़िंदगी में हरियाली लेकर आती है
0: ढेर सारी मेमोरीज की हरियाली। अरे जनाब, यस इट डज इफेक्ट योर मूड, और हमारा मूड अच्छा हो जाता है, और कई कभी कभार ऐसा होता है कि मूड अच्छा नहीं होता फिर भी सेल्फियां ले रहे होते हैं, है ना।
1: हम अपने उन मोमेंट्स को भी कैप्चर करते हैं, मुझे लगता है कैप्चर करना भी चाहिए ताकि खुशी के हों, गम के हों, एक्साइटमेंट के हों, हर तरह के लम्हात को कैमरे की आंख में महफूज करना।
0: इतनी सारी सेल्फीज लेने के बाद याद रह जाता है ये कब किस मौके पे ली थी।
1: और पता है जब गैलरी खोलते हैं ना और पिछली मेमोरीज हमें नजर आ रही होती हैं तो बिल्कुल मतलब मेरे फेस से तो स्माइल ही नहीं जाती, मैं वापस उस वक्त में चले जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है टाइम मशीन से मैं पास्ट में चली गई हूँ।
2: आप मुझे लगता है काफी हद तक जल्दी से डिसएग्री कर रही है आपके एक्सप्रेशन से मुझे अंदाजा हो रहा है।
0: नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं कह रही, मैं नहीं लेती, मैं भी लेती हूं।
2: डिसएग्री कर रही है इस बात से कि
1: वो हर किसी का थोड़ा सा वो मुख्तलिफ होता है।
0: आई ट्रूली एग्री कि वो मेमोरीज होती हैं, लेकिन हर वक्त लेना
2: यही बात मैंने कहा यहाँ पे लग रहा है कुछ
0: हर वक्त मतलब पौधों की वो स्ट्रीक्स लंबी बहस में फंस जाएंगे। 34 डिग्री सेल्सियस ऑन द स्केल राइट नाउ जनाब, एज पर रिकॉर्डेड एट 12 PM, और जनाब आज के लिए ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 36 डिग्री जबकि कम से कम टेम्परेचर 27 डिग्री रहने की उम्मीद है। ह्यूमिडिटी लेवल है 52%, हवा चल रही है 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। ओवरऑल वेदर आज के दिन सनी, एंड दिस वेदर इज गोना कंटिन्यू फॉर गुड 3 to 4 days, एंड वी आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि किसी तरह से मौसम बदल जाए, किसी तरह से हालात बेहतर हो जाए। आप लोगों से लाइव बातचीत कर रहे हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी, ठीक ठाक जी आप?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम खैरियत से।
3: जी मोहम्मद शहजाद शाहबाद से बात कर रहे
0: हैं। कैसे हैं शहजाद साहब, खैरियत से हैं?
3: आपकी दुआएं माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका शो होता है, और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जिंदगी तंदुरुस्ती रखे, बहुत अच्छी आवाज है आपकी माशाल्लाह।
0: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कौन कौन से पौधे लगाए हैं आपने घर में, या कौन सा पौधा पसंद है?
3: देखिए जी, इधर तो शहरदारी में जो सही बात बताऊं, हमारे गांव में ना तो पौधे ज्यादा लगते थे, इधर तो जो है ना वो इतनी जगह नहीं होती जहाँ पे पौधे लगाए, जो उधर हमारे ना जो नार का पौधा लगा हुआ था और एक अमरूद का, एक दरख्त था तरेक का, तरेक होती है ना वो छाव से वो बेहतर होती है,
0: बिल्कुल सही।
3: वो हमारे गांव में जो घर था ना उधर लगा हुआ था, तो इधर शहरदारी में क्या करे अब, तो कई आदमियों का नाम उधर पंजाबी में होता था जी, इधर तो हम उर्दू में बोलते हैं ना जी पौधा, उधर बोलते थे बूटा,
0: बूटा घर का बड़ा बेटा बूटा होता था।
3: एक दफा फोन आ गया सुबह सुबह 4 बजे का टाइम, कहता ओए बूटा बोल रहा, मैं कह नहीं जी मैं पौधा बोल रहा। माशाल्लाह जी अल्लाह ताला इस तरह ही तानू हसदा खेडते रखे, बहुत बहुत दुआवां तुहाडे लई, ते माशाल्लाह तुहाडे तों बाद वसीम साहब उन्हां नूं सलाम दुआ, सारे आदियां मेरा सलाम प्यार फरज।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे साथ हमारे जॉली से लिसनर मौजूद थे, और इट हैपेंस कि आप लोगों से बात करके एकदम से मूड चेंज हो जाता है, माहौल बदल जाता है। सो जनाब, पौधों की हरियाली की बातें, आपका पसंदीदा पौधा, आपका पसंदीदा दरख्त कौन सा है, आप हमें बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम
4: जी, बिस्मिल्लाह दोनों आपियों वालेकुम सलाम। या भी मैं ना अगे ऑफर कॉल मेरी हो गई थी, मैं दोबारा एक बादाम लेना चाहना
0: जी जी,
4: अब्दुल हमीद फरुखाबाद तो राजा भाई आए, माशाल्लाह बहुत सोहनी उन्हें गल की थी। ते मैं ये बोलूंगा भी जो हम भी कि बाहर शहर से बाहर निकल रहे, नर्सरी तो एक बूटा ला रहे, किसी भी जिम्मेदार की ताली तो ला रहे, कोई भी नहीं कहेगा भी तू इतने क्यों लाने लगा, इंशाल्लाह वो खुश होएगा भी यार ये शहर ही आंदे पौधा ला के चल जाते, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੇੜਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ।
0: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ।
4: ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਲਿਖੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਆਪੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਮੁਖਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਹੋਇਆ।
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
4: ਤੇ ਸ਼ਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ। ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪੌਦਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਅੱਲਾਹ
0: ਹਾਫਿਜ਼। ਪੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਢੂੰਢੇ ਔਲ ਲਗਾ ਦੇ।
1: اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جہاں پہ بھی ہم پودا لگائیں پھر اس کی تھوڑی سی دیکھ بھال اور وہ چیزیں، کیونکہ بعض اوقات ہم بہت سارے پودے لگا دیتے ہیں لیکن وہ مرجھا جاتے ہیں اور وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں پودا جہاں پر بھی لگانا ہے ہم نے اس کو اس بات کو میک شیور کرنا ہے کہ وہ اس جگہ پر ہم ہر دو دن بعد، ایک دن بعد یا تین دن بعد کم از کم جاتے ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ صحیح سے پھل پھول رہا ہے یا نہیں، خود سے پانی بھی دے سکے، ہماری ریچ میں ہو وہ جگہ۔
2: یا اگر ہم نہیں بھی جا سکتے تو جو وہاں کے مکین ہیں وہ میک شور کریں کہ وہ اس کو پانی دیں اور اس کو پروان چڑھائیں۔
0: All right, this is next song سنتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، لوٹ کر آتے ہیں۔

और जनाब वी बैक, और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डायल कर रहे हैं कॉल और हमसे बात करने के मुंतजर हैं जनाब, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शो में पार्टिसिपेशन की अपनी फेसबुक पोस्ट पे, और बहुत सारे लोगों के नाम लेना बाकी हैं। हमदुल्ला माला खेल हमारे साथ हैं पोस्ट पे, और मोहम्मद तारिक साहब हमें सुन रहे हैं, मनाजर महमूद हमारे साथ हैं, कहते हैं हाउ आर यू, वेलकम, थैंक यू सो मच, आई एम फाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप कैसे हैं अपने बारे में ज़रूर बताइए। मोहम्मद नईम हमें सुन रहे हैं, कंवल नाज हमें सुन रही हैं, नज़ीर खुसो हमारे साथ हैं, फिरोज आलम जान हमें सुन रहे हैं, गुल यासीन नाज हमारे साथ हैं, साजिदा जहूर हमें सुन रही हैं, मलिक मोहम्मद आदिल हैं, राजा अब्दुल गफ्फार, मलिक वसीम आवान, उज़्मा एजाज, मोहम्मद हफीजुर रहमान, रजा चौधरी,

0: सो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि किसी का नाम रह ना जाए. रेहाना खान हमें सुन रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम भक्कर. थैंक यू सो मच जनाब. मोहम्मद उर्स लगारी हमारे साथ हैं. और जनाब आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ साथ रहते हैं और ना सिर्फ रहते हैं, ना सिर्फ हमें सुनते हैं बल्कि अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाते रहते हैं. और आज के शो में हमारा साथ दे रही हैं महमूना और साइमा. लाइन ड्रॉप हो गई, इट हैपेंस, और लाइन कट गई. अस्सलाम वालेकुम.
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन हमारे साथ?
1: मुझे बड़े प्यार से कहते हैं साजिदा जी.
0: बहुत प्यार से कहते हैं. गुस्से में क्या कहते हैं?
1: गुस्से में भी यही कहते हैं, नॉर्मल भी यही कहते हैं.
0: नहीं, गुस्से में कहते हैं साजिदा.
1: गुस्से से भी नॉर्मल
0: सजदे कहते हैं. चलें जी ना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और फिर भी ऑनर भी आपको मौका मिला. क्या कहना चाहेंगी?
1: और मैं कहना चाहूंगी पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, जितने फूलों वाले होते हैं ना, मोती का, गुलाब का, और वो होते हैं पर्पल वाइट गेंदे के फूल, मुझे सारे फूल बहुत अच्छे लगते हैं. और रात की रानी, और वो मैंने बताया था उसका पौधे का जो घर में लगाते हैं, चोरी करके बाकी लगाते हैं वो.
0: एक और गवाही आ गई जनाब, आज सबने निकल पड़ना है मनी प्लांट की तलाश में, जहाँ से मिले चोरी कर लो.
1: वो चोरी करके लगाते हैं और फिर वो बड़ा होता है, अगर हटा के लाए तो फिर वो जल जाता है.
0: क्या बात है, टेक्निकल
1: मनी प्लांट,
0: टेक्निकल.
1: और वो ना वो किचन में कमरे में लगाया जाता है और बहुत अच्छा लगता है वो.
0: अच्छा, उसको डायरेक्ट पानी में भी लगाया जाता है ना?
1: हाँ, पानी वाली होती है ना, पानी वाली बोतल में लगाया जाता है, मट्टी में नहीं लगाया जाता वो. तो वो इतना खूबसूरत लगता है, उसमें दो तीन शेड होते हैं.
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही,
1: बड़ा अच्छा लगता है वो. और रात की रानी बहुत अच्छा लगता है. और वो हाँ, मेरी मामा ने ना बड़ा एक टप टूट गया था, उसके अंदर पौधे लगाए, ये जैसे धनिया, लहसुन और पुदीना, ये छोटी चीजें लगाई.
0: बिल्कुल सही,
1: बड़ा अच्छा लग रहा वो अभी.
0: ले जनाब, डू इट योर सेल्फ, और घर की जो चीजें हैं उनको रीयूज करने का तरीका भी बता दिया है.
1: और जी, और मैं सलाम कहना चाहूंगी बॉबी जट को, बिस्मा को, रिमशा को, शमीमा पी को, बर्फी वाले भाई को, शहजाद भाई को, और कोयत वाले तारिक को, छोटे तारिक को, सलीम दास जी को, सबको सलाम कहना
0: चाहूंगी.
1: उनको सबको सलाम लिखूं.
0: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया.
1: और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इतना जबरदस्त शो है और बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं. और प्लीज आपके दो तीन शोज होने चाहिए.
0: जी ठीक हो
1: गया. अगर आपके बॉस सुन रहे हैं तो होने चाहिए. और जो दो मेहमान आई हैं इनको मेरी तरफ से बहुत ज्यादा अस्सलाम वालेकुम. साइमा
2: सलाम,
1: आप कैसी हैं?
2: हाँ बिल्कुल ठीक है. और आपकी आवाज़ इतनी एनर्जेटिक है कि आपकी आवाज़ सुन के हम भी एनर्जेटिक हो गए हैं. और आपने भी गवाही भी दे दी और मुझे तो बहुत ही एनर्जी मिल गई है.
1: जी मैंने अभी अभी चाय पी, आप भी चाय पियेंगी?
2: आप इतनी मोहब्बत से कह रही हैं तो अब हम चाय पी लेंगे और इमेजिन करेंगे कि वो आपने पिलाई है.
1: चले चल, हाँ जी मैंने बनाई है, और चले मैं आपको भी करवा देती
0: हूँ. बहुत शुक्रिया साजिदा शो में शामिल होने के लिए, थैंक यू सो मच.
1: हाँ जी, आपके लिए बहुत सलाम रह गया और सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा.
0: अल्लाह हाफिज. ऑलराइट जनाब, ले जनाब अब आज से ना आप लोगों का टास्क यही है, मनी प्लांट ढूंढना, आपने जहाँ पे दिखे आपने ना गायब कर लेना. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम. एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान से सादिया अब्दी आपको और आपके जो साथ बैठी हैं मोना और सैमा को वेलकम, खुश आमदी जी. एन एलन वसैलन मरहबा बली करी एन उत्ते बखैर अगले, कैसे हैं आप लोग?
0: अल्हम्दुलिल्लाह.
2: आप बताइए आप कैसी हैं?
3: कहते हैं मैं शादरा से बात कर रही
0: हूँ. हमारा जब आती है ना तो इतनी मज़े की इनकी जो एंट्री होती है वो इतनी खूबसूरत होती है, इतनी इन्होंने बुन के लफ्ज रखे हुए हैं, ऐसे लगता है कि इन्होंने हमें कॉल नहीं की, हमने इनको कॉल कर लिया.
3: ये आपकी मोहब्बत है, आपकी आप लोगों से ही सीखा हुआ है जो मैं बोलती हूँ.
0: अच्छा, हमारा आपके पास तो पौधे घर में होंगे?
3: नहीं आपकी, हमारा घर जो है ना वो छोटा है, तो उस पर पौधे नहीं लगते, लेकिन मुझे बहुत शौक है पौधों का। लेकिन मेरी आपी है ना, उन्होंने अपने छत से अमरूद का पौधा लगाया हुआ है। मैं वहाँ जाती हूँ ना, फिर वहाँ कुछ ना कुछ लगा के आती हूँ उनकी तरफ।
0: सही। तो वैसे आपका फेवरेट पौधा कौन सा है?
3: मेरा मैंगो का और गुलाब का पौधा, और इसके अलावा बहुत सारे पौधे हैं जो मेरे फेवरेट हैं। लेकिन अफसोस ये कि मैं अपने घर में नहीं लगा सकती।
2: अच्छा, आप ये भी कर सकती हैं, जैसे अभी जो हमारी पिछली कॉलर थी, उन्होंने कहा कि एक टूटा हुआ कप है, आप उसी में रख सकती हैं, कोई बॉटल है उसको काट के आप उसमें कुछ लगा सकती हैं।
3: जो फेवरेट है ना, वो इन छोटी छोटी चीजों में
0: नहीं लगते ना, जो उनके फेवरेट है।
3: और आप भी बहुत अच्छा, आज आपने टॉपिक रखा, बहुत मजा आ रहा है सुन के, और बहुत अच्छा आपकी आवाज है। और वाकई रजा भाई ने कहा कि पता नहीं कहाँ आप चले गई थी, शुक्र है कि आप वापस आ गई, और प्लीज प्लीज वापस नहीं जाना, आपने हमें जाने भी नहीं देना आपको।
0: जी पक्का नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जा रही,
2: हम नहीं जाने देंगे।
3: और जहाँ तक आपकी और मेरी आवाज जा रही है, सबके लिए सेहत और सलामती की दुआ, और बहुत सारी बेस्ट विशेज आप सबके लिए।
0: अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अमारा बेग हमारे साथ मौजूद थी जनाब, हमारी बहुत ही स्वीट सी कॉलर। सो जनाब, आप लोगों का फेवरेट पौधा, आप लोगों का फेवरेट दरख्त कौन सा है? आज के शो में हमने आप लोगों से पूछा, और आप लोगों की भरपूर पार्टिसिपेशन इज जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स। Seriously, we enjoyed a lot sitting here. ऐसे लग रहा है हम नेचर में हैं और नेचर से बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, लास्ट कॉलर आज के मोस्ट प्रोबब्ली। अस्सलाम वालेकुम।
4: कौन किसी नु बुलांदा ते किस्मत लेउंदी ठोर।
0: बिल्कुल।
4: कौन किसी नु बुलांदा ते किस्मत लेउंदी ठोर, दाणा पानी अपना ते हाथ मालिक दे डोर। अल्लाह सोणे ना नाल आके नीक ड्राइवर आ गया बेटियां रोड कैंड तक।
0: जी जनाब, जल्दी से बताएं अपना फेवरेट पौधा हमें।
4: मेरा फेवरेट पौधा है रात की रानी।
0: वाओ, नाइस।
4: रात की रानी,
0: बिल्कुल सही।
4: मैं ना जिधर काम करता हूँ ना, पौधे जितने भी आते हैं ना, जितने भी, तो फिर मैं जाके नर्सरी से लेके आता हूँ। तो फिर माली के साथ उनको बताना होता है कि ऐसे ऐसे आपने लगाने हैं।
0: बिल्कुल सही।
4: घर में भी मैंने वो
0: आपका वक्त गुजरता पौधों में है ना।
4: जी जी जी। तो घर में मैंने फोटो लगा के गमले ना, और गमले तैयार करके ना तो रखे हैं घर में। तो मैं आपको अपने बेड की खूबसूरती बताऊं, तो मैंने मनी प्लांट का ना बोतल में वो टहनिया लगा के ना, एक उस साइड पे बोतल बांधी हुई, एक उस साइड पे, तो जो ढोए ना बेड की, उसके ऊपर उनके टहनिया ऐसे दोनों साइडों पे
0: बेले बन के लटक रही हैं। तो आपने चोरी किया था कि वैसे खरीदा था?
4: नहीं नहीं, मैं इधर माली जाते हैं ना, मालियों के साथ में जाता हूँ नर्सरी में, तो मैं उधर से मुझे मिल जाती कोई ना कोई चीज है, ताकि वो काफी पैसों का सामान लेते हैं ना, तो मुझे कोई एक ऐसा कमरा फ्री मिल जाता
0: है, कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, क्या कहने, सही हो गया, सही हो गया।
4: और जिवें साडे वड्डे आंदे ने ना, दुकान तो चूंगा ले आ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
4: आना बेग आई जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी होना दी एंट्री होंदी है। राजा चौरी भी तुहानू सुन लिया, ते साजीरा मुल्तान रोड तो ते कर्मदा तुहानू सुन लिया, बड़ा वड्डा मंजा रख्या उते, बड़े बंदे बैठे होंदे आ सारी आपी, अगर काल ना मिले ते
0: बात खत्म करते हैं अपनी। अब एक एक बात जो आप कहना चाहें आज के टॉपिक के हवाले से, आपके फेवरेट पौधे के हवाले से, कुछ भी।
2: वही बात जो मैंने पहले भी की थी कि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमने कोई भी काम जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटी करना है कि हमने कर लिया। जैसे आजकल जेन जी की बात करें, तो हम बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यंगस्टर्स को देखते हैं कि एक पौधा लगाया, उसकी पिक्चर ली, वीडियो बनाई और वो सोशल मीडिया पर डाल दी, बाद में वो पौधा सूख भी रहा है, सड़ भी रहा है, कोई उसका ध्यान रखने वाला नहीं है। तो आपने इसको सिर्फ इसलिए नहीं लगाना कि आपकी एक पिक्चर आ जाएगी या आप उसको सोशल मीडिया पर डाल देंगे या आपकी कोई बहुत ही मज़ेदार सी रील बन के वायरल हो जाएगी और आपको व्यूज़ मिल जाएंगे, बल्कि हमने पौधा इसलिए लगाना है कि पौधा लगाना सुन्नत भी है, और पौधा लगाना एक ऐसा अमल है कि ये हमारे बाद भी बाकी आने वालों को भी छांव देगा, और उसका ख्याल भी रखना।
5: और मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस टॉपिक पे आज हमने बात की, तो अल्लाह ताला ने दुनिया को और खुसूसन हमारे मुल्क पाकिस्तान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है जिनका हम शुक्र अदा नहीं करते हैं। तो अगर हम जैसे बात की सब्ज़े की, हरियाली की, और एक कॉलर ने जामन की बात की थी, तो उससे मुझे एक व्लॉग भी याद आया, उसमें एक टूरिस्ट थे जो पाकिस्तान आए हुए थे और उन्होंने जब जामन देखा तो उन्होंने कहा मैंने पहली बार देखा है, उनको टेस्ट बहुत अच्छा लगा। जैसे काफ़ी सारे फूल और फल हैं, जैसे मौसम भी है पाकिस्तान में, जो सिर्फ पाकिस्तान को खुदा ने नवाजे में चार मौसम, तो हमें इन सब चीज़ों की बहुत कदर करनी चाहिए और जितनी कोशिश कर सके अपने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना बेहतरीन दें। खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: और जनाब ये थी हमारे साथ मैमूना और साइमा, और ये हमारे कुछ नए आर्टिस्ट हैं जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने सोलो शोज कर रहे होंगे आप लोगों के साथ, हम आवाज़ होंगे इसी प्लेटफॉर्म से। सो जनाब आज के शो में रंगों की और बहुत सारी हरियाली की और सब्ज़े की और फूलों की बहुत प्यारी प्यारी बातें हुई, आप सबसे यही गुजारिश जाते जाते करना चाहूँगी कि अपने हिस्से का एक पौधा ज़रूर लगाइए, अपनी ज़िंदगी में ये चांस ज़रूर लीजिए। पौधे को अगर जिंदगी मिली तो आप आने वाले कई सालों तक इस धरती पर एहसान करके जाएंगे और अपने बच्चों को, अपने घर में जो छोटे जो जूनियर बच्चे हैं, जो जूनियर लोग हैं आपके, उनको भी जरूर तरगीब दें। हमने ये मैसेज आगे कन्वे करना है, सिर्फ अपने तक नहीं रखना, दिए से दिया जलता रहना चाहिए। हमें बहुत जरूरत है आज के दौर में खास तौर पर पौधों की, जबकि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हमारे जंगलात में हो चुकी है, जहाँ जबकि हमने अपनी सिटी लाइफ में, अपने शहरों में रहते हुए ऑलमोस्ट इन पौधों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। कहाँ तो सहनों में बड़े बड़े दरख्त होते थे और कहाँ पौधों, गमलों की जगह नहीं बची है। तो इसलिए कोशिश करें, छोटे से छोटा पॉट लें बेशक, लेकिन अपने आस पास हरियाली को रखें और सरसब्ज रहें। जनाब आप भी इसी तरह से इस दुआ, इस उम्मीद के साथ, इस ख्वाहिश के साथ कि आपसे होगी फिर मुलाकात, इजाजत चाहते हैं। अगले मंडे इन द सेम शो लेडीज लाउंज में सादिया रफीक होंगी आपके साथ। उस वक्त तक के लिए अपना और अपनों का रखिए ढेर सारा ख्याल, ढेर सारा ख्याल, जहां भी हैं, जिस भी हाल में हैं। जस्ट प्राउड टू बी पाकिस्तानी एंड से ऑलवेज पाकिस्तान जिंदाबाद। तुम मिले जब से साजिदा की फरमाइश पे, आप सभी सुनने वालों के नाम, टेक केयर, फी अमानिल्लाह।

0: Hi, this is FM 101.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: 101 FM।
3: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
2: This is FM 101.
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: खुश्क हो गए, जाना पड़ जाता है पानी में लोगों के। मगर ये ऐसा पानी है कि 100 साल 1000 साल जितना जब मर्जी पानी में ना स्मेल आएगी, ना उसका रंग बदलेगा, ना जाला पड़ेगा। तो यही अभी भी अल्लाह को इतनी अदा पसंद आई हज़रत बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की कि वही 7 मरतबा गर्दिश करवाता है अल्लाह हर एक से, जो भी सही करने आए, हज हो, उमरा हो, किसी में भी, ये हर एक के लिए लाजिम व मलजूम है कि उसने ये सही कर दी है, चक्कर लगाने हैं 7 मरतबा। हाँ, जहाँ जहाँ वो दौड़ी थी वहाँ वहाँ फिर दौड़ना भी पड़ता है, और अगर कोई ना दौड़े तो उसके लिए दम है फिर, यानी कि दम से मुराद है एक कुर्बानी देनी पड़ती है, उसकी सजा है ये, उसका बदल है। शायर अल्लाह फमन हज अल बैता औ एतमराफ, और बस जो हज करे इस घर का या उमरा करे, फला जुना ले तो नहीं कोई अर्ज उस पर कि आइए तवाफ़ बेहमा, कि वो तवाफ़ करे इन दोनों का। वमन ततवा खैर, और जो खुशी से करे खैर तो कोई नेकी, फ़ाइनल्ला शाकर रहीम, बड़ा जानने वाला कदरदान है। यानी जो वहाँ बुत थे ना तो उसको नापसंद करते थे लोग, यानी जब अहले इस्लाम आया तो बुत तोड़ दिए गए, तो उस वक़्त वो समझते थे जो वहाँ के मुसलमान थे उस वक़्त कि ये सही नहीं है बुत जो बीच में है, तो उस वक़्त के लिए कहा कि वमन ततवा खैर, तो जो अपनी तरफ से खुशी से नेकी करे, फ़ाइनल्ला शाकर रहीम, वाखर दावाना अनिलहमदिल्ला रबिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अलैका खातमा।
1: और मुसलमानों, नमाज सही वक़्त पर अदा करो, इसमें अल्लाह ताला ने रूहानी और जिस्मानी शफा रखी है, और देखो आप उसमें फिरके ना बना लेना जैसे दूसरी कौमों ने बनाए और वो तबाह हो गईं। अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम कुरान मजीद में मुसलमान रखा है।
2: अभी आप समात फरमा रहे थे कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद से आयत मुबारक का तर्जमा, मुख्तसर तफसीर और शान नज़ूल। मुकर्रर थे जनाब साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
4: सुनते रहिए FM 101 101 101।
5: This is FM 101. This is FM 101.
6: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101. Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have
1: 65 War. Prime Minister has paid tribute to courage, professionalism and indomitable spirit of valiant air warriors of Pakistan Air Force. All parties Hurriyat conference says Modi regime is systematically laying groundwork for settler colonialism in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. In women's T20 Asia Cup match between Pakistan and Hong Kong will be played at Dubai today. And now the news in detail. Pakistan Air Force Day is being observed today with national pride to commemorate the valor of the defenders of airspace of the country against Indian aggression in September 1965 war. In the 1965 war, the valiant Pakistani pilots, despite limited resources, not only repelled Indian air attacks but also handed India a resounding defeat, displaying unparalleled expertise in aerial combat and unwavering courage. The PAF ace Muhammad Mahmood Alam, commonly known as M.M. Alam, shot down 5 Indian Air Force Hawker Hunter MK-56 fighters in less than a minute. Pakistan Air Force observed 7th September as Martyrs' Day at all PAF bases across the country to honor the supreme sacrifices of its martyrs and pay homage to their courage, valor and devotion to duty. The day commenced with a special dua and Quran khani for the shuhada of the 1965 and 1971 wars, the brave martyrs of Marka-e-Haq and all PAF personnel who have made the ultimate sacrifice in the line of duty since the inception of Pakistan. Speaking at the Martyrs' Day ceremony held at Air Headquarters Islamabad, Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Zaheer Ahmed Babar Sidhu paid rich tribute to PAF martyrs, underscoring that their sacrifices constitute the foundation of PAF's proud legacy of courage, professionalism, and unwavering commitment to the defense of the motherland.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई मरम्मत और नकासिये आपको यकीनी बनाएं बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं बच्चे बूढ़े खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें जेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें रेडियो टीवी अखबारात फोन एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदाम करें बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें हिफाजत सिर्फ एहतियात में
3: 101 FM
4: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें दीवारों छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
3: दिस इज FM 101.1।
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
7: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.

0: This is FM 101.
1: सोना लाया है NPS, तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सुनते रहिए FM 101.

0: वहाँ आतंक विराई होगी नहीं
1: मेरे से। I'm on the way यार, बस आधा घंटा दे।

0: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रिजवाना मेहताब से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। आज यौम फिजाइया मनाया जा रहा है, जिसका मकसद सितंबर 1965 की जंग में भारतीय जारहियत के खिलाफ मुल्क की फिजाई हदूद का दिफा करने वाले मुहाफिजों की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक फिजाइया के बहादुर फिजाई जंगजुओं की जुर्रत और पेशावराना महारत को खिराज तहसीन पेश किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मोदी हुकूमत भारत के गैर कानूनी ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों की शनाख्त तब्दील करने के लिए 9 आबादियाती एजेंडे पर अमल पैरा है। और आज दुबई में खवातीन के T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान का मुकाबला हांगकांग से होगा। और अब
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

अस्सलाम वालेकुम खवातीन नाज़रीन, सबात पार्टिन और रैक स्टार आपको वाइब की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं, और ये वाइब आपको हिल हिल के गिरने पे मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। किसी भी वाइबी नुकसान की

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: বলি, ওকে?
1: ওকে।
2: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: हाँ, जब मैं अपने किसी हमनाम से मिलती तो मेरा सबसे पहला जो इंटरेस्ट है ना, जो मेरा सबसे पहले जहन में क्यूरियोसिटी आती है, वो ये आती है कि डज दिस पर्सन हैव द सेम इंटरेस्ट एज मी, क्या इनको भी मेरी तरह शायरी पसंद होगी, क्या क्या क्या इनको भी मेरी तरह अच्छा। बातें करना, क्योंकि मेरा ताल्लुक थिएटर से और ब्रॉडकास्टिंग वगैरह से है, तो मुझे तो बोलना बहुत पसंद है सीरियसली।
1: बहुत अच्छी बात।
0: तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या इनके इंटरेस्ट भी मेरे जैसे होंगे।
1: अच्छा, आप इंटरेस्ट मैच करने लग जाती हैं नाम के साथ।
0: इंटरेस्ट मैच करती हूं।
1: ठीक है। अच्छा, वैसे अरीज आपको भी, आपके तो मिलते होंगे, अरीज नाम तो क्वाइट हमें लगता है कि कॉमन है कि नहीं।
2: अच्छा, मैं 2-3 साल पहले मुझे इस बात का बहुत जोम होता था कि अच्छा। मेरे नाम का तो कोई हम नाम मुश्किल से ही मिलना है मुझे।
1: अच्छा।
2: लेकिन अब चूंकि वक्त ऐसा आ गया, जैसे जैसे बहुत सारे लोगों से सोशलाइज करते रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हम नाम मिलते रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से मैं एक बहुत मज़े की बात शेयर करूँगी कि जब मैं छोटी थी तो हम एक ना एक्ट्रेस आती होती थी टीवी पे ड्रामा में,
1: ठीक है,
2: उनका नाम अरीज फातिमा था। तो मैं तो वैसे ही उनकी फैन होगी कि इनका नाम मेरे जैसा है। तो मैं तो
1: अभी भी एक एक्ट्रेस है जिनका नाम अरीज फातिमा है।
2: कौन?
1: एक्ट्रेस है। आपने सच खुद करने वो मैंने नहीं बताना कौन है, लेकिन ऐसा होता है वैसे। बाकी आपको ना थोड़ा सा एक वो होता है कि या तो आपको हम नाम कोई ना मिले, और लेकिन अब ऐसा है कि अब बहुत सारे जो अनकॉमन नेम होते थे ना, यूनिक नेम होते थे, अब वो इतने कॉमन होते जा रहे हैं ना कि आपको समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है। मतलब मेरे बचपन में मेरी अम्मी कहती थी कि जी स्कूल से लिस्ट मंगवाई और 3-3 बार लिस्ट मंगवाई और उसमें से नाम सेलेक्ट हुआ। सो आई फील वेरी मच कि मेरा इतना यूनिक नाम। बट अब आगे मुझे लगता है कि नहीं, अब काफी कॉमन है। मतलब अब काफी लोग आपको मिल रहे होते हैं, शायद आपका सर्कल बड़ा हो जाता है, या शायद आप थोड़ा सा जब यूनिवर्सिटी कॉलेज से बाहर निकलते हो तो आपको पता चलता है नहीं, ये नाम एग्जिस्ट करता है।
0: नामों की बात हो रही है तो मुझे उससे ना दो नाम याद आ गए बड़े इंटरेस्टिंग। एक, अभी मैं यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ, वहां पर मेरा एक जूनियर है, उसका नाम है फारक्लीत।
1: अच्छा,
0: ये यूनानी नाम है,
1: प्रोनाउंस करना भी मुश्किल है।
0: फारक्लीत,
1: क्लीद,
0: फारक्लीद, फारक्लीद। और मुझे इस नाम का मतलब नहीं पता, बस मुझे ये बताया कि ये यूनानी नाम है। और एक और, बहुत अरसा पहले जब मैं नर्सरी प्रेप क्लास में थी, मुझे उस अपने क्लास वालों की बहुत एक ना हल्की सी झलक याद है, उससे कोई उसका नाम पूछता था ना कि आपका नाम क्या, तो वो कहता था मेरा नाम है जंजबील और मेरे नाम का मतलब है अदरक का पानी गुलाब का फूल।
1: वेरी नाइस, बड़ा यूनिक मतलब है। ऑलराइट जी, हमने नामों पे काफी डिस्कशन कर लिया, और हम नाम मिल जाए तो वैसे ही भी ना आप थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट शेयर करने लग जाते, जैसे अभी हमना ने भी कहा। और मैं तो अभी एक और बात पे भी जाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि उससे पहले जो है ना थोड़ा सा हम बात कर लें आज के दिन के हवाले से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और बींग पाकिस्तानी हमारे लिए प्राउड डे है। आज पाकिस्तान एयरफोर्स डे है, 7 सितंबर 1965 की जब हम जंग की बात करते हैं तो पाक फौज का, पाक बहरिया का, पाक फिजाइया का जो किरदार था उसमें, और स्टिल वी आर वेरी प्राउड ऑफ आर आर्मी, आर फोर्सेस, आर नेवी। हम इतने प्राउड हैं कि आज हम हर किस्म की जंग, हर दुश्मन के आगे जो है ना हम डट के खड़े होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पीछे जो है हमारी फोर्सेस हैं, हमारी नेवी है, हमारी अभी कल हमने डिफेंस डे सेलिब्रेट किया, आज फिजाइया का दिन है, कल नेवी का दिन है। सो आज जो है वो एयरफोर्स डे है, और इसमें बिल्कुल हमें याद रखना चाहिए कि 1965 की जंग में जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया, जिनके नाम पर आज एक मशहूर शाहरा है लाहौर की, एम एम आलम की बात अगर हम करें, लेस देन इन वन मिनट जो है वो उन्होंने इंडियन जो है वो 5 हॉकर हंटर्स जो है वो उनको मार गिराया था, और ये रिकॉर्ड जो है वो नहीं ब्रेक हुआ। सो बिल्कुल जी, इसी पे इनको सितारा जुर्रत भी जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया था, और ये आप कहें कि हमारे लिए प्राउड था, और हमारे पास तैयारे बहुत कम थे, उनके पास तैयारे बहुत ज़्यादा थे, कह लें कि एक तैयारे का मुकाबला 3 तैयारों से था, लेकिन जो हिम्मत थी, जो स्ट्रैटेजी थी, और जो हौसला था, जो कॉन्फिडेंस था, और जिस तरह की मैनेजमेंट थी, स्ट्रैटेजी थी, थिंकिंग थी, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जो आपको जंग जितवाती हैं।
2: जी बिल्कुल, और आप एक बात नोट करें कि जैसे अभी आपने कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज बेशक कम थे, लाइक हमारे पास जेट्स उतने ज़्यादा नहीं थे जितने उनके थे, और हमने जो है वो बतरी अपने कम रिसोर्सेज के बावजूद जो है वो हासिल कर ली। तो इसकी एक निशानी और एक एग्जांपल तो यही है, यही इवेंट है कि 5 तैयारों को हमने आधे मिनट में

0: एक ही त्यारे से मार गिरा है.
1: बिल्कुल जी बिल्कुल.
0: तो हमारा एक भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारों पे भारी है
1: जी. उस टाइम पे देखिए हमारे दुश्मन जो है वो रात के अंधेरे में ही हमेशा हमारे पे, लेकिन हमने जो है वो कभी भी जो है ना इस चीज से हम घबराए नहीं है. और ये एक मजबूत कौम की निशानी है. और हम हर साल जो है इस दिन को याद करते हैं, अपनी फोर्सेस को सल्यूट पेश करते हैं, ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि वो हमारे लिए दिन रात इतनी एक्टिव रहती हैं, हमारी सरहदों पे एक्टिव रहती हैं, ताकि कोई दुश्मन जो है वो रात के अंधेरे में भी हमें जो है वो निशाना ना बना सके. तो बिल्कुल जी, आज इस दिन को सेलिब्रेट करें, इस जज्बे को सेलिब्रेट करें. और जब आपके साथ यूथ होती है ना, यंग लॉट होती है, अभी लास्ट 14 अगस्त की सेगमेंट में ना आप लोगों की ही बैच के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के थे बच्चे,
0: हम सब
1: सो मेरे साथ बहुत सारे थे. तो आई एम वेरी ग्लैड कि आज जब 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर हम 1965 की वॉर की बात कर रहे हैं, हम उस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं और हम उस बुजदिलाना हमले की बात कर रहे हैं, तो मेरे साथ फिर से यूथ मौजूद है स्टूडियोज में. सो बिल्कुल जी, हाँ एक मिले नगमा सुनते हैं और थोड़ा सा जज्बा और बढ़ाते हैं.

0: This is FM 101.1.
1: सोना लाया है NPS, तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: FM 101, नाल नाल साडे ते नाल नाल तुवाडे। क्यों जी, कोई शक है क्या?

0: All right. Welcome back once again. Radio Pakistan F101 ke Love and Allah Studios. आप सुन रहे हैं आज हमदा खान को और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मेरी एक हमदम और अरीज हमारे साथ मौजूद है. बिल्कुल जी, हमदा सदीकी और अरीज फातिमा मेरे साथ मौजूद है स्टूडियोज में. हम वैसे बात तो नामों की कर रहे थे लेकिन उसके साथ साथ पहले ज़रा हम बात कर लेते कि आज 7 सितंबर है और आज हम पाकिस्तानी दो लेजेंड्स की बात कर रहे हैं. एक की डेथ एनिवर्सरी है और एक की जो है वो बर्थ एनिवर्सरी है. सो हम जो है वो दोनों लेजेंड्स को याद करेंगे. अनवर मकसूद साहब की बात करूं तो हमारे पाकिस्तानी लेजेंडरी स्क्रिप्ट राइटर हैं, टीवी प्रेजेंटर हैं, ह्यूमरिस्ट हैं, एक्टर हैं और बहुत सारे जो 1970s और 80s के ड्रामास के राइटअप्स हैं वो अनवर मकसूद साहब ने लिखे हैं. सो अनवर मकसूद साहब जो हैं एक लिविंग लेजेंड है हमारे लिए. इनका पूरा घराना जो है वो इट्स लाइक फुल ऑफ इंटेलिजेंट, डाइवर्स और बहुत सारे अच्छे किरदार और बहुत सारे अच्छे राइटअप्स इन्होंने हमें दिए. और अनवर मकसूद साहब का जो लूज टॉक है वो मेरे ख्याल में मैंने आपने अब मैं अगर जिंदगी की बात करूँ ना तो मुझे लगता है कि उनको भी पता होगा. मेरे सामने जिंदगी बैठी भी है. सो आई वॉन्ट कि आप लोगों ने लूज टॉक देखा था ठीक है, राइट? क्यों, हाँ बिल्कुल जी. विद अनदर लेजेंड मोइन अख्तर साहब के साथ जो है वो लूज टॉक हम सब ने देखा है, हम सब ने इंजॉय किया है. अनवर मकसूद साहब के हवाले से पेंटर भी थे, बहुत अच्छे राइटर भी थे और अनवर मकसूद साहब के बेटे जो है वो भी मल्टी टैलेंटेड है, वो भी सिंगर हैं. अनवर मकसूद साहब ने कॉमेडी जॉनरा में जो है वो बहुत सारे लॉन्ग प्लेज लिखे और इसके अलावा जो है वो बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है उनकी और ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके उन्होंने जो है वो रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को. आप लोग कुछ कहना चाहते हैं अनवर मकसूद के बारे में?
1: मैं अपनी अनवर मकसूद की, क्योंकि मैं तो हमारे घर में लूज टॉक बहुत अरसा सुना जाता था और फिर मेरी अम्मी अबू वगैरह
0: राइट
1: पुराने ड्रामे थे, आंगन टेढ़ा, ना जाने, ये सब ड्रामा हमारे घर में बहुत अरसा पहले से देखे जाते.
0: बिल्कुल,
1: मैं तो उनको तब से सुन रही हूँ जब से मुझे अल्फाज की या इस तरह की चीजों की होश भी नहीं.
0: हाँ,
1: तो मैं बचपन से ही उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ.
0: बिल्कुल,
1: मुझे रिसेंटली, हालांकि वैसे बड़ी अजीब सी बात है, पता होना चाहिए था,
0: बिल्कुल जी.
1: खुशी वाली भी थी और बड़ी बात भी थी कि मुझे आज तक की बात पता ही नहीं चली, क्योंकि मैं जैन अली खान साहब की बहुत बड़ी मदाम हूं और अनवर मकसूद साहब की भी बहुत बड़ी मदाम हूं.
0: बिल्कुल,
1: बड़ी मतलब खुशी की बात है और क्योंकि ये पूरी फैमिली ही आर्टिस्टिक है.
0: जी जी,
1: लोगों ने सबने जुबैदा अपा का तो नाम सुना होगा, वो भी उनकी बहन है. तो बहुत आर्टिस्टिक फैमिली है और बहुत बहुत शानदार लोग हैं. उनके जो बेटे हैं बिलाल मकसूद बहुत अच्छे सिंगर हैं और स्ट्रिंग्स के को-फाउंडर भी हैं. तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की आर्टिस्टिक फैमिलीज जो है वो एक मुल्क का सरमाया होती है.
0: बिल्कुल,
1: आर्ट में और कल्चर में एज अ फैमिली वो हमारा सरमाया है, तो इन लोगों की कदर करना बहुत जरूरी है.
0: बिल्कुल जी. अच्छा, इसके अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 1994 में इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया, हिलाल इम्तियाज दिया गया. 2013 में पीटीवी की तरफ से अवार्ड दिया गया. 2000 में पीटीवी सुपरस्टार अवार्ड्स में लाइव अचीवमेंट ऑनर जो है वो पाकिस्तान मीडिया अवार्ड्स में दिया गया. फिर दिन हम अवार्ड्स में भी जो है इनको लाइव अचीवमेंट अवार्ड दिया गया. बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है अनवर मकसूद साहब की और बिल्कुल हमारे लिविंग लेजेंड है. और इनके साथ साथ हमारे एक और लेजेंड जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है, 7 सितंबर 2004 में जो है वो इस दुनिया फानी से कूच कर गए थे, इशफाक अहमद साहब. पाकिस्तानी राइटर, ब्रॉडकास्टर कहे जाए, बहुत सारे नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, बहुत सारे पीटीवी के लिए प्लेज, रेडियो पाकिस्तान के लिए प्लेज जो है वो इन्होंने लिखे. और क्या बात है जी इशफाक अहमद साहब की कि अब जब हम सोशल मीडिया के दौर में हैं तो मेरे ख्याल से हम में से जो लोग नहीं भी जानते वो भी इशफाक साहब का कुछ ना कुछ हमारे नज़रों के सामने आता रहता है और हम अपनी लाइफ के साथ जो है ना उन चीज़ों को रिलेट करते रहते हैं.
1: वो इस वजह से भी है क्योंकि उनका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है,
0: जी जी,
1: वो कंटेंपरेरी
0: और
1: वो इट इज फॉर ऑल टाइम्स. इतना यूनिवर्सल है और इतना मतलब सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा लिखते हैं और इतना
0: बिल्कुल और रियलिस्टिक और डेली लाइफ की चीज़ें जो आपकी बिहेवियर से रिलेटेड है, आपकी ज़िंदगी को सुधारने से बेहतर जो है, मतलब एक बेहतरीन ज़िंदगी बनाने से रिलेटेड जो चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें, एलिमेंट, ह्यूमन इमोशंस की बात करते हैं. सो अभी मैं उनका एक पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि आप अपनी खुशियों का गला घोंट कर जब परेशान हालों की मदद करते हैं तो खुशी खुद ब खुद आपकी तरफ सफ़र शुरू कर देती है. कोई चीज़ आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जो खुशी आप किसी रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। तो बिल्कुल, अगर आप वो कहते हैं ना दूसरों के लिए रास्ते आसान करो, तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद रास्ते आसान कर देता है। सो दिस इज़ समथिंग कि आप अपने आप को छोड़ के जब आप किसी रोते हुए को चुप करवाते हैं, उसको खुशी देते हैं या उसके प्रॉब्लम सॉल्ट आउट करते हैं, एक सिंपल सी बात है, डेली लाइफ की बात है। बिल्कुल, कॉम्प्लिकेटेड
1: वोकैबुलरी और तरकीब का इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर बड़े लिखारी बनेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि
2: बड़े लिखारी आप तभी बनते हैं जब आप सादी बात करते हैं। किसी मेरे एक सीनियर हैं, वो अक्सर कहा करते हैं कि आसान बात कहना सबसे मुश्किल बात है।
0: बिल्कुल,
2: और आप बात को जितना आसान रखेंगे, जितना सादा रखेंगे, वो उतनी खूबसूरत लगेगी। और आपने ये जो इनका कोट पढ़ा, ये इतने आसान अल्फाज में इतनी सादा बात है, और ये इतना बड़ा लाइफ का लेसन है कि इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ हमें कामयाबी से रोक सकती है।
0: बिल्कुल जी। और रीच, एक और मैं अभी इनका पढ़ रही थी, वो भी इस तरह से ये कि बड़े लोग वो नहीं होते कि जो बहुत सी बातें जानते हैं, बल्कि बड़े लोग वो होते हैं जो दूसरों की छोटी छोटी बातों को समझ सकते हैं। सो दिस इज़ दैट ईजी कि इतनी खूबसूरत चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है, जो कि आपको ज़िंदगी में सिखाती हैं कि क्या चीज़ मैटर करती है और ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए या एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं।
3: अच्छा, जो अभी मैंने बात की कि अशफाक अहमद का स्टाइल ऑफ राइटिंग कंटेम्प्रेरी है, आपने अभी जैसे बात की कि आजकल के ज़माने में हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि हम लोगों को तवज्जो दें, ठीक है। और आपने जैसे कहा बड़ी बड़ी बातों को जहन में रखना कोई कमाल नहीं है, छोटी छोटी डिटेल्स को, छोटी छोटी ख्वाहिशात को, और किसी की छोटी छोटी जो आरजुएं हैं या तमन्नाएं हैं या आपसे उम्मीदें हैं, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और अशफाक अहमद साहब का तो हमसे, मेरे से और हमना से बहुत गहरा ताल्लुक इसलिए भी है कि वो भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से हैं और हम भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से हैं।
0: अच्छा, आप तो खैर ऐसी यूनिवर्सिटी से हैं जहाँ से हमारे बहुत सारे लेजेंड्स की जो है ना एक क्या मैं कहूँ, एक लेगेसी है।
2: बिल्कुल ऐसे ही। और ये इत्तेफाक की बात यह है कि जितने रावियंस हैं उनमें से बहुत से लोग वो हैं जो रेडियो पाकिस्तान के ट्रेंड शुदा है।
0: जी,
2: तो
0: जी, जी।
2: रावियंस भी हैं और रेडियो पाकिस्तान के लोग भी हैं, तो हम लोग तो तकरीबन हमसाए हमसाए हो गए ना।
0: आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि रेडियो पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं कहती हूँ कि ऐसे ऐसे आप जिन लेजेंड्स की बात करेंगे उनका ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान से था।
3: बिल्कुल ऐसे,
0: आप जिनका भी नाम लेंगे। और अभी जब हम अशफाक अहमद साहब की बात करें तो मैं जब उनको पढ़ती जाती हूँ ना तो चीज़ें रिलेट करती रहती है। और अभी जब मेरे सामने ये चीज़ आई है कि इंसान के पास तोहफा देने और लेने के लिए सबसे कीमती चीज बस वक्त है।
3: बिल्कुल,
0: वक्त ही है मतलब, और दिस इज समथिंग जो टाइम अब आजकल हम नहीं दे पाते एक दूसरे को, नहीं दे पाते, हमारे पास नहीं टाइम। हम अब बहुत कैजुअली कह देते हैं, नहीं भी कह पाते तो हम कहते हैं कि अगला समझ आएगा, ठीक है। सो दिस इज छोटी छोटी चीज़ें, और वाकई जो टाइम होता है ना आपका वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है।
3: अच्छा, मुझे अशफाक अहमद का एक बहुत खूबसूरत कॉल है और अभी मेरे सामने से गुजरा कि अल्फाज जो हैं वो इतने अहम हैं कि अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, लफ्ज़ों के दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं, और अगर ये काट लें तो इनके ज़ख्म कभी नहीं भरते।
0: ये वही बात है ना कि ज़ुबान का जो होता है ना, ज़ुबान का वार जो है वो नहीं जाता, मतलब वो जो लफ्ज़ होते हैं ना आपकी, वो इस तरह से ही है। और बिल्कुल जी, इसी बात पे हम एक और ट्रैक की जानिब चलते हैं। ट्रैक के बाद लौट कर आते हैं तो मैं बताऊँगी कि हमारी ऑफ एयर कॉलर जो हैं उनके कितने हमनाम हैं। और जी, एक ट्रैक की जानिब बढ़ते हैं, ज़ीशान अली की आवाज़ में खूबसूरत ट्रैक इंजॉय करें। मैं, हमना और अरीज यहीं पर है, विल बी राइट बैक।

0: जी वेलकम बैक वंस अगेन. और हम बात कर रहे थे इशफाक अहमद साहब की, उनको याद कर रहे थे, ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे. आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है और 7 सितंबर को इस दुनिया फानी से कूच कर गए थे. हमारे लेजेंडरी पाकिस्तानी राइटर ब्रॉडकास्टर कहा जाए. इसके साथ साथ हम जो है वो ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं अनवर मकसूद साहब को, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है. 7 सितंबर 1939 को जो है वो पैदा हुए और बहुत बहुत बहुत ऐसा काम है इनका जो कि अगर कहा जाए तो रहती दुनिया तक ऐसे ही रहेगा. इनके अल्फाज ऐसे ही रहेंगे, इनके प्लेज, इनके राइटअप्स, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए वो ऐसी ही रहेगी. सो बिल्कुल जी, हम उसके साथ साथ क्योंकि मेरी एक हमनाम भी मौजूद है तो मैं थोड़ा उनको भी छेड़ी थी. और अभी जो है ऑफ द एयर हमारे साथ जी 04211001011 पर जो है वो रिमशा मौजूद है. और रिमशा कहती हैं कि जैसे आप लोग कह रहे हैं ना हमनाम हमनाम, तो कहती हैं कि मेरी एक जो क्लास फेलो थी ना उनका नाम था यमुना और उनकी बहन का नाम था हमना. मैंने कहा ये तो बाप वो वाला मजाक कर रही है जो हमें छेड़ा जा रही है.
1: मुझे मेरे एक फैमिली के एक अंकल अक्सर कहा करते थे हमना यमुना आ गई होती
0: और मुझे हमना तुमना भी कहा जाता था और हमना जा रहे हैं, हमना चिड़ियाघर गए थे. एंड आई वाज लाइक अच्छा एक सर्टेन टाइम पे ना मैं अपनी अम्मी से शिकवा करने लगी थी कि क्यों रखा आपने ये नाम ना, मतलब ये तो जोड़ने के लिए होता है ना हमना वहां गए थे.
1: अच्छा मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि हमना का मतलब क्या है.
0: हमना का मतलब जो है ना ये सूरह बकरा में भी एक आयत में आता है और इसका मतलब मैं जो है ना वर हमना उसमें आता है तो रहम काइंडनेस. तो मैं अपने आप को कहती हूँ आई एम सो काइंड.
1: नहीं जो जो लफ्स है ना हमना हाँ. वो जो जो आप वो काइंडनेस वाला कह रहे हैं ना वो है वरहमना
0: हाँ.
1: वो रहम से है हाँ. ठीक है. लेकिन जो लफ्स जितनी जो मेरी रिसर्च है मामूली सी उसके मुताबिक हमना का मतलब है जहीन.
0: जहीन
1: तो आई होप के
0: ओके आई गो विद दैट. मैं काइंडनेस के साथ भी ओके हूँ, मैं जहीन के साथ भी ओके हूँ. आई गो विद बोथ.
1: वैसे कहते हैं कि नामों का इंसान की पर्सनैलिटी पर
0: बहुत असर पड़ता है. बिल्कुल जी, एक अच्छा नाम जो है वो बहुत मैटर करता है. अच्छा
1: जैसे कि मेरा नाम मेरी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा असर अंदाज
0: है. आपके नाम का मतलब क्या है?
1: मेरे नाम का मतलब है खुशबू.
0: अच्छा
2: वाह.
1: और मुझे खुशबू की शायरा से बहुत जो है वो मोहब्बत भी है और बहुत उनको उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ.
0: ठीक है.
1: इससे मुझे शेर याद आ गया, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है,
0: फूल किधर जाएगा. ठीक है जी, ठीक है. और जी अच्छा हमारे साथ ना ऑफ द एयर रिमशा जो है बात करी थी कि उनके नेबर्स में ही इवन 5-6 रिमशा है. तो मैंने कहा ये तो फिर बड़ा मुश्किल काम होता होगा, किसी के घर चीज़ भेजनी होती होगी तो वो हर रिमशा के साथ जो है ना कोई एक होता है ना नेबर्स में कि आपने गेट्स के नाम रखे होते हैं कि जी वो वाइट गेट वाले वो ये वो ये, या फिर कुछ भी आपने ना निकनेम्स रखे होते अपने घर में ताकि आइडेंटिफिकेशन रहे.
1: होंगे हरे गेट वाली रिमशा, कमेटियों वाली होगी रिमशा.
0: तो कहते हैं कि जी 5-6 रिमशा है तो मेरे कहा ये तो काफी मुश्किल टफ कंपटीशन हो जाता होगा. भेजना है आपके घर होता होगा कुछ ना कुछ बांटने के लिए या कुछ ना कुछ पकाया हुआ तो किसी और रिमशा के घर. हाँ,
1: तो आयशा हमारी क्लास में इतनी सारी निकल आती है और मेरा फोन बुक में जो कैटलॉग है कॉन्टेक्ट का वो तो आयशा से भर गया है. अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे सेव करूँ.
0: यूजुअली जो है ना क्लास में भी ऐसे ही होता है, जैसे अभी रिमशा भी बता रही थी कि जब उनके फादर का नेम जो है ना, उनकी क्लासमेट थी उनका नाम भी रिमशा था, तो जब फादर का नेम या सर नेम जो है वो आपका वो ही ट्रूली जो है ना डिफ्रेंशिएट कर पाता था कि जी आप किस तरह से जो है ना कह लो कि कौन सी वाली रिमशा की बात कर रहे हैं. सो इस तरह से होता है और हमने जो है ना बड़ा एक ये हमारे कल्चर का पार्ट है और समटाइम्स अच्छा भी लगता है. समटाइम्स हम अपने बड़ों को छेड़ते हैं कि आप लोगों ने क्या हर किसी के नाम रखे हैं कि ये वाला वो फलाने वाला वो फलाने वाला. लेकिन देखें अब इनके साथ जो मामला है, एक ही गली के अंदर 5-6 रिमशा हो तो फिर क्या करें.
1: उनके लिए तो एक स्पेसिफिक सेपरेट आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी.
0: बिल्कुल जी बिल्कुल. और राइट जी, आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, ऑफ एयर कॉल्स का सिलसिला जारी है. 04211001011 पर आप कॉल कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप लोग फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/FM11 लाहौर के पेज पे आपने जाना है जी. पोस्ट अपडेट है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में मुझे बता सकते हैं अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे हम नाम है. क्योंकि बात ही छिड़ गई अब हम नाम की तरफ. लेकिन जी इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं आज जो एक इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है उसके हवाले से बात करेंगे. اور وہ انٹرنیشنل ڈے جو ہے وہ کلین ایئر کے حوالے سے ہے, بلو اسکائز کے حوالے سے ہے, اور فضا پہ بات کرنا, ماحولیات کی بات کرنا, انوائرمنٹ کی بات کرنا, دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اور اس میں کوئی بارڈرس کی بات نہیں ہوتی, کہ یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ کا ملک میرا ملک, یہ پوری دنیا کی بات ہے, یہ فیوچر جنریشنس کی بات ہے.

0: तो बिल्कुल जी, आज जो है वो इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर एंड ब्लू स्काइज मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने की जो एक इम्पॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि हमारी फ़िज़ा जो है ना, जिसे कहते हैं ना, साफ़ पानी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी की अलामत है, इसी तरह से जो क्लीन एयर है वो बहुत मैटर करती है।
1: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए साफ़ पानी, साफ़ हवा, साफ़ फ़िज़ा बहुत ज़रूरी है, और इस हवाले से हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह के हमारी रोज़मर्रा की जो टेक्नोलॉजी है उसके एडवांसमेंट के साथ साथ, इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट के साथ साथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वगैरह हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें एक तरह से बहुत सारे तरीकों से फ़ायदा दे रही हैं, लेकिन ये किसी किसी तरीके से हमारे माहौल को, हमारे पानी को, हमारी हवा को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा रही हैं। और ख़ास तौर पे इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये होता है कि कुछ दुनिया के इलाके ऐसे हैं जो कि पोल्यूशन में, वर्ल्ड की पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट बहुत कम करते हैं, लेकिन उन वो जियोग्राफिकली ऐसी जगहों पर लोकेटेड हैं कि उनके ऊपर उस पोल्यूशन की वजह से होने वाले जो असरात हैं उनका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। अभी हम रिसेंटली जैसे देख रहे हैं नेपाल में सैलाब वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही आई हुई है, और इसकी वजह ज़ाहिर है अब ख़राब पोल्यूशन है, ख़राब माहौल है, पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है जो डिफरेंट केमिकल्स की वजह से, हार्मफुल केमिकल्स की वजह से फैल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम सबको इस बात की कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इस नुकसान की वजह बन रही हैं और इनको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए ना, हमारा कितना सांस से कितना गहरा ताल्लुक है कि जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो सबसे पहले वो सांस लेता है, ठीक है, और वो सांस जो है जो हम हर मिनट में ले रहे हैं, एवरी सेकेंड हम सांस ले रहे हैं, तो या तो वो सांस इतनी अच्छी है कि वो हमें ज़िंदा रखेगी, या फिर हमें इतना इतना पोल्यूटेड कर देगी, इतना जहर आलूद हमारे अंदर कर देगी कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सो हमारी जो सांस है, जो एयर है, वो तकरीबन जो है 99% तो आप कह लें कि वो पोल्यूटेड ही है। हम स्मोक भी है, इंडस्ट्रियल स्मोक भी है, हमारी एग्रीकल्चर तबाह हो रही है, हमारी अपनी हेल्थ तबाह हो रही है, और उसकी वजह से जो है और इसमें जैसे आपने बात की, इसमें कोई बॉर्डर्स की बात नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: ये एक यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अगर ये इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है तो ये एक कंसर्न है, ये एक अलार्मिंग साइन है, और हम देख भी रहे हैं हमारा अपना मुल्क बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है इस सारी चीज़ से, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, और बहुत सारे हम देख रहे हैं फ्लड्स हैं, हम बेमौसमी, पिछले शो में मैं बात कर रही थी कि पहले ऐसा होता था कि इस्लामाबाद में बारिश हुई है, फिर आपकी बारिश आ जाती थी, लाहौर तक आ जाती थी, अब इतना कोई अजीब मौसम है कि आपको नहीं समझ आती, आपकी रेन की प्रेडिक्शन होती है, रेन नहीं होती, नहीं होती तो रेन हो जाती है, और एक जगह पे पिंडी में जो है वो एक अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन है, जबकि लाहौर में तेज़ धूप है, और अभी भी अगर हम टेम्परेचर देखें तो अच्छा खासा जो है वो एक्सेसिव हीट इस टाइम पे जो है वो लाहौर का वेदर है, 34 डिग्रीज हैं। सो आप रिलेट कर सकते हैं कि कितना ज़रूरी है कि हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करें, और इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं इंडिविजुअली। उसके लिए एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जब हमारे पास इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, या हम जब स्पेशली अगर हम रिलेट करें, हम जब गांव वगैरह में जाते हैं, फसलों में जाते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली फील होता है, इवन हम जब पहाड़ों में भी जाते हैं, नॉर्थ वाली साइड पे जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: एकदम से आपको फील होता है, इवन आप रोड पे पैदल भी जा रहे हैं, यहाँ तो आप रोड पे पैदल जाते हैं तो जाते जाते पता नहीं कितना धुआं आप अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, इवन वो पैसिव स्मोकिंग वाली चीज़ भी आप कह लें तो वो भी आपको
1: पहाड़ों
0: कर रही है।
1: पहाड़ों में या गांव में जाते हुए सबसे पहली चीज़ जो मैं नोटिस करती हूँ वो ये होती है कि आसमान कितना साफ है।
0: साफ
1: मैं सोचती हूँ कि आसमान इतना क्लियर भी हो सकता है। मैं पहली दफ़ा जब पहाड़ों में रिसेंटली गई थी, मैं बचपन में नहीं गई ना, तो पहाड़ों में जाने के बाद रात के वक्त सबसे पहला सवाल मेरे जहन में यह है कि आसमान पे इतने ज़्यादा तारे होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि शहरों में रहने वाले लोग पोल्यूशन की वजह से देख ही नहीं पाते।
0: और आपने देखा कि वो स्टार्स भी आपको इतना अट्रैक्ट करते हैं और इतना खूबसूरत स्काई लगता है, यहाँ पे अगर स्टार नज़र भी आए ना तो बहुत ही कोई इक्का दुक्का और वो छोटा सा बहुत कुछ नज़र आता है, वहाँ पे प्रॉपरली जो है ना आपको ब्राइट स्टार्स नज़र आते हैं, आपको इवन जो है वो समटाइम्स मिल्की वे भी नज़र आ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा कह दिया
1: नहीं वो वाकई आती है,
0: लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा और ज़्यादा जो है ना
2: कॉन्स्टेलेशंस तो आपको नज़र आते हैं।
0: हाँ, लेकिन ये देखे ना कि ये कंस्ट्रक्शंस जो है, ये जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हैं, ये हमारी सॉइल को भी, हमारी एयर को भी, और हमारी ऐसा हमारे लंग्स जो हैं वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहे, हमारा स्टैमिना जो है वीक होता जा रहा है, हमारी वाटर कंटेमिनेशन हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं. अब एक बच्चों की जो है लंग्स में बीमारियाँ, प्री मेच्योर जो है ये बीमारियाँ पैदा हो रही, तो वो इसलिए हो रही क्योंकि आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आपसे आगे आगे आगे जो है वो पास ऑन होती जा रही है.
1: बिल्कुल. और ये जो चीज़ें, ये हमारी हेल्थ को और हम फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा रही हैं. ख़राब हवा की वजह से एक हमारा सांस का मसला होता है, उसकी वजह से हमारे लंग्स ख़राब होते हैं, हमारे लंग्स में ऑक्सीजनेशन की कमी होती है, तो उसकी वजह से हमारा ब्लड और अल्टीमेटली हमारा हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है. क्योंकि जाहिर है ब्रेन को कॉन्स्टेंटली ब्लड नहीं मिल रहा, ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा, ना हमारी फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी, ना हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी. तो दिस इज़ समथिंग दैट वी रियली नीड टू फोकस ऑन, कि हमें ये ज़मीन रहने के लिए दी गई है, गंदगी फैलाने के लिए नहीं दी गई. तो हम इस ज़मीन में रहें और दूसरों को भी रहने दें, इस काबिल ज़मीन को छोड़ें कि दूसरे हमारे आने, हमारे बाद आने वाली जो नस्लें हैं वो इस ज़मीन में रह सकें, इस काबिल ज़मीन रह जाए, हम पानी को, हवा को इतना रीज़नेबली इस्तेमाल करें कि आने वालों के लिए भी कुछ बच जाए.
0: बिल्कुल जी. और हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे भी आपने बात की ना हम ना, कि आपने कहा कि मेंटल हेल्थ के लिए भी, अब जैसे हम बात करते हैं, मैं अक्सर अपने शो में बात करती हूँ, वॉक की बात करती हूँ, और ये सारी चीज़ें छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं. जब आप बाहर जाते हैं, आप किसी पार्क में, ग्रीनरी में वॉक करते हैं, स्पेशली अगर कहा जाए कि अगर आप नंगे पाँव घास पर चलते हैं, तो भी आपका मेंटली आप जो है वो उस चीज़ को अब्जॉर्ब करते हैं और आप रिलैक्स फील करते हैं. तो इसी तरह से अगर वहाँ पे आपको, आप पार्क जाते हैं, आपको एकदम से फील होता है ना कि आप रोड से हट के जैसे पार्क में आए हो, दरख्तों के दरमियान ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाता है आपका. जैसे अभी हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली. सो अभी जैसे हम नॉर्थ की बात कर रहे थे, तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं, हम दरख्त लगाएं. और दूसरी चीज़ ये कि हम ट्रांसपोर्टेशन को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें. अब तो साइकिल चलाने का जो रिवाज है वो तो ख़त्म ही हो गया है. तो अगर हम कोशिश करें कि हम, ठीक है हमने ऑफिस जाने के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करनी है, व्हीकल्स इस तरह के यूज़ करने हैं, लेकिन जैसे अगर आपको संडेज मिल रहे हैं या कुछ इस तरह के आपके पास डेज हैं, उसमें आप साइकिल का यूज़ कर लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लें.
1: इससे हमारी अपनी फिजिकल हेल्थ भी बेहतर होगी. exactly. और हम एनवायरनमेंट की तरफ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. और दूसरा, आपने वो जो वॉक की बात की, मुझे उससे एक बड़ी अजीब सी बात याद आ गई. uh-huh. कि जो कि मुझे लगता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी है. right. कि कुछ अर्सा पहले की बात है, मैं एक अर्बन एरिया में ही एक लॉन में वॉक कर रही थी. mm-hmm. और मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे बहुत शौक है नेचर से करीब होने का, तो मैंने कहा क्यों ना मैं नंगे पांव वॉक करूं. मैंने जूती जूता उतारा और मैं नंगे पांव वॉक करने लग गई. और कुछ ही मिनट्स के बाद मेरे पांव में जलन होने लग गई. अच्छा. और मैं एकदम से इतनी परेशान हो गई कि ये क्या हुआ है. हाँ. तो जाहिर है मैंने पांव वगैरह धोए और मैं अंदर चली गई. मैंने उनसे, जिनका घर था, उनसे पूछा कि ये क्या. उन्होंने बताया कि हमने तो, आप बेटा, आपको किसने कहा था वॉक करने का, हमने तो अभी वो केमिकल वाली खाद डाली है यहाँ पे. और मैं इतनी हैरान भी हुई और परेशान भी हुई कि हम लोगों ने घरों के अंदर भी केमिकल वाली खाद का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो कि हमारी स्किन को इतनी जलन पहुंचा रही है, तो हमारी बॉडीज को कितना नुकसान पहुंचा रही होगी. और ये सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं, बहुत सी जगहों पे जहाँ पे केमिकल खाद का इस्तेमाल होता है, उससे एक तो हमारी जमीन पोल्यूट होती है, दूसरा ये कि उनसे रन ऑफ होके पानी जो कैनाल्स में जाता है, जो रिवर्स में जाता है, वो उनको भी पोल्यूट करता है और वहाँ उसमें रहने वाली मछलियों को भी मारता है.
0: बिल्कुल. आबी हयात को भी जो है वो पोल्यूट करता है. और वहीं से जो लाइफ स्टॉक आपकी पानी पी रही है, आपकी जो सब्जियां उग रही हैं, इवन आप देखें कि ये सब कुछ कैसे एक चेन की तरह कनेक्टेड है.
1: कुछ
0: कनेक्टेड है, मतलब आप वो कहीं ना कहीं से, आप सोचें ना कि ये तो सिर्फ एयर पोल्यूशन है ना, इसका क्या लैंड पोल्यूशन से, सोइल पोल्यूशन से क्या ताल्लुक है, वाटर कंटेमिनेशन से, लेकिन सब कुछ कनेक्ट होकर आप तक ही आ रहा है. आपकी एक फेंकी हुई प्लास्टिक की बोतल या आपकी इस तरह की कोई इंडस्ट्रियल पोल्यूशन या कोई इस तरह की एमिशन जो हो रही है, वो कहीं ना कहीं आप तक वापस आ रही है, किसी ना किसी सोर्स के थ्रू आ रही है, लेकिन इट इज़ कमिंग बैक टू यू.
1: और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर वो हमने जो चीज़ें डिस्कस कर ली, एक चीज़ जिसकी जो शायद इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको समझा नहीं जाता, हमारे आर्ट और हमारे कल्चर से रिलेटेड है, कि हमारे जितने भी कल्चरल हेरिटेजेस हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा, खासतौर पे जो इमारतें वगैरह हैं, वो सारी बनी है मार्बल से. लाइमस्टोन बोलते हैं उसको, रीच. हाँ, तो जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, एग्जैक्टली, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से होने वाली जो एसिड रेन है, वो उन सारी कल्चरल हेरिटेजेस को, उन सारी इमारतों को साल हर साल खराब कर रही है. और हमारे जो सारे हेरिटेजेस हैं वो उसकी वजह से करोड होते हैं, उनकी जो साख्त है वो खराब होती है. तो आई थिंक ये भी एक ऐसा एस्पेक्ट है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, जो शायद हम लोग समझते ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है. आप ये नोटिस करेंगे कि दुनिया में जितने एरियाज जहाँ पे हवा साफ है, जहाँ पे इसे ड्रेन कम होती है, उनके कल्चरल हेरिटेजेस, उनकी इमारतें जो खास तौर पे मार्बल्स वगैरह से बनी हैं, वो ज़्यादा देर तक सलामत रहती हैं बजाय उन जगहों के जहाँ पे एसिड रेन ज़्यादा होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एसिड रेन होगी उतनी ज़्यादा आपकी इमारतें भी ख़राब होंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और अब तो वैसे भी इस हवाले से काफ़ी अवेयरनेस भी है, और थैंक्स टू आई गेस सोशल मीडिया अगेन, बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक इवन वेजिटेबल्स की तरफ, ऑर्गेनिक फूड की तरफ, और ऑर्गेनिक जितनी भी रिसोर्सेज हैं, इवन आपकी कोई रेमेडीज़ हैं, कोई ब्यूटी रेमेडीज़ हैं, हेयर हेल्थ की तरफ, और वो सारी पुरानी चीज़ों की तरफ, इवन मिट्टी के प्यालों में पानी पीना, पैदल वॉक करना, इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम साइकिलिंग की तरफ फोकस करें या हम पैदल आने जाने पे फोकस करें। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, कोई लग्जरी या कोई शो ऑफ की बात नहीं है कि आपका कोई स्टेटस चेंज हो जाएगा या समथिंग लाइक दैट। आप कोई एक दिन चूज़ कर सकते हैं, बाकी दिनों में ठीक है, हमें सब कुछ जल्दी होती है, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। सो इस चीज़ों को जो है वो थोड़ा थोड़ा करके अगर हम अपना एज अ सिटीज़न भी रोल प्ले करें तो हम पूरी दुनिया के लिए, अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और राइट जी, एक और ट्रैक के जाने बढ़ते हैं क्योंकि टाइम जो है मेरे साथ जो दो लोग मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, इनको रुखसत करना है, लेकिन उससे पहले मैं इनसे एक सवाल करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस ट्रैक के बाद मैं इनसे ज़रा सवाल करूँ, फिर उसके बाद ये रुखसत हो यहाँ से। और राइट जी,

के सीना के दुखता ये सांस से क्यों सर तो लौट के मैं जाऊं किस मुंह से अपने घर को बोल के गया था कि मैं कुछ दिन में वापस और पांच माह गुजर गए इस एल्बम की खातिर फैन सारे पूछे कि सनी भाई कहाँ गए सकूं ढूंढू हाथों की मैं मैल लुट

तो रुक चुका है, मेरा मत लेना नाम मैंने छूटा है। जैसे मसले पसंद से आफतों के पास चला, धुंधले है रंग मैं तो सादत को पुकार रहा।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: All right. Welcome back once again. Radio Pakistan FM 101 के live वाले लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं आज हमदा खान को और मेरे साथ मेरी हमना मौजूद है स्टूडियोज़ में और उनके साथ रीच मौजूद है. और ऐसे ही होता ना कि जैसे आज मैं अपने एक हमनाम से मिली हूँ, इसी तरह से जैसे अभी हमना भी ये बात कर रही थी कि जब आप अपने किसी हमनाम से मिलते हो तो आप देखते हो कि उसमें क्या कॉमन है. सो इसी तरह से होता है, इंसान की हमेशा ख्वाहिश होती है कुछ लोगों को अपना बहुत अच्छा लग रहा होता है और समटाइम्स ढूंढ रहे होते हैं कि कोई अपने जैसा इंसान मिल जाए, कोई अपने जैसा यू नो कि आप ट्रेट्स देख रहे होते हैं और आप देख रहे होते हैं कि कोई अपने जैसा मिल जाए, हम ऐसे हैं तो हमें भी कोई ऐसा मिल जाए. सो एक रिसर्च हुई और एक सवाल पूछा गया कि अगर आपको क्या होगा कि अगर आपको रास्ते में अपने आप से मुलाकात हो जाए, खुद से मिलें आप. सो उस पर डिफरेंट रिस्पॉन्स आए. किसी ने कहा कि मैं अपने आप के साथ जो है वो बैठ के बातें करना चाहूँगी, किसी ने कहा मैं चाय पीना, किसी ने कहा मैं अपने आप को अपनी ज़िंदगी की एक्सपीरियंस है ना. कुछ लोगों को लगता है कि हमने ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं तो जब आप अपने आप से मिलेंगे तो आप कहेंगे कि मैं अपने आप को बहुत मारूंगा, या किसी ने कहा कि मैं तो अपने जैसे इंसान चाहता ही नहीं हूँ तो मैं नज़रअंदाज करूँगा. सो आज मेरा सवाल आप लोगों से सबसे यही है, स्पेशली मेरे सामने जो मेरी हमना मौजूद है, अरीज मौजूद है, मेरा इनसे भी ये सवाल है कि अगर कभी इनको रास्ते में इनकी मुलाकात खुद से हो तो ये क्या करेंगी. हमना से स्टार्ट करते हैं.
1: मैं वैसे एकदम से माइक से पीछे हट गई थी कि पहले इस सवाल का जवाब अरीज को देना.
0: अच्छा चले अरीज दे देती है. अरीज आप स्टार्ट कर लें.
2: जवाब मैं दे देती हूँ पहले. अच्छा मैं ये चाहूंगी कि मेरी मुलाकात खुद से हो, लेकिन मैं कोई 10-12 साल छोटी हूँ.
0: अच्छा, अभी करंट वाली नहीं है.
2: हाँ, मतलब मैं चाहूंगी कि मैं बजाते खुद हूँ और मेरी जिससे मुलाकात हो वो मेरा ही 10-12 साल पहले वाला वर्जन हो.
0: ठीक है.
2: और मैं उसको ये बताऊँ कि बहन जी ले अपनी जिंदगी,
0: ठीक है,
2: खुल के जी ले.
0: ठीक है.
2: और लाइक मैं 10-12 साल पहले बहुत कुछ करना चाहती थी. मेरे ना बहुत सारे ड्रीम्स हैं लेकिन अभी भी मैं जो है वो उनको इसलिए थोड़ा सा फुलफिल नहीं कर पाती कि मुझे होता है कि यार थोड़ा सा
0: आप थोड़ा ज्यादा मैच्योर हो जाते हो ना तो आप थोड़ा ज्यादा सोचने लग जाते हैं. तो मुझे लगता है रीच के साथ अभी थोड़ा वो वाला मामला चल रहा है, इसलिए वो अपने से जो 10-12 साल छोटी है रीच है उसको समझाना चाह रही है कि ज्यादा सोचो नहीं, जस्ट डू इट व्हाट यू
2: जस्ट डू इट और एक्सप्लोर करो जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकती हो उतना ज्यादा करो, ताकि मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हो मेरी प्लेट में और मैं अपने आप को एक बहुत स्ट्रॉन्गर वर्जन देखना चाहती हूँ जिसने बहुत कुछ करना है, जिसने अपने आप को किसी बॉक्स में फिक्स नहीं करना कि मैं यही हूँ मैं यही हूँ. कंटेनमेंट नहीं है और आगे बढ़ने का सफर जो है वो जारी रहे और खुल के जीने वाला.
0: राइट. अच्छा यहीं से हम हमना की तरफ कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद हमें न्यूज़ ब्रेक की जानिब बढ़ना है. सो थोड़ा सा हम कंटिन्यू करते हैं फिर न्यूज़ ब्रेक की तरफ चलते हैं.
1: जी मेरी मुलाकात अगर रास्ते में मुझसे ही हो जाए तो मैं अपने आप को यानी उस शख्स को ये तसल्ली दूंगी कि इट विल बी ओके.
0: ओके.
1: आप जो भी कर रही हो इस वक्त, जिस भी चीज से गुजर रही हो, ये भी गुजर जाएगा. अगर अच्छी चीज है ये भी गुजर जाएगी, अगर बुरी चीज है ये भी गुजर जाएगी, तो कोई भी चीज परमानेंट नहीं है. और दूसरी ये चीज मैं अपने आप को बताऊंगी कि आई एम प्राउड ऑफ यू वट एवर यू आर डूइंग.
0: ओके.
1: इवन दो नो वन एल्स इज बट आई एम प्राउड ऑफ यू.
0: ऑलराइट.
1: दैट्स व्हाट आई विल टेल
0: मायसेल्फ. इसी बात के साथ जो है न्यूज ब्रेक की जाने बढ़ते हैं. न्यूज ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, इनसे मजीद बात भी करेंगे. स्टे ट्यून्ड विद अस.
3: अहम खबरों का खुलासा. आज योम फजाइया मनाया जा रहा है जिसका मकसद सितंबर 1965 की जंग में भारतीय जारियत के खिलाफ मुल्की फजाई हदूद का दिफा करने वाले मुहाफिजों की बहादुरी को खराज तहसीन पेश करना है. वजीर आजम ने पाक फजाइया के बहादुर फजाई जंगजुओं की जुरात और पेशावराना महारत को खराज तहसीन पेश किया है. पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की हैसियत से मुतालिक भारत के बेबुनियाद दावे अक्सर मुस्तरद कर दिए हैं.

0: his music, and then their magic. One Above, FM 101.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: All right. Welcome back once again. Radio Pakistan FM 101 ke live on Allah studio se aap sun rahe hain aaj Hamna Khan ko. Aur mere saath jo studios mein hamare internship program ke kuch candidates maujood the jo interested the. Acha laga unke saath aur maza bhi aaya. Aur sometimes aap solo show karte jo hai na, sometimes aapko acha bhi lagta hai ki aapke saath jo hai na, wo koi aake mic pe jo hai na, zara aap maza aata hai. Aap chhedkhani bhi karte hain, aap thodi guftgu bhi karte hain, thoda sa aur interest bhi आपको पता चलते हैं. सो एनी वेज जी, हम बात कर रहे थे, हम नामों की बात हो रही थी, तो वहीं से हमारे कुछ कॉलर्स ने जो है वो रिलेट किया और हमारे साथ मौजूद थी ऑफ द एस 4 2 1 1 0 1 1 पर. उन्होंने कहा कि उनको ज़िंदगी में जी एक ही हमारा मिले अपनी क्लास वाले. तो मैंने कहा नहीं, हमारा तो इतना कॉमन नेम है. तो कहती हैं आपकी ज़िंदगी में कितने हैं. मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में डायरेक्टली कोई हमारा नहीं है, लेकिन हाँ ये पता है कि मतलब हमारा मिलती रहती है, बट ये कि कोई फ्रेंड सर्कल में या क्लोज फैमिली में नहीं है. बट ऑफकोर्स जी, उसके साथ साथ हमारे साथ एसन मौजूद थे अभी ऑफ द एयर, और माहौल के हवाले से हम बात कर रहे थे क्योंकि आज इंटरनेशनल डे भी है क्लीन एयर का. माहौल की बात कर रहे थे, फ़ज़ाई आलूदगी की बात कर रहे थे, और इन्होंने क्योंकि पौधे रखे हुए हैं घर में, शौक भी है, और ये काफ़ी कॉन्शियस भी हैं इस हवाले से. इज़ द वन ऑफ़ दो स्कॉलर 101 के जो कि इन्वायरमेंट पे और एयर पोल्यूशन पे और फ़िज़ा के हवाले से, हम जब भी प्लांटेशन की बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं, तो ये उस पर बात करते हैं और अच्छा भी लगता है. और उसके साथ साथ इन्होंने बताया कि जैसे कपास आजकल जो है वो उगी हुई है, और जब शबनम के कतरे उस पर गिरते हैं, तो सुबह सुबह जो है वो वहाँ पर वॉक करने का बड़ा मज़ा आता है. लेकिन मैंने कभी जो है ना कपास उगी हुई मतलब उस तरह से नहीं देखी. हमेशा कह लें कि एक तरह से वीडियोज़ में देखी, टीवी पे देखी समहाउ, लेकिन लाइव जो है ना, जिसे कहते हैं ना आँखों देखी, वो मैंने नहीं देखी. तो हम जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, काफ़ी चीज़ें जो है वो हमने मिस आउट की हुई है. कुछ लगा भी हो तो एटम्स नहीं पता होता, क्योंकि ज़ाहिर है जो शहर में रहते हैं उनका उस तरह से एक्सपोजर नहीं है. सो इस तरह से जो है ना, मुझे अच्छा लगा कि कभी ज़िंदगी में मैं भी एक्सपीरियंस करूँगी कपास लगी हुई. एनीवेज जी, हम बात कर रहे थे कि अगर आपकी मुलाकात जो है वो अपने आप से ही हो जाए रास्ते में, मतलब लाइक यू मेट योर ओन वरियन, और आपको अपने आप से ही अगर आपकी मुलाकात हो जाए तो आपको कैसा लगेगा या क्या करेंगे आप. और ये एक क्वेश्चन है जिस पे एक काइंड ऑफ डिफरेंट किस्म के रिस्पॉन्सेज आए. किसी ने कहा कि मैं अपने आप को इग्नोर करूंगा, किसी ने कहा मैं अपने आप को मारूं और फिर मैं रोऊं, किसी ने कहा मैं अपने आप के साथ चाय पीना चाहूँगा. तो देर आर डिफरेंट थिंग्स. लेकिन ऐसन ने ये कहा है कि जी, ऐसन कहते हैं कि मैं अपने आप को मिलूंगा तो मैं अपने आप को कहूँगा कि इतने पंगों में ना पड़ते इतने पंगों में ना पड़ते कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती और आप किसी को इनकार ही ना कर पाते. सो इनकार करना जो है वो इनके लिए बड़ा मुश्किल है. होता है. एक होता ना कि आप अपनों को इनकार नहीं कर पाते किसी काम से, एक होता है कि आप किसी को भी इनकार नहीं कर पाते. लाइक आपको सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा कि किस तरह से, और फिर उसके बाद आपको ना अजीब सा गिल्ट होने लग जाता है कभी अगर आप कर ही देना इनकार, कोई प्रॉपर एक बहाना सोच के. हमने जैसे बहानों पर बात की थी ना अभी, सो अगर आप पक्का बहाना भी सोच लेंगे ना, सो उसके बाद भी आपको ऐसा रिग्रेट होगा ना कि पता नहीं बस मैंने क्या कर दिया. हालांकि वो सामने वाला इंसान जिसको आपने किया होगा ना कोई बहाना इनकार किया होगा, वो चाहे आपको रोज ही किसी ना किसी बात पे जो है ना कोई बहाना दे रहा हो, कोई इनकार कर रहा हो, लेकिन आप जब करेंगे ना तो वाकई आपको फील होगा. सो इनको लगता है कि अगर अपने आप से मिलेंगे तो अपने आप को यही समझाएंगे कि इतने पंगों में नहीं पड़ना था. ऑलराइट जी, हम लाइव कॉल्स की जाने बढ़ेंगे. पहले कॉलर, लेट्स सी हमारे साथ कौन होते हैं 04 2 1 1 0 1 1 पर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी कौन है, कहाँ से बात कर रही है?
1: जी मैं
0: लाहौर से रिमशा, शुक्र है पहली कॉल मेरी मिली. ओहो रिमशा, अपने आप से मिलेगी तो क्या कहेगी?
1: मैं अगर अपने आप से मिलूंगी ना तो मैं तो यही कहूंगी चलाओ घूमने चलते हैं.
0: मतलब आप वो इंसान है जो अपने आप को कहेगी कि आओ बैठ के चाय पीते, आओ गोलगप्पे खाने चले, आओ शॉपिंग करने चले, ठीक है?
1: बिल्कुल. आप देखे ना, अगर हम किसी को कहेंगे आओ घूमने के लिए चलते हैं, बाहर गर्मी हो रही है, अगर जैसे हाँ. अपने भाइयों को बहने कहते हैं कि आओ घूमने चले, वो कहते हैं बाहर से क्या करने जाना. अगर मैं अपने आप से मिलूँ तो यही कहूंगी चलो आओ घूमने चलते, मेरा साथ हो जाएगा.
0: कम से कम बहाने तो नहीं ना बनाएंगे, अपने आप के साथ ही जा रहे हैं.
1: बाहर गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, मौसम सही नहीं है बाहर का, ये वो फलाना. बंदा चलो आप ये होगा ना कि चलो अपने आप के साथ चलो चलो फिर घूमने चलते हैं, झूले झूले लेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, गप्पे शप्पे लगाएंगे.
0: ठीक है ठीक है, मजे मजे का सीन है. सही है, मतलब आपने अपने आप को कुछ नहीं समझा ना, आपने अपने आप को मिलके जो है ना आपने कहना चलो और पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं. ठीक है
1: बिल्कुल बिल्कुल, एंजॉय करना है, फुल एंजॉय करना है. लेकिन ये है कि अपने आप को समझाना तो बहुत कुछ है. वैसे ये है कि ना अगर मैं अपने आप को मिलूंगी ना तो मैं अपने आप को देख के हैरान हो जाऊंगी. जो अब तक मेरे अंदर क्वालिटी आई है ना आप ही, यानी मेरे अंदर काफी ज्यादा ना काफी ज्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं.
0: अच्छा, तो आप मतलब अपने से कोई पीछे वाली वरियन को मिलना चाह रही हैं, कोई 5-10 साल पीछे वाले से?
1: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही. अगर आप मुझे देखा जाए तो सारे मुझे कहते हैं कि तुम पहले जैसी नहीं रही हो, बिल्कुल चेंज हो गई, तुम्हारी आदतें पहले जैसी नहीं रही.
0: अच्छी हो गई, बुरी हो गई?
1: यानी कि बंदा मेच्योर हो जाता है, जब बातों को समझने लग जाता है. पहले ना समझ होता है, पहले ऐसा किसी चीज की फिक्र नहीं होती है. अब बंदा एहसास करने वाला बन जाता है, उसको पता चल जाता है कि इस बात से किसी को बुरा ना लगे, ये बात कहाँ करनी है, ये बात कहीं नहीं करनी, ये पता चल जाता है इंसान को. बैठने का, रहन सहन का पता चल जाता है, ये बंदा लाइफ में सीख जाता है.
0: बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है. तो इसका मतलब आप जो है
1: अभी वो आप बात कर रहे थे ना कि अगर आपको लाइफ पार्टनर समझने वाला मिल जाए, एहसास करने वाला मिल जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने ऐसा ही लाइफ पार्टनर दिया है जो मेरा एहसास भी करते हैं, मेरे बिना कहीं मेरे अल्फाजों को समझ आता है कि इस बंदे को क्या चाहिए, इसकी किस लिए खामोश है, इसकी क्या तकलीफ है.
0: चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है.
1: वो समझ आते हैं, महसूस कर लेते हैं.
0: बहुत अच्छी बात है कि जो है ना समझने वाला एक लाइफ पार्टनर बहुत जरूरी होता है, जो बिना कहे समझ जाए. और इससे बढ़ के और क्या ब्लेसिंग हो सकती है. तो माशाल्लाह यू आर ब्लेस्ड, और अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही रखे.
1: वो मेरे सारे नखरे उठा लेते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है कि यार
0: नखरे उठाने वाले. अच्छा, इन रिटर्न आप नहीं नखरे उठाती?
1: क्योंकि सारी जिंदगी अभी मैंने दूसरों के नखरे उठाए, दूसरों को मतलब खुश रखा. लेकिन आप देखिए कि अब मेरे नखरे उठाने वाला भी कोई है जो मुझे खुश रखता है. अगर मैं नाराज हो जाऊँ, मैं कभी किसी से नाराज नहीं. हालांकि मैं नाराज होती थी थोड़ी देर बाद, फिर मैं खुद बखुद ही सेट होती थी. लेकिन अब मैं नाराज हो जाऊँ तो जब तक मैं मानू ना, वो पीछे नहीं छोड़ते.
0: चलिए, ये अच्छी बात है कि जो आपने पहले शादी से पहले दूसरों के लिए किया, वो अब आपके लिए जो है ना आपके लाइफ पार्टनर कर रहे हैं. तो ये अच्छी बात है.
1: सबर का फल मीठा होता है, बड़ा मीठा होता है. सबर का फल मेरे बंदे की जगह मिल गया.
0: चलिए जी, अच्छी बात है. बहुत अच्छा लगा सुन के रिमशा, और अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही रखे माशाल्लाह. यू आर ब्लेस्ड. कुछ और कहना चाहिए?
1: आप भी इधर आते हैं मुस्कुराते. आप बताएं, आप तो वैसे ज्यादा घूमती हैं, मतलब बाहर को वो देखती हैं. तो आप ना बताया करें ना आप ही.
0: मैंने तो बताया, मैंने अभी जो हमारे साथ दो कैंडिडेट्स थे ना, मैं उनको यही बता रही थी कि मुझे अगर अपना आप मिलेगा ना, क्योंकि मुझे हमेशा से लगा, जैसे अभी आपने बात की ना कि आपको कोई समझने वाला हो बिना कहे, तो मुझे हमेशा से ना ये चीज़ रही है कि मतलब बिना कहे कोई समझने वाला हो. सो मुझे लगता है कि अगर मुझे मेरा ही वरियन मिलेगा तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन तो होगी कि इससे मेरा पता है. मुझे जानती है. सो मुझे वो भी तसल्ली होगी कि मतलब पता है, इसको पता है कि मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया. मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा कि ये चीज़ मैंने ऐसे क्यों की थी या ऐसा क्यों था. और मैं शायद अपने आप को खुद ही जो है ना वो एक वो जैसे कहते हैं ना थापी देना कि आई एम प्राउड ऑफ यू. सो वो भी मैं खुद ही कर लूँगी.
1: और अभी मैंने ना एक चीज़ ये भी नोट की है, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि अपने हम नाम मिल जाते तो हम नाम की आदतें सोच वगैरह मिलती होगी, हरकत मिलती होगी. लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता.
0: अच्छा,
1: अगर अपना हम नाम मिल भी
0: नहीं, ये जरूरी तो नहीं होता. इवन तो ये तो ट्विंस में भी नहीं होता कि सेम हो.
1: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. क्योंकि देखें कि अगर अपनी हम नाम लड़की में मेरे ना मेरी मैंने अपनी लाइफ में देखी, मेरी हम नाम ऐसी कुछ लड़कियां ऐसी हैं, मैं उनको जब देखती हूँ, मैं हालांकि मैं इतनी बक बक करती हूँ, इतना बोलती हूँ, मैं उनको देखती हूँ, मेरे हम नाम लड़की इतनी खामोश
0: सुलझी हुई. अच्छा नहीं, ऐसा होता है. मैं ना कभी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती कि अगर मुझे कोई हम नाम मिलेगा तो वो कोई मेरी जैसी पर्सनालिटी हो या मेरी जैसी सोच हो. ज़रूरी नहीं होता. सो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये तो ट्विंस में भी नहीं होता, ये बहन भाइयों में भी नहीं होता.
1: हमारी आदतें भी उनके साथ मैच होती हैं, जेन भी मैच होता, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता. क्योंकि जुड़वा बहनों में भी अक्सर ऐसा होता है कि किसी को कुछ रंग पसंद होता है, किसी को कुछ रंग होता है. तो ये होता है कि आपस में इंसान झगड़ता जरूर है कि मुझे भी ये चाहिए था, लेकिन वो जेलसी के तौर पे ऐसा करता है.
0: ठीक हो गया जी रिमशा.
1: आदत होती है ना सगी बहनें आपस में बहुत ज्यादा लड़ती हैं. तो इसलिए शुक्र ऐसे मेरी बहन तो कोई नहीं है, लेकिन मैं कहती होनी चाहिए थी कम से कम, बहस तो करती।
0: ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं रिमशा, कोई बात नहीं, जो मिलता है वो अल्लाह की तरफ से अच्छा ही मिलता है। ठीक है
1: बिल्कुल। और रजा भाई, शहजाद अंकल, गर्लफ्रेंड अंकल, मारिया, पिया, नीला, अभी साजदा, सुलेखा और हमना और सभी सुनने वालों को मेरा सलाम, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपने मुझे बहुत ज्यादा टाइम
0: जी। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच रिमशा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और राइट जी, रिमशा मैसा मौजूद थी और बिल्कुल जी, 4221111 पर लाइव कॉल का सिलसिला जारी है। और मेरा आप लोगों से सवाल यही है कि जी, अगर आप रास्ते में कभी खुद से मिलें तो क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, या अपने वरियन को, अपने आप को अपने सामने देखेंगे तो कैसा पाएंगे, क्या करना चाहेंगे, क्या बात करना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे, या उसके साथ बैठना चाहेंगे, या इग्नोर करना चाहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, थापी देंगे कोई, आई एम प्राउड ऑफ़ यू कहेंगे, क्या आपके जहन में है कि कभी अपने आप से मुलाकात हो तो क्या करना चाहेंगे, इसी पे हम बात कर रहे हैं। आप लोग कॉल कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, fizz.com/fm11 लाहौर के बीच में आपने जाना है जी, पोस्ट अपडेट है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट्स भी शामिल करते हैं, लेकिन इस खूबसूरत ट्रैक के बाद।

0: जी अनदर कॉलर विद अस, लेट्स सी इज 4211000011 पर कौन है जी हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन है, कहां से बात कर रहे हैं?
1: से वादा कॉलोनी गुड्डू जिला कश्मोर से मोहम्मद हनीफ शाह।
0: जी हनीफ साहब, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, कई सुमार कैंसिल कर दिए हमने, अफसोस है।
0: क्या कैंसिल कर दिए?
1: आवाज सुनी अब कई सुमार मैंने कहा कैंसिल कर दिया, आज फिर आपकी आवाज सुनी। अच्छा, नहीं किया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। क्या कहना चाहेंगे?
1: प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत बेहतरीन, अपने आप की बात हो रही है।
0: जी जी,
1: आपसे मुखातिब होंगे तो क्या करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे।
0: अच्छा,
1: और सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, ख्वाब है हकीकत है।
0: कैसे गुजर गई? कैसे गुजर गई
1: वो लम्हे, कैसे गुजर गए?
0: अच्छा ठीक है जी, मतलब आप थोड़ा हैरान परेशान है कि कैसे गुजर गई।
1: वो तो जाहिर है, अभी एक दोस्त है मेरा, मतलब कि हम नाम है,
0: ठीक है,
1: मुझे कॉल की, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, उसने कहा हनीफ क्या बात, हनीफ बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं शरीफ बात कर रहा हूँ। ऑटोमेटिक अपना नाम चेंज कर लिया। उसने कहा फिर ये कैसे?
0: हाँ।
1: मैंने कहा जाहिर है आपने जो हनीफ बताया तो जाहिर है मुझे दूसरा नाम बताना था, मुझे एक नाम तो नहीं पता था।
0: ठीक है ठीक है, कभी कभी बंदा परेशान भी हो जाता है ना, अपना हम नाम ही आगे से फोन पे बात करें।
1: कैसे यार? जी जी, ये कैसे हो गया?
0: हाँ,
1: साथ काफी मर्तबा हुआ है।
0: अच्छा,
1: लेकिन हाँ एक कहानी मैंने आपको सुनाई,
0: चल सुना दे।
1: बस ऐसे होता है काफी, मतलब के कॉल एक और भी आई थी, कॉल पे होता है ज्यादातर। हाँ, तो मैं फिर नाम चेंज कर लेता हूँ।
0: तो फिर आवाज से पहचान लेते हैं या किसी अननोन के साथ ही, कभी कोई अननोन आपका हम नाम निकले?
1: अननोन नंबर आ जाता है ना। जैसे अनीफ नाम है, अनीफा नाम है, अनीफा के नाम से कॉल आई थी।
0: अच्छा,
1: तो इमरान बताया।
0: अच्छा ठीक है। मतलब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई आपका हम नाम आपसे बात करे?
1: नहीं, सही बात नहीं है ना, उसको इंसान कहते हैं ना, अगर एक अगर फेर हो ना तो उसके सामने अनफेर बनना पड़ता है।
0: अच्छा ठीक है,
1: बात हाँ
0: ठीक है जी, ठीक है ठीक है।
1: अकड़ने वाले के साथ, अकड़ने वाले के साथ अकड़ना नहीं ना।
0: हाँ ठीक है, मतलब नेक्स्ट में भी करूँ, अगर मेरे किसी हम नाम की कॉल आए तो मैं आगे से नाम चेंज कर लूँ,
1: नाम बदल दे।
0: ठीक है चले, ये तो आपने अच्छा आइडिया दिया।
1: ये अच्छा आइडिया ना, कि एक जैसे हमारे अपने रात भाई, मैं कजन है ना, वो अभी मुझे कॉल करता है तो वो कहता है मैं फलाने का बेटा बात कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं फलाने का बेटा बात कर रहा हूँ।
0: ठीक है जी, ठीक है, ओके जी हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मेरा नाम बताया, अपना नाम बताया। लेकिन कभी अगर मुझे पता होगा तो मैं भी ऐसे ही करूंगी, मैं अपना नाम चेंज कर लूंगी।

राइट जी, कुछ कमेंट शामिल कर लेते हैं। रमजान हन में गुजर हमेशा मौजूद है, अरहम शहजादा हमेशा मौजूद है जी। राइट जी, ग्रेट शो कहते हैं और थैंक यू सो मच। नज़ीर हमेशा मौजूद है बलोचिस्तान से, मनाजर महमूद हमेशा मौजूद है जी कतर से, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का। अल्हम्दुलिल्लाह मलाखेल हमेशा मौजूद हैं कोयटा से, वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो जनाब। फिरोज आलम जान हमेशा मौजूद हैं मदीना मुनवरा से, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का। रजा चौधरी हमेशा मौजूद है, जाहिद खान हमेशा मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया जी। फरहाद मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, और कौन कौन है जी, रेहाना भक्कर से हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ मौजूद है जी भक्कर से, बहुत शुक्रिया जी आपका भी ज्वाइन करने का। ऑलराइट जी,

0: आर जी, मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि अगर आपको रास्ते में अपने आप से मुलाकात हो जाए आपकी, तो क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, मिलना भी चाहेंगे या नहीं मिलना चाहेंगे अपने आप से? इसी पर जी हम बात कर रहे हैं 04111 0011 पर आप लोगों की लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है। लेट्स सी जी नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? सबकी कसर निकाल दी है।
1: हाँ,
0: बात करें जी, आपकी कॉल मिल गई है।
1: चलो ठीक है, रजा चौधरी लगातार मिलन नहीं थे आज, बड़ा दो भेन जारी आई है ना।
0: जी जी,
1: बहुत अच्छा लगा उन्होंने गलत बात सुनी है, बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा,
1: मैं हमने कहा बात करूंगा।
0: जी जी,
1: मैं अपने आप से पूछूंगा, मेरा हमें डबल शर्ट, मैं अपने आप पूछूंगा भी ये दुनिया में तू आया तो ठीक ही चाहिए आ रहा थे, किस मकसद वास्ते आए?
0: अच्छा,
1: जेडे अल्लाह पाक ने तू आके ड्यूटी लाई, अल्लाह पाक ने ड्यूटी लाई भी आ काम तो कीते है, तेनू के पांच टाइम मसीते आया, मैं फिर शर्मिंदा ही होना ना उसे।
0: तो आप नहीं मिलना चाहेंगे अपने आप से या मिलना चाहेंगे?
1: हाँ, मिलना चाहेंगे, डबल चार्ज ही होया मेरा तो मैं फिर अपने आप बात यही करूंगा ना।
0: ठीक है,
1: दुनिया से आया तो ठीक है,
0: ठीक है, मतलब आप अपने आप से सवाल करेंगे फिर।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक हो गया।
1: बाकी बहुत सारिया दुआवा, एक साड़ी भैन का दुवाना होंगी है कल पे साल पे, ओद वास्ते बहुत सारिया दुआ, रजा भाई, सलीम टेलर, चमकी रेडियो क्लब, सारे सलाम जी।
0: ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, इन्होंने कहा कि मैं अपने आप से जो है ना बहुत सारे सवाल करूंगा, और वो सवाल ये होंगे कि दुनिया में आने का मकसद क्या था और क्या किया।

मोहना जी हमदल वाला खेल कहते हैं कि जी अपने जज्बात और फैसलों पर खुद काबू रखें, किसी और चीज या शख्स को अपने ऊपर मुसल्लत ना होने दें। वही वाली बात है जो हमारा कर रही है। बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमने कई शोज में इस पर बात की है।

आर जे मेरे फेवरेट ट्रैक के साथ आपकी अच्छी सी प्यारी सी आर जे हमना खान आप से इजाजत चाहती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। सी यू ऑन नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले है फेक, उनके बारे में मेरा है टेक। I don't care what you think, what you

थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया, मैं थक सा।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। आज यौम फिजाइया मनाया गया, जिसका मकसद सितंबर 1965 की जंग में भारतीय जारियत के खिलाफ मुल्क की फिजाई हदूद का दिफा करने वाले मुहाफिजों की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करना था। वज़ीर आज़म ने पाक फिजाइया के बहादुर फिजाई जंगजुओं की जुर्रत और पेशावराना महारत को खिराज तहसीन पेश किया है। नायब वज़ीर आज़म और कुवैत के वज़ीर खारिजा ने आज टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान इलाकाई सूरतेहाल पर तबादला ख्याल किया। दुबई में ख्वातीन के T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने हांगकांग को 72 रन से हरा दिया है।
1: दिस इज FM 101.1।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना,

सुनते रहिए FM 101 101 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

जी जनाब, 920-25-40 पे भी आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, और उसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक के ऊपर आप लिखेंगे FM 101 चैनल पाकिस्तान, आपको एक पेज मिलेगा, उसके नीचे एक पोस्ट मिलेगी, उस पोस्ट के नीचे आपने कॉमेंट करना है, और मैं ज़्यादा जो है वो इनक्रेज करूँगा उन लोगों को जो सोशल मीडिया पर आएंगे और वहाँ पर अपना पैगाम लिखेंगे, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा आसान होता है कि मैं आपका पैगाम जब लिखा हुआ मेरे पास आता है तो मैं उसको पढ़ लूँ, उसके क्रक्स को समझ लूँ और उसको प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। सो ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप मुझे फेसबुक के ऊपर कमेंट करें, क्योंकि कॉल्स जो हैं वो लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रोग्राम के अंदर, कॉल्स के ऊपर कॉलर्स भी मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं ऐसे कॉलर्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊं कि जो एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकें, जो एक अच्छी बात कर सकें, दूसरों तक बात पहुंचा सकें। अपने दिल की बात तो करें, अपने आप को तो सेटिस्फाई करें, लेकिन सुनने वाले बहुत सारे हज़ारों लोग होते हैं कि जब वो कहते हैं ना कज़ाए मजबूरी आपको सुन रहे होते हैं, तो अच्छा बोलें और अच्छा बोलने वाले लिसनर्स आएँ, और जिन लोगों जो लोग शाये हैं, जो बात नहीं कर पाते या जिनका जिनको लगता है कि यार हमें कॉल नहीं करनी चाहिए, अपनी आवाज़ नहीं सुनाना चाहते, या समझते हैं कि हम ऑन एयर बात नहीं कर सकते, तो वो कमेंट ज़रूर करें जी। और फेसबुक सभी लोग यूज़ करते हैं, आप फेसबुक के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप फेसबुक नहीं इस्तेमाल कर रहे, अगर आप टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं तो 4471 हमारा जो है वो नंबर है, इसके ऊपर आप टेक्स्ट मैसेज करके अपनी बात, अपनी जो भी राय है मेरे तक पहुंचा सकते हैं। आज जो प्रोग्राम का थीम होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, और वो अलग ही होगा कि मैं थोड़ा इसको एपिसोड वाइज लेकर चलूँगा, और हर एपिसोड के अंदर एक नया टॉपिक होगा, एक नई गुफ्तगू होगी, एक नया पहलू होगा, और उस नए पहलू के ऊपर बात की जाएगी। अच्छा, होता ही है ना कि हम जो आर्जिस भी होते हैं ना, वो बैठे हुए ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि यार क्या चीज़ जो है वो अच्छी लगती है लोगों को, क्या चीज़ कहनी चाहिए, क्या चीज़ बोलनी चाहिए, क्या चीज़ जो है वो आपको रात के इस पहर में फैसिनेट करती है या आप सुनना चाहते हैं, उसको हम डिग आउट करना चाहते हैं। और मैं हमेशा से इस कोशिश में रहता हूँ कि मुझे पता चले कि मेरे सुनने वाले क्या सुनना चाहते हैं, ताकि मैं उनको वही सुना सकूँ कि जो वो सुनना चाहते हैं। तो मुझे लगा ऐसा कि पिछले कुछ हफ्तों से या पिछली कोई अपनी रिसर्च से, ऑब्जर्वेशन से, कि कुछ बहुत ख़ास और अहम लिसनर्स होते हैं जो सिर्फ साइलेंटली सुन रहे होते हैं और वो पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन जब उनको जब मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती हैं कहीं ना कहीं से, वो कहीं इन टच होते हैं, तो मुझे पता चलता है कि वो जो कंटेंट सुनना और देखना चाहते हैं, या वो जो जो जिस कंटेंट के ऊपर वो बात करना चाहते हैं, या वो जो अपना वक्त मेरे साथ गुजारना चाहते हैं, वो कुछ और है, वो कुछ और सुनना चाहते हैं। जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ शायद वो उनको वो पसंद नहीं आता, सो दैट्स वाई शायद मे बी वो अपना रेडियो ऑफ भी कर लेते हों, या कहीं स्विच कर जाते हों, या कहीं और अपनी एक्टिविटी में इंगेज हो जाते हों। लेकिन जब मैं उनके लिए कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ, तो जो लोग मुझे फीडबैक दे रहे होते हैं, उनमें भी मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको वो कंटेंट चाहिए जो मैं प्रोड्यूस कर रहा होता हूँ, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको वो कंटेंट चाहिए जो मैं प्रोड्यूस नहीं करना चाहता। और बस, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं सभी को साथ लेके चलूं, क्योंकि हर इंसान की अपनी पसंद नापसंद होती है, हर इंसान चाहता है कि उसके मुताबिक चीज़ें हों। कुछ लोगों को बड़े हिप हॉप फास्ट म्यूज़िक पसंद होता है, कुछ लोगों को क्लासिकल पसंद होता है, कुछ को जैज़ पसंद है, कुछ को क्या पसंद है। हर बंदे की चॉइसेस डिफरेंट है, क्योंकि उसका कल्चर डिफरेंट है, उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, उसका ब्रॉटअप डिफरेंट है, और जिस जगह को जिस तरह से उसने जिस एंगल से देखा है, जो उसने सुना है, देखा है, बड़ा है, पला है, या उसने खाया पिया है, या जो उसने जो उसके इर्द गिर्द लोगों ने उसको सुनाया है, वो शायद वही सुनना चाहता है, या उसको वो चीज़ फैसिनेट करती है, उसके साथ वो अपना लिंक जो है वो कनेक्ट करता है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली वो उसके साथ कनेक्टेड होता है। लेकिन अगर उसको उसकी साइकी के अलावा कुछ और चीज़ सुनाई जाए, तो शायद उसको वो पसंद ना आए। लेकिन कुछ लोगों को वो शायद पसंद आती है कि वो 2-4-5 लोग जो होते हैं, जो सिर्फ बैठे लिए इसीलिए होते हैं कि शायद कि यार कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए कि जो डिफरेंट हो, कुछ ऐसा मिल जाए जो यार मेरे मिजाज के मुताबिक बात करे, कुछ तो ऐसा हो, कोई तो ऐसा हो जो जो मेरे साथ, मेरी बीट के साथ, या मेरी जो वेव्स हैं उनको टच कर सके, या मेरे दिल को कुछ छू सके। कोशिश मेरी होती है कि मैं उन लोगों को भी छू सकूं। तो अगर आपको वो बातें सुनने वाले जो हैं, अगर उन आपको वो बातें समझ में नहीं आ रही, या जो मैं अभी कर रहा हूँ ये आपको समझ में नहीं आ रही, उनको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आपकी जो वोकैबुलरी है, जो आपकी गैलरी है, उसके अंदर चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, या जो आपकी हम कहें ना कि वो आपकी SSD है, जो आपकी मेमोरी है, उसके अंदर जब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐड ऑन होना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी साइकीज कनेक्ट होंगी, तो एक नई साइकी बनेगी, एक नया कॉकटेल बनेगा, वो कॉकटेल ज़िंदगी में आपको बड़ा फ़ायदा देगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि रात को मैं एक पाकिस्तान के एक बड़े एक फेमस पर्सनालिटी हैं, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, और पाकिस्तान में उनका बहुत बड़ा किरदार है,
उनकी ये कॉन्वर्सेशन सुन रहा था फेसबुक के ऊपर, उनके पेज के ऊपर लगी हुई थी, तो मेरे साथ मेरे घर से एक साहब मौजूद थे और वो मेरे पास बैठे थे और मैं सुन रहा था, और उन्होंने मुझे कहा कि यार ये क्या क्या सुन रहे हो, इसको क्यों सुन रहे हो तुम? तो मैंने उनको कहा कि यार 2 मिनट ना आप मेरे साथ बैठ जाएं और सुने कि क्या कह रहे हैं। थोड़ी देर उन्होंने सुना और बोर हुए और फिर उन्होंने अपना चेहरा मोड़ लिया, तो मैंने उनको फिर ज़बरदस्ती मोड़ा चेहरा उनका, मैंने कहा जरा इधर मुड़े सुने इनको ये क्या कहना चाहते हैं। फिर 2 मिनट उनको मैंने मज़ीद सुनाया और उसके बाद फिर मैंने वीडियो रोकी और मैंने पूछा कि ये क्या कह रहे हैं आपको पता है? तो उन्होंने जो मुझे कहा ना, बोर हुए और फिर उन्होंने अपना चेहरा मोड़ लिया, तो मैंने उनको फिर ज़बरदस्ती मोड़ा चेहरा उनका, मैंने कहा जरा इधर मुड़े सुने इनको ये क्या कहना चाहते हैं। फिर 2 मिनट उनको मैंने मज़ीद सुनाया और उसके बाद फिर मैंने वीडियो रोकी

होता, और फिर बाद में गिले कर रहा होता यार कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों है, मेरी ज़िंदगी में वैसा क्यों है, ऐसा क्यों चल रहा है यार, मैं कामयाब नहीं हो रहा यार, मुझे नौकरी नहीं मिल रही यार, मेरा ये मसला हल नहीं हो रहा या वो मसला हल नहीं हो रहा, मैं गरीब रह गया हूँ, मैं अमीर नहीं हो सका, मैंने पैसा कमाना चाहता था पैसा कमा नहीं सका, या मैं रिश्ते बचाना चाहता था रिश्ते बचा नहीं सका, या मेरी बच्चे मेरे से प्यार नहीं करते, या मेरे रिश्तेदार मुझे मानते नहीं हैं, या मुझे लोग अच्छा इंसान नहीं समझते। वो इसलिए नहीं समझ रहे होते कि हम चीज़ों को कॉकटेल नहीं बनाते, हम सबकी साइकीज़ को नहीं समझ रहे होते, और उन साइकीज़ को समझने के साथ हम उनके मुताबिक फ़ैसला नहीं कर पा रहे होते। सो थोड़ी देर उन्होंने सुना, और जब मैंने कहा नहीं आपको समझ में नहीं है ये क्या कह रहे हैं, ये साहब ये कह रहे हैं और इसके पीछे ये पर्पज़ है, तो आप यकीन जानिए कि थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छाया, और उसके बाद उन साहब ने जो मेरी फैमिली मेम्बर थे उन्होंने इतनी लंबी तमहीद बांधी, उन्होंने कहा अच्छा अगर ये होगा ना तो इसका ये फ़ायदा होगा, अगर ये होगा ना तो इसका इसको भी फ़ायदा होगा, इसको भी फ़ायदा होगा, इसको भी फ़ायदा होगा, अच्छा ये तब नहीं हो पा रहा तो अच्छा इसको अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा इसको अच्छा नहीं लग रहा, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की, तो मैंने कहा यस दिस इज़ द लाइन। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार अच्छा तो ये वजह है कि आप मेरे साथ बात नहीं करते, आप जब घर आते हैं या बैठते हैं तो अक्सर मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बैठूं कुछ कॉन्वर्सेशन करूं, लेकिन आप कर नहीं रहे होते। तो मैं उनको मैंने बताया कि यार ये वजह है कि आपके साथ मैं बैठ के बात क्यों नहीं करता, या आपके साथ अगर मैं वो वाली बातें क्यों नहीं करता, ये जो बातें मैं देख रहा होता हूँ, क्योंकि आपको वो बातें समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि आप समझने की कोशिश नहीं करते। ऐसा नहीं कि रब ने आपको दिमाग नहीं दिया, रब ने आपको तालीम नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी ऐसी फैमिली में हैं कि जिसमें आपने कुछ आपका ब्रॉटअप ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रही, आप समझना ही नहीं चाहते। बाज़ औक़ात हम चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे होते इसलिए कि हम समझना नहीं चाह रहे होते। सो प्लीज़ जब कभी भी कहीं से कोई कुछ मिल रहा हो, या कहीं आप सुन रहे हो, आपकी गाड़ी में रेडियो लगा है, या आप कोई कोटेशन पढ़ रहे हैं, या आप कोई चीज़ उसकी डेप्थ में एक दफ़ा जाएं ज़रूर, या अपनी आदत बना लें आप कि जिस भी चीज़ को आप जिस वक्त कर रहे हैं ना उसकी डेप्थ में एक दफ़ा का आप गोताज़न हो जाएं और उसकी तह से निकल के आप बाहर निकलें, आप यकीन जानिए कि आपको लोग एक्सपर्ट मानना जो है वो तसव्वुर करना शुरू कर जाएंगे, और आपको समझेंगे कि यार ये इंसान एक्सपर्ट है, इस चीज़ का खिलाड़ी है। और आप खिलाड़ी नहीं होंगे, लेकिन होगा ये कि आप जब एक दफ़ा उसकी डेप्थ में से निकलेंगे और जो उसका एक्सपर्ट होगा उसको वो वाली बात बताएंगे जो सिर्फ वो जानता है, तो वो आपको तसव्वुर करना शुरू कर देगा कि यार इसको तो सब पता है, यार इसको तो इतनी गहरी बात पता है। वो गहरी बात तभी पता चल सकती है कि जब एक दफ़ा आप गोताज़न होकर बाहर निकलेंगे। सो इसलिए जब भी आपके सामने कोई कोटेशन आए, कोई बुक आए, कोई बात कर रहा हो, आपके साथ उसका ताल्लुक है या नहीं है, थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक दफ़ा फोकस करके उसकी बात को सुन के उसके अंदर से तह से निकल जाएं, और फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये वाली चीज़ें हमें मुझे नहीं चाहिए, तो आप बिल्कुल उसको फ़िल्टर आउट कर दें, उसको जहन नशीन मत करिए, लेकिन एक दफ़ा सुनिए ज़रूर।

जी जनाब, मुझे आज के भी कहते हैं जी 12:18 हुए, चाहते हैं 8 सितंबर है 2026 है। आज के भी के साथ आपके साथ 2 घंटों का है और आप मेरे साथ हैं 0511100001 0501 0501 0501 9202540 के ऊपर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं।

अच्छा जी, हम सब ने जिंदगी में कुछ ना कुछ उसूल बना रखे होते हैं, और छोटे मोटे उसूल होते हैं। सुबह शाम छोटे मोटे काम करते हुए हमने बड़े एक अजीब गरीब उसूल बना रखे होते हैं। लाइक अगर आप घर के अंदर हैं तो आपने जब घर पहुंचना है तो सबसे पहला, लाइक मैं अपने उसूलों की बात करता हूँ, कुछ उसूल अच्छे होते हैं, कुछ उसूल ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल आपको बेवजह से लग रहे होते हैं और आपको लगता है कि यार ये वाले उसूल क्या क्या उसूल बना रखे हैं। तो मेरे कुछ उसूल ऐसे हैं, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे कुछ उसूल होंगे कि जो आपने बड़ी बेवजह से लोगों को लगते होंगे, लेकिन शायद के वो बड़े वजह वाले हों, लेकिन आप उनके ऊपर इतने स्ट्रिक्ट होते हैं या आपकी जो मेंटेलिटी है वो ये होती है कि यार ये वाला उसूल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ये वाला जो रूल है ना इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना हमने, बाकी जो कुछ हो जाए। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं कि मेरा घर में उसूल है, सबसे पहले जब मैं घर एंटर होता हूं तो अगर मैंने रास्ते में से गुजरते हुए जो मुझे सामने मिल गया मैंने उसको सलाम करना है, बाकी मैंने किसी के रूम में जाके या किसी को अलग जाके सलाम नहीं करना। मैंने सबसे पहले अपने रूम जाना है, चेंज करना है, जो कपड़े मैंने पहने होते उन कपड़ों को तब्दील करना होता है, सबसे पहला काम ये होता है। और मुझे बस इतनी चिढ़ होती है कि मैं कहीं बैठता नहीं, अगर कोई मेहमान आया भाई इवन, तो उसको भी मैंने गुजरते गुजरते अस्सलाम वालेकुम कहना है और सीधा रूम जाके अपना चेंज करना है और वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है, फिर वापस आके सबके साथ हेलो हाय सलाम जो भी करना होता है होता है। इस बात पे अक्सर मुझे घर वाले कहते हैं यार इतना भी क्या जल्दी है, क्या हो जाता है, सारा दिन तुमने वही कपड़े पहने होते हैं, सारा दिन ऐसा ही चल रहा होता है, लेकिन इतनी जल्दी क्या होती है कि तुम सबसे पहले चेंज करते हो। तो शायद ये मेरा उसूल है, मैं इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई उसूल होता होगा? अच्छा, एक और उसूल ये है कि जी मुझे भरी हुई कोई भी चीज़ जो है वो पसंद नहीं है। लाइक अगर ग्लास के अंदर अगर मुझे कोई पानी दे दे और वो फुल भर के दे दे तो मुझे बस अजीब सी इरिटेशन होती है और मैं कहता हूँ यार ये इसने भर के, क्योंकि इतना गुस्सा आता है मुझे, इतना गुस्सा आता है कि बासुकत मुझे खुद से डर लगने लगता है कि यार इतना बड़ा गुनाह तो नहीं कर दिया किसी ने कि अगर मुझे ग्लास भर के पानी का दे दिया है या ग्लास या कप भर के चाय का दे दिया है या कॉफ़ी दे दी है तो कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना बुरा लगता है, मुझे ऐसे लगता है जैसे इसने ना मुझे गोली मार दी है। बहुत बुरा लग रहा होता है कि यार अगर मुझे कोई भर के कप दे दे चाय का या भर के कोई ग्लास पानी का दे दे। तो मैंने अपना एक उसूल रखा है कि यार जब भी कोई मिले ना तो थोड़ा सा बाकी रहना चाहिए, थोड़ा जो कप है चाय का वो आधा हो या आधे से थोड़ा सा भरा हुआ होना चाहिए, फुल भरा हुआ कप नहीं चाहिए। और अगर कोई दे दे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं इसके ऊपर बड़ी इरिटेशन होती है और मुझे फिर चाय पीने का दिल नहीं करता, लिटरली मैं चाय नहीं पीता अगर मुझे भर के वो कप दे दे, है ना अजीब सी बात वैसे। और इसी तरह अगर मैंने किसी से पानी मांगा और ग्लास में अगर मुझे किसी ने पानी दे दिया तो मैं पानी नहीं पीता अगर भरा हुआ ग्लास मुझे कोई दे दे। और अगर बॉटल जो है वो ऊपर से टॉप नेक है और उसके अंदर भी थोड़ी सी स्पेस बाकी नहीं है तो मैं वो वाली बॉटल भी नहीं पीता और मेरी कोशिश होती है कि वो वाला जूस कभी ना खरीदूं जो ऊपर से भरा हो, फिल्ड हो ऊपर तक टॉप तक, थोड़ा सा ऊपर से खाली दिखना चाहिए, है ना अजीब सी बात यार, कितनी अजीब सी बात है ना।

अच्छा, कुछ लोगों के अजीब से ये उसूल होते हैं कि अगर उनको कोई कॉल करता है तो अगर उनके हाथ में भी फोन है तो वो फौरन से फोन नहीं उठाते, 3, 4, 5, 6, जब तक लास्ट बेल ना जा रही हो तब तक फोन नहीं उठाते। शायद उनके माइंड में होता है कि इसको ये ना लगे कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं बिजी हूँ, और इसको लगे कि मैं बिजी हूँ। दूसरी साइड वाला बंदा शदीद इरिटेट होता है। मेरी फैमिली में एक बंदा है ऐसा जो अक्सर मोबाइल फोन को सामने रख के ना देखता रहता है, कॉल आई है आई है आई है आई है, और जब वो बंद होने लगती है तो फिर ठक करके फोन उठाते हैं। और मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि आप क्यों करते हैं ऐसा, आप उठा लिया करें। अच्छा चले, 2 बेल्स बजने दे दिया करें, 1 बजने दे दिया करें, उठा लिया करें। जो सामने जो आपको फोन कर रहा है वो बेचारा कान के साथ लगा के फोन वैसे ही वेट कर रहा होता है, आप भी वेट कर रहे होते हैं। ये जो वक्त जाया करते हैं आप, ये वक्त जाया नहीं करना चाहिए आपको। लेकिन बस उनका उसूल है, वो बस बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं फोन को, और इस इंतजार में अक्सर जो है वो फोन कॉल कट हो जाती है और वो फोन उठा नहीं पाते। अच्छा मुझे तो पता होता है ना कि वो इस तरह देख रहे हैं, तो मैं उनको दोबारा कॉल कर लेता हूँ या दूसरी दफा कॉल में जरूर मिलाता हूँ उनको, अगर उन्होंने पहली दफा कॉल ना उठाई। और अक्सर वो दूसरी दफा फोन उठा लेते हैं, पहली दफा फोन नहीं उठाते। लेकिन बाज लोग उनको दोबारा फोन नहीं करते, फिर वो नंबर निकाल के ना दोबारा उनको फोन करते, कहते हैं हाँ यार सॉरी तुम्हारी कॉल मिस हो गई थी। ये तो ऐसा क्यों करते हैं हम? हाँ, 1 से 2 कॉल्स के ऊपर उठा लेनी चाहिए, बता देना चाहिए। अच्छा उनको मैसेज भी अगर कोई आ जाए ना तो वो मैसेज को भी देखते रहेंगे और एकदम से फौरन से मैसेज को ओपन नहीं करेंगे। अच्छा उसी के बरक्स जो है वो मैं जहाँ पे मैं अपना काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, तो मेरे साथ एक मेरे कलीग हैं और बल्कि मेरे सीनियर हैं, उनको अगर आप मैसेज करें ना तो विद इन नो टाइम नो सेकेंड वो फौरन से आपका जो है वो मैसेज देखते हैं, व्यू करते हैं और उसके ऊपर फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करते हैं और वो अपना फ़ोन रख देते हैं। और मैं सोचता हूँ कि वो इतने बिजी हैं, इतने बिजी हैं लिटरली, कि अगर उनके ऊपर एक बहुत बड़ी कंपनी है उसकी ज़िम्मेदारी है, और उस कंपनी के साथ साथ उनकी अपनी फैमिली कमिटमेंट्स अलग हैं, उनकी बाकी एफिलिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ वो कनेक्टेड होते हैं। अगर मैं कहूँ कि वो कंपनी के CEO हैं और कंपनी बहुत बड़ी है, एक टाइटैनिक जैसी कंपनी है, और उनके साथ लाखों लोग अटैच होते हैं और उनको हज़ारों के हिसाब से मैसेज आ रहे होते हैं, लेकिन विद इन नो टाइम वो रिप्लाई कर रहे होते हैं, एटलीस्ट आपका मैसेज व्यू कर रहे होते हैं। मैं सोचता हूँ कि यार इनको पता कैसे चलता है कि मुझे मैसेज आ रहा है। ग्रुप्स के अंदर अगर उनको मैसेज करो तो उनको फ़ौरन से सबसे पहला व्यू अगर देखें तो उनके नाम का आ रहा होता है कि यार इन्होंने व्यू किया मैसेज। और अक्सर उनके सामने मीटिंग में लोग बैठे होते हैं, वो मीटिंग हेड कर रहे होते हैं, उसके दौरान भी अगर उनको मैसेज करना हो तो वो फ़ौरन से देखते हैं और फ़ौरन से रिप्लाई करते हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा सर ये आप कैसे मैनेज करते हैं और ये क्यों करते हैं आप? आप थोड़ी देर बाद भी रिप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा खुर्रम मैंने ना एक आदत बना ली है अपनी। पहले शुरू में ऐसा होता था कि मैं सोचता था कि यार इनको ना मैं जब मैं फ्री हूँगा, रिलैक्स हूँगा तो मैं इनको रिप्लाई करूँगा। तो उसमें मैं बड़ी गलतियाँ करता था। एक गलती ये करता था कि मेरे से कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के मैसेजेस मिस हो जाते थे। दूसरी बड़ी गलती ये करता था कि जब मैं सोच में पड़ जाता था डिसीजन लेने के लिए, तो शायद कि मैं सोचने में वो डिसीजन लेने में देरी कर जाता था, और मेरी पोजीशन ऐसी है या मेरी सीट ऐसी है कि मुझे फ़ौरन फ़ौरन डिसीजन लेने होते हैं, और अगर मैं थोड़ा सा भी डिसीजन लेट करूंगा तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर बहुत बुरा पड़ेगा। तो मैंने अपना उसूल बना लिया कि जैसे ही मैसेज रिसीव हुआ, जैसे ही किसी ने कोई बात कही, मैं उसको एनालाइज करता हूँ, स्ट्रेटेजाइज करता हूँ और फ़ौरन से उसके ऊपर रिप्लाई करता हूँ, रिस्पॉन्ड करता हूँ, और वो काम वहीं से ख़त्म हो जाता है और मैं फिर अगले काम की तरफ तवज्जो देता हूँ। अगर मैंने उसको रखा होता है और बाज़ूकात मैसेज मेरे से मिस हो जाए, किसी को रिस्पॉन्ड करना मिस हो जाए, तो वो शायद ये सोच रहा होता है कि यार उसने मुझे इग्नोर कर दिया। हालांकि मैं इग्नोर नहीं कर रहा होता, मेरे से वो मिस हो जाती हैं चीज़ें। तो मैंने पहले मेरे साथ शुरू में ऐसा होता था, तो जैसे जैसे मेरा कैनवस बढ़ता रहा, मेरी जिम्मेदारियों का कैनवस बढ़ता रहा, तो मैंने खुद ही ये सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। और मेरा ज़्यादातर काम होता भी व्हाट्सएप पे या मैसेज पे होता है, तो मैं फ़ौरन से मैसेज का रिस्पॉन्ड करता हूँ। अगर कॉल, हाँ कॉल मेरी जो है वो लेट हो जाती है, कॉल मैं नहीं उठाता जब तक मैं फ्री ना हूँ, लेकिन मैसेज का रिस्पॉन्ड मैं फ़ौरन से करता हूँ। तो ये 2 अलग-अलग उसूल हैं, 2 अलग-अलग पर्सनालिटीज़ के उसूल हैं। कुछ वेट करते हैं कॉल का, कुछ वेट करते हैं मैसेज का, कुछ जो है वो वेट नहीं करना चाहते। तो आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा उसूल आपने बना रखा है तो मुझे बताइएगा। अच्छा एक और मज़े की चीज़ जो आज मैंने फील की है, कि जब कभी भी हम किसी लिफ्ट में बैठते हैं, और लिफ्ट में खैर बैठते तो नहीं, हम लिफ्ट में खड़े होते हैं, तो जब कभी किसी लिफ्ट में हम खड़े होते हैं और किसी फ्लोर पे जा रहे होते हैं, तो हमारे साथ जो हमारे हमसाए आते हैं, खड़े होते हैं, हम उनसे बात नहीं करते। अगर वो कोई बात करना भी चाहें तो हमें बड़ा ऑड लगता है, बिल्कुल साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ हम खड़े होते हैं।
आज मैं एक पर्सनैलिटी को मिलने जा रहा था, तो मैं जब लिफ्ट में खड़ा हुआ तो एक साहब अंदर आए और सामने जो है वो बाहर से एक साहब लिफ्ट में आने लगे, तो उन्होंने लिफ्ट रोक ली कि भाई वो अंदर आ जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो साहब दूसरी लिफ्ट की जानेब बढ़ गए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं आना, चलो ठीक है हम ऊपर जाते हैं। तो मुझे को हल्की सी समझ आई और हल्की सी नहीं आई, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी सर क्या कह रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि यार ये सामने जो बंदा था ना, वो पहले हमारी लिफ्ट में आना चाह रहा था, फिर पता नहीं उसको मेरी लिफ्ट पसंद नहीं आई या हम उसको पसंद नहीं आया, वो दूसरी लिफ्ट में चला गया। तो वैसे मैंने कुछ जाना 7th फ्लोर पे था, तो कोई 5-6 फ्लोर्स का थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने उनसे वैसे गपशप लगाना शुरू कर दी। मैंने कहा अच्छा जी यहाँ पे क्या है, इस बिल्डिंग में क्या है, लोग कौन है, किस तरह से हैं। तो बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली मुझे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और विद इन 2 मिनट्स या 3 मिनट्स मैंने बहुत सारी चीज़ें ग्रैस्प कर ली। तो मुझे लगा यार कि हम लिफ्ट के अंदर खड़े होकर लोगों से बात क्यों नहीं करते, और लिफ्ट में हर वो इंसान खड़ा होता है जिसने उस मंजिल के ऊपर जाना होता है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, जिस भी कैडर से है, जिस भी कैलिबर से है। आपको लिफ्ट के अंदर बड़ी आपकी दोस्तियाँ होती हैं। और हाँ, एक दफ़ा इंग्लैंड के अंदर मैं एक लिफ्ट के अंदर जा रहा था इसी तरह होटल के, मेरा को फ्लोर था आई थिंक सो 14, तो और जब मैं लिफ्ट में खड़ा हुआ तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, उनसे मेरी मुलाकात वहाँ पे, वो लिफ्ट में मेरे साथ खड़े हो गए, तो मैंने उनको सलाम किया, हेलो भाई की। तो उनको मैंने कहा जी इस तरह ये फलां फलां जगह पे हमारा इस तरह इंट्रैक्शन हुआ था, मेरा ये नाम है, और उनको मैंने अपना तारुफ कराया। और वहाँ लिफ्ट से निकलते निकलते 14th फ्लोर तक पहुँचते पहुँचते हमने एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज किया, और आप यकीन जानिए कि इतनी अच्छी उनसे कॉन्वर्सेशन रही है, इतना अच्छा ताल्लुक रहा कि आफ्टर 3 to 4 years, आज 4-5 साल हो गए हैं, हमारी तकरीबन हर वीक बात होती है। जब कभी मैं कराची जाता हूँ उनसे बड़ी ज़रूर मुलाकात होती है, जब कभी वो इस्लामाबाद आते हैं मेरी उनसे बड़ी दफ़ा मुलाकात होती है, हम खाना अक्सर इकट्ठे खाते हैं, हमने बहुत सारी बिज़नेस रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी की, उनको मुझसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए, मुझे उनसे बहुत सारे फ़ायदे हुए। तो हम लिफ्ट के अंदर पता नहीं क्यों खामोश रहते हैं, हम क्यों नहीं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते, हम क्यों नहीं लोगों के साथ वहाँ सोशलाइजिंग नहीं करते, बस वहाँ पे ऐसा ही हमने सोचा होता है यार कि बस नहीं अब बात नहीं करनी। इसी तरह हम किसी कैफ़े पे जा रहे होते हैं, या किसी रेस्टोरेंट पे खड़े हैं, या किसी लाइन में लगे हुए हैं, या किसी गवर्नमेंट के इदारे में वेट कर रहे हैं और हमारा नंबर नहीं आ रहा, तो हमारी साथ वाली सीट पे कोई शख्स बैठा है, तो हम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते, उससे गपशप नहीं लगाते। कुछ लोग तो होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन मेरी तरह को एक्सट्रोवर्ट जो लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सोशलाइज करिए, ऐसी जगहों पर जरूर सोशलाइज करिए, वहाँ मुंह बना के बैठे होते हैं या फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जी जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं और बड़े अजीब से हमने असूल बना रखे होते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा असूल है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं सुनना चाहूँगा। एक गाना आपको मैं सुना रहा हूँ, और इस गाने से मैं जब वापस आऊँगा तो फिर जो है वो आपकी कॉल्स होंगी, 3 से 4 कॉल्स, और उसके बाद मौजू तब्दील। ये वाला तो आई थिंक जो मैंने आपको सुना दिया, ये वाला गाना आपको सुनाते हैं जी।

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफा फिर खुश आमदीद। 12:43 हुए चाहते हैं, इट्स 12:43 एंड इट्स 8th of September 2026 एंड मुझे कहते हैं आर जे के बी आर सुन रहे हैं बनो इंटरनेशनल। और मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ जी कि कोई ऐसा उसूल आपने बना रखा है कि जो कि बहुत अजीब सा है, ये सिर्फ आपकी ज़ात तक है, तो आप मुझे शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। कॉल आप मुझे कर रहे हैं तो कॉल्स शामिल करने का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं जी। कॉलर लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप कैसे हैं?
1: अफजल जावेद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से।
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: अफजल जावेद।
0: अफजल जावेद साहब जी, अफजल साहब कैसे मिजाज हैं आपके, आप खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का, पहली बार ही आपको साल की और पहली मुलाकात हो रही है।
0: जी जी जी, अफजल साहब क्या करते हैं आप? अफजल साहब
1: मैं छोटे जॉब है मेरा, छोटा सा एरिया।
0: अच्छा,
1: क्राकरी।
0: ओके, तो बिजनेस करते हैं आप क्रॉकरी का?
1: जी, क्रॉकरी की दुकान है मेरी।
0: अरे माशाल्लाह, तो आप रात के इस पहर जाग रहे हैं, आदत आपकी सुनने की रेडियो या वैसे आप नॉर्मली वैसे ऐसे ही जाग रहे हैं आप?
1: ये रात जागने की आदत है मेरी।
0: अच्छा, तो कब तक जागते हैं आप रात को?
1: 2 बजे तक।
0: 2 बजे सोते हैं?
1: 2 बजे के तकरीबन बाद बच्चा आते हैं मेरा ड्यूटी से, तो उनके दरवाजा खोलना होता है।
0: अच्छा,
1: तो उसके बाद फिर
0: आपकी कौन आता है, किसके दरवाजा खोलते हैं आप?
1: बेटा मेरा ना जॉब करता है।
0: अच्छा, बेटा आपका, आपका बेटा आता है 2 बजे और आप उसके लिए जाग रहे होते हैं?
1: 1 बजे आते हैं, फिर 2 बज जाते हैं। अच्छा, दुकान भी आके सुन रहे होते हैं FM पे।
0: अच्छा, तो आप दुकान पे भी FM सुनते हैं?
1: नहीं, दुकान पे रात के वक्त 10 से 2 बजे तक।
0: ओके, 10 से 2 बजे तक सुनते हैं। तो किस किस को आप सुनते हैं, कौन कौन आपका फेवरेट है? आपकी जिंदगी में कोई ऐसा उसूल है जो आपने बना रखा है और आपको लगता है यार ये बड़ा अजीब सा उसूल है?
1: मुझे घर से बचपन से मेरी आदत है, उसूल तो नहीं है, ये आदत है कि मैं किसी घर में खाना वाना देने भी जाता था, 3 बार मैं दरवाजा खटखटाता था।
0: अच्छा, 3 बार दरवाजा खटखटाना आपकी आदत है?
1: 3 बार 3 मिनट के वक्त में।
0: अच्छा,
1: अरे कहीं बल है तो 3 बल देता था 3 मिनट के वक्त में, 3 मिनट तक। अच्छा, 1 मिनट दिया फिर छोड़ दिया, 1 मिनट इंतजार किया किसी को आने में जल्दी, कुछ ऐसा मसला हो। अब साल में रहता हूँ।
0: अच्छा,
1: तो 3 बल सुनता हूँ।
0: अच्छा, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। कभी ऐसा हुआ है कि आप 3 मिनट गुजरे हैं और आपने दोबारा बेल मारने लगे हैं और बंदा दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाने लगा कि आपको पता चल गया वो दरवाजे पे आ गया, आपने फिर भी बेल बजाई?
1: नहीं, बेल किसी पर, बेल के ऊपर नहीं, अगर वो हाजिर हो तशरीफ ले आया वो, ये तो बेल नहीं देता ना, किसी बेल की नौबत तो उस वक्त आती है जब वो नहीं पहुंचा होता वो।
0: अच्छा, चले, वेरी गुड जी, वेरी इंटरेस्टिंग जी, बहुत मजेदार चीज आपने बताई है। थैंक यू अफजल साहब, बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत
0: थैंक यू। अफजल साहब कहते हैं जी कि मैं जो है वो जब किसी को कॉल करता हूँ तो 3 बेल जाती हैं, तो 3 बेल्स के बाद मैं कॉल काट देता हूँ और फिर मैं मजीद को कॉल नहीं करता। मजेदार है वैसे है। हम तो जब तक कोई कॉल उठा ना ले तब तक बस मिला ही रखते हैं, और जब आगे से बीबी बोलती है ना कि आपका मतलूबा नंबर फिल वक्त में असर नहीं, तो उसके बाद काटते हैं। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आपसे बात नहीं हो पाएगी, आप मोहतरम हैं या कि मोहतरमा हैं? ओके जी, नेक्स्ट कॉलर को मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है मेरे साथ?
2: वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ लाहौर से।
0: जी भट्ट साहब, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक।
0: तो भट्ट साहब बताइए, क्या ऐसा उसूल है जो आपने बना रखा है?
2: वो उसूल है, वो आपकी आंटी बड़ी तंग है, वो कहती है अगर एक प्लेट चावल खाने हैं तो एक ही दफा डाल लो, ये क्या थोड़े थोड़े चिड़ियों की तरह डाल के खाते हो, मुझे भी चक्कर लगवा दे। मैं तुम चक्कर ना लगाओ, इधर पास रख लो, मुझे आदत है मेरी प्लेट पर होगी, मैं खा ही नहीं सकता, मैं फिर नहीं खाई।
0: सेम लाइक मी, सेम लाइक।
2: एक तो ये आदत है, एक ये आदत है कि बाहर बेल पे गेट पे बेल हुई है ना, मेरा दिल करता है फौरन जाकर दरवाजा खोले।
0: अच्छा लोग
2: वो जो बंदा बाहर आया है दरवाजा, वो बेचारा धूप में खड़ा है, तो आप फिर रहे हैं सारे बेलें हुई जा रही है, जाकर दरवाजा खोलो ठीक है ना। और एक आदत है कि चीजों को जहां से उठाया वहां रखो, ये जो बेहतर टीबी है ना वो बड़ी दिमाग को कोफ देती है, चीज जहां से ली है वहीं रखी जाए। बाकी ये खाने वाली आदत आपकी और मेरी सेम है, मैं ज्यादा चीज में से मेरी प्लेट में कोई डाल दे मुझे खाई नहीं जाती,
0: क्या बस। अच्छा ये मेरे साथ भी है ऐसा कि मैं भी कहता हूँ मैं थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी चीज पड़ी हो, आपकी पूरी प्लेट खाली
2: होती है। खाना घंटा ला के मैं मैं तो घंटा ला खाऊ, मुझे मैं थोड़ा थोड़ा पता कि एक मेरी आदत है कि मैं अपने जो सालन अगर कोई चीज खाई नहीं ना फिर मैं सुबह मारता हूँ सबको, अगर मैंने उसमें खा लिया ना मैं फिर जैसे बदीन मैं अपने झूठे की सुबह नहीं किसी को मारता, यार मैं अपना झूठा क्यों दूं किसी को, तो वो फिर खाना पड़ता सारा। बिल्कुल आपने सालन डाला है ज्यादा, आपने प्लेट भर दिया आपको नहीं अच्छा लगा तो आप वो सारा खाओगे, मैं नहीं वो छोड़ता आपने फिर मुझे खाना पड़ता, मैं इसलिए डालो ही थोड़ा थोड़ा थोड़ा डाल के बाद बेशक दो किलो मटन खा जो, लेकिन डालो थोड़ा थोड़ा खा लो फिर डाल लो फिर जब आपका पेट भर जाए छोड़ दो। मैंने तो यही शुरू से यही तरीका रखा
0: है, नाइस
2: थोड़ा थोड़ा डाल के खाते जाए और सुकून से जहाँ पेट भर जाए छोड़ दो अपना। ये वो तंग आ जाती है आपकी आंटी जो है वो तंग आ जाए, की करना है जी करना है, मैं
0: उनको बोले
2: भरो प्लेटा प्लेटा भर लेंगे बाद छड़ देंगे
0: आपको नहीं तंग करूंगा।
2: वो भी डूंगे सात डूंगे लिया कर देते हैं लेकिन वो भूल जाती है, अब वो उम्रें हो गई है ना भूल जाती है बस क्या करें।
0: चलो चलो ख्याल रखें सर अपना, बहुत शुक्रिया, आंटी भी खुश रहे आप भी खुश रहे, थैंक यू।
2: नहीं आंटी को खुश रखा हुआ है सारा दिन, मैं चुप नहीं जा सकता, मुझे चुप रहना पड़ जाए ऐसा लगता है मैं फौत हो जाऊंगा।
0: अच्छा
2: चुप नहीं जा सकता। हाँ जी
0: तो बस वो फिर तो वो खुश नहीं रहती होंगी, तंग हो जाती होंगी।
2: नहीं नहीं मैं ऐसे ऐसे चुटकुले मैं कहता हूँ क्या बात है उनकी, आज मैंने लहसुन प्याज अदरक बनाया और मैंने हंडिया शुरू कर दी थी पकानी, अब ऊपर से आ गई, मैंने कह लो बाकी की तुम पकाओ, ये ऐसे काम करते हैं मिलके इंशाल्लाह।
0: वाह माशाल्लाह
2: सारी जिंदगी गुजर गई इकट्ठे, अल्लाह का बड़ा शुक्र है।
0: अच्छा कितना अर्सा हो गया शादी को, कितना अर्सा हो गया शादी, कितना अर्सा हो गया शादी को?
2: मैंने ना 87 में बीए किया था।
0: अरे माशाल्लाह मैं पैदा भी नहीं हुआ था।
2: शादी मेरी 86 में ही हो गई थी।
0: अच्छा बीए से पहले ही आपने?
2: शादी के बाद भी मैं एक साल कॉलेज जाता रहा हूँ, बेटा भी हो गया फिर भी कॉलेज जाता रहा।
0: बीए से पहले ही ब्याह कर लिया आपने ना?
2: हाँ पहले ही कर दी अब्बा जी ने, अकेला अकेला था ना अब्बा का, उन्होंने शादी करो बच्चे से छे
0: पढ़ाइया होती है रसन ब्याह कर लो।
2: अल्लाह का शुक्र है 30 साल क्रिकेट खेली है, बड़ी बड़ी क्रिकेट खेली है, हार्ड बॉल से भी टेनिस बॉल से भी।
0: अच्छा
2: बड़ा उसका शुक्र। अब बच्चे गए होते हैं ना वो रेस्टोरेंट पे, वो आते हैं तो मैं फिर सुबह नमाज पढ़ के सोता हूँ।
0: अच्छा
2: अब कभी तस्बीह पढ़ता हूँ कभी रेडियो सुनता हूँ, और दूसरा कोई घर रिटायर हो गए हैं कभी तस्बीह पढ़ ली कभी आपका रेडियो सुन लिया, जब गाना आता है ना मैं गाने सुन सुन के ना मेरा सर दर्द होते हैं।
0: अच्छा
2: वो मैं फिर आवाज बंद करके ना तस्वीर पढ़ता रहूं, जब गाना खत्म होता फिर मैं आपकी आवाज सुन बातें सुनने का मजा आता है मुझे बातें। गानों में तो वही इश्क के सिलसिले खत्म ही नहीं हुए, इश्क ने बर्बाद किया कई लोगों को, वो ही नहीं खत्म हो रहा जब से पैदा हुए हैं, इश्क इश्क इश्क। बाद में पता चलता जब इंसान हमारी उम्र पहुंच गए, मैं 18 साल इश्क पिछे जाया किते जो बच्चे कहने ने बनाया कि अब्बा जो पिछे लगा रहे हैं वो बच्चे तेन मामा मामा कहने तू ए चंगा सी कुछ बना ही लेंदा लेके 40 साल की उम्र जो होती है ना उसमें बंदा कहता है मुझसे सियाना दुनिया में कोई नहीं पैदा ही नहीं हुआ, नहीं सियाना होगा मुझसे सियाना कोई नहीं, तो ये बस अल्लाह पाक हिदायत वाली जिंदगी नसीब करे अल्लाह। बेटा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, मैं बड़े गौर से सुनता हूँ आपकी आवाज और वो अब नाम भी भूल जाते हैं जयांजन साहब की आवाज और एक वो आते हैं फरहान साहब, आपकी थोड़ी थोड़ी आवाजें मिलती है फर्क है, जरा थोड़ी देर प्रोग्राम सुनना उसके बाद पता चल जाता है, लेकिन आवाजों में है थोड़ी थोड़ी मिलती है जयांजन साहब की आपकी और फरहान साहब की।
0: चले थैंक यू अंकल, बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखें, आंटी आपके साथ खुश रहें, आप भी खुश रहें, आपकी मोहब्बतें बरकरार
2: है,
0: मोहब्बतें बरकरार है, बस दुआ दे रहा हूँ आपको, दुआ दे रहा
2: हूँ,
0: आप मुझे दुआ दीजिएगा, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू, वेरी इंटरेस्टिंग अंकल, वेरी इंटरेस्टिंग कॉलर। एक आखिरी कॉलर लूंगा जी, उसके बाद एक गाना आपको सुनाऊंगा, उस गाने के बाद आके मौजू तब्दील करूंगा। ये सब माया है, यही वाला गाना आपको सुनाना है जी। कॉलर लेता हूँ आखिरी, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, कैसे हो?
0: बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, आप खैरियत से?
3: अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक।
0: कौन साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: अदनान अलवी बात कर रहा हूँ।
0: अदनान अलवी साहब टोबा टेक सिंह से बात कर रहे हैं?
3: फैसलाबाद से हूँ, लेकिन अटक पे जॉब में हूँ ना, ड्यूटी पे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अदनान अलवी साहब। तो अदनान अलवी साहब, क्या बताने आए हैं मुझे आप?
3: मैं सर, माशाल्लाह आपका टॉपिक तो बहुत जबरदस्त है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है सर। मुझे ना बहुत से मतलब ये है ना कि गुस्सा आता है ना, जब मतलब कि मैं किसी से लड़ता हूँ ना, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, मैं चुप करके सो जाता हूँ।
0: वेरी नाइस,
3: मतलब यार कि अगले बंदे का मैं कहता हूँ यार मेरे से ना नुकसान हो जाएगा, चुप करके जाता हूँ, जाके कमरे में ना अकेला कुंडी लगा के ना सो जाता हूँ। जब गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाता है, फिर आगे उससे भाग करता हूँ कि यार मुझसे गलती होगी, या मतलब अगले बंदे की गलती नहीं है ना, तो फिर मैं उससे माजरा कर लेता हूँ।
0: अली साहब आप बड़े स्वीट हैं फिर तो, अगर आप सो जाते हैं तो, हमारी मीनी उड़ जाती है गुस्सा आ जाए तो।
3: ये मेरी बस ना बचपन से आदत है। एक दफा ना ऐसे होना कि कॉलेज में मैं बच्चे की बात थी, हमारी लड़ाई होगी ना, तो लड़ाई इतनी ज्यादा हुई ना कि मतलब मारो मारी हुई ना, ठीक ठाक हुई है, तो उसके बाद ना जब मैं आया हूँ ना, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा था यार, उसने मेरे दोस्त को थप्पड़ मारा क्यों है। इस वजह से मैंने उसको सही थप्पड़ मारे ना, तो बाद में यार मैंने कहा यार गलत किया है, ये बंदे को थप्पड़ नहीं लगाने चाहिए थे। सोया हूँ आके, फिर ठंडा हुआ गुस्सा, उसके बाद अगले दिन गया हूँ, उस बंदे से मैंने माफी की, मैंने कहा यार मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। कहता यार ये बंदा है तुम्हारा क्या था? फिर मैंने कहा यार कोई बात नहीं, कल मुझे यार गुस्सा आया तो आपने मेरे दोस्त
0: को जाके सो गया,
3: तो इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया था,
0: कल मुझे गुस्सा आया था, मैं घर जाके सो गया था, अब मैं सो के जागा हूँ तो गुस्सा होता है ना। चलो चलो ठीक है अलवी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गाना सुनिए, ठीक है, ये गाना आपके नाम करते हैं हम, ये सब माया है, ये गुस्से ये सब माया है, ये दुश्मनियाँ ये दोस्तियाँ ये सब माया है, ये मोहब्बतें ये नफरतें ये कुदूरतें सब माया है।
4: मन मेरा
0: अब सभी के नाम ये ट्रैक वापस आता हूँ, मुझे आरजे की भी कहते हैं, 101 इंटरनेशनल आप सुन रहे हैं, 12:56 हुए चाहते हैं, वापस आऊंगा एक नए मौजू के साथ और फिर कुछ नए कॉलर्स के साथ। कॉलर्स आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, नया मौजू बताऊंगा, आपने उस पर कॉल करनी है, ठीक है ना।

सब माया है जी, वाकईतन सब कुछ माया है। सब किसी ने ख़त्म हो जाना है, सब किसी ने दोबारा शुरू हो जाना है। ये ज़िंदगी, ये दुनिया कई दफ़ा ख़त्म हुई, कई दफ़ा दोबारा बनी। कितनी ही गैलेक्सीज हैं, मौजूद हैं, और कितनी दफ़ा इस दुनिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हुई और फिर दोबारा से वो चीज़ें ख़त्म हुई और फिर बनी। ये बस सिलसिला चली जा रहा है, चली जा रहा है, और सब कुछ माया है। लेकिन हम अपनी इस माया ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ बड़ी ख़ास करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, और हम सब में कहीं ना कहीं वो मौजूद ज़रूर होती है कि हम अपनी ज़िंदगी का शायद के मैं कहूँ कि 80% हिस्सा ऐसा होता है कि जिसमें हम अपनी तगोदो, अपनी मेहनत, अपना वक्त, अपनी सारे रिसोर्सेस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लगा देते हैं कि हम किसी को दिखा सकेंगे यस मैं कामयाब हूँ। बाज़ोकात हम कामयाबी इसलिए हासिल कर रहे होते हैं कि लोगों को दिखा सकें कि मैं कामयाब हूँ। जब हम कामयाब हो जाते हैं तो जिसको हम दिखाना चाहते हैं वो हमारी ज़िंदगी में नहीं होता, या वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता कि हम जिसको दिखाने के लिए शायद कामयाब हो रहे होते हैं। हम अगर कुछ पहन रहे हैं तो किसी को दिखाने के लिए शायद पहन रहे होते हैं कि यार उसने वो वाला ब्रांड पहना है तो मैंने भी ये वाला ब्रांड पहनना है, या उससे अच्छे वाला ब्रांड पहनना है, महंगा ब्रांड पहनना है। या शायद हमें वो चीज़ कभी पसंद नहीं होती, पहनने में वो कपड़ा हमें सुकून नहीं दे रहा होता, हमें वो कलर पसंद नहीं होता, हमें वो डिज़ाइन पसंद नहीं होता, लेकिन हम वैसे ही लोगों को दिखाने के लिए पहन रहे होते हैं। हम कहते हैं यार फैशन में है, ट्रेंडिंग में है आजकल ये चीज़, ये पहननी है। अगर हम गाड़ी ले रहे हैं तो शायद हमारा गुजर बसर छोटी गाड़ी में भी हो जाता है। जिस ब्रांड की गाड़ी के ऊपर हम आज बैठे हैं वो गाड़ी भी हमारे लिए मोर देन इनफ होती है, लेकिन हम किसी को दिखाने के लिए यार कि बड़ी गाड़ी होगी, नया शशका होगा, नई चीज़ होगी, नया मॉडल अपडेट इसलिए करते हैं। फ़ोन्स की बड़ी दौड़ है हमारी ज़िंदगी के अंदर कि हम फ़ोन्स अपडेट कर रहे होते हैं। अच्छा, सब में हम सारे के सारे शामिल होते हैं। शायद कि मैं भी कहीं ना कहीं किसी ऐसी चीज़ में मुब्तला कभी रहा हूँ, और ये वक्त के साथ आपको चीज़ें समझ आती हैं कि इन चीज़ों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि मैं जिस ब्रांड का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ उसका मॉडल मैंने जो है वो 11 से शुरू किया, और फिर मैं हर साल वो मॉडल अपडेट करता था। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेरा गुजारा चलता था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि यार मेरे सर्कल के अंदर जो है ना वो इस वक्त का लेटेस्ट मॉडल है, और करते करते मैंने शायद कि वो 5-6 साल वो मॉडल अपडेट करता रहा, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि यार बस मेरे पास ना वो होना चाहिए। फिर मुझे जब ना 6-7 साल बाद ये एहसास हुआ कि यार इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन है जिसको मेरे मॉडल से मुझे गेज करेगा, शायद कि मुझे गेज करने के लिए किसी का कोई और पैमाना होना चाहिए। और अगर मुझे कोई गेज करता है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज मटेरियलिस्टिक थिंग्स, तो वो शायद मेरे साथ मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं है, या मेरी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। मुझे किसी और चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि अपनी एनर्जीज इन चीज़ों के ऊपर वेस्ट करनी चाहिए कि यार मेरे पास अच्छे मॉडल का, लेटेस्ट मॉडल का फ़ोन हो, मेरे पास लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी हो, लेटेस्ट मॉडल का घर हो, लेटेस्ट मॉडल की चीज़ें हों, नए ब्रांड की चीज़ें हों, जो नया जो है वो कलेक्शन आई है, जो नया कोई भी आपके पास कोई चीज़ किसी ब्रांड के ऊपर आई है तो वो मैंने ख़रीदनी है, लेनी है, बस ऐसे ही लेनी है, ज़रूरत है या नहीं है बस लेनी है। और अगर मेरा गुजारा किसी आम बेल्ट के साथ हो रहा है तो लेकिन बेल्ट फिर भी मैंने ना वो उस वाले ब्रांड का पहनना जो मैंने वहाँ देखा था, बस उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, एक टैग लाइन होनी चाहिए। जैकेट्स अगर मुझे नहीं भी पसंद लेकिन उसके ऊपर अगर छोटा सा लोगो लगा है ना, वो वाले लोगो वाली जैकेट लेनी है। और वो वाली जैकेट जो मुझे बहुत पसंद है उसके ऊपर कोई लोगो नहीं है, वो वाली जैकेट यार कैसे पहन सकता हूँ, वो सोचेगा कहेगा यार कहाँ से उठा ली है, पता नहीं कहाँ से ले आया। इस दौड़ के अंदर हम बहुत ज़्यादा पड़ गए, और शायद कि ये दौड़ हमारे अंदर इन ब्रांड्स ने डाली है, और उन ब्रांड्स ने मार्केटिंग करके हमारे अंदर ये दौड़ डाली है ताकि हम उनके लिए मेहनत करें। अगर आप सोचें ना तो ये जितने भी ब्रांड्स होते हैं, मैं बड़ा डेप्थ से इनको देखता हूँ, मैं इनके साथ काम भी कर रहा हूँ, और मैं इनके लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी प्लान करता हूँ या मार्केटिंग उनके लिए कर भी रहा होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यार इस चीज़ को क्रिएट किया जाता है, दुनिया से ऐसे एक्सपर्ट्स को उठाया जाता है, अपने मुआशरे के अंदर उन एक्सपर्ट्स को उठाया जाता है जो कि आपकी साइकी के साथ खेल सकें, जो आपको साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा जो है वो इन्हेंस कर सकें कि आप उस दौड़ में एक दफ़ा पड़ जाएं कि यार ये वाली चीज़ मैंने ख़रीदनी है और इस दौड़ के अंदर ये वाली चीज़ मुझे हासिल करनी है। अब बहुत सारी ख़वातीन में खासकर मैं उनकी बात करूँगा, बहुत अच्छी अच्छी पोजिशंस पर होती हैं और बहुत अच्छा अच्छा अर्न कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी अगर उनके पास बैठ जाएँ तो उनके रोने धोने ख़त्म नहीं होते कि यार बस पूरी नहीं पड़ रही यार, वो गुजारा नहीं हो रहा यार ज़िंदगी। तो मैं पूछता हूँ यार कि क्यों, इतनी अच्छी तो सैलरी है, इतना अच्छा तो बिज़नेस चल रहा है, इतना अच्छा पैसा आ रहा है, तो वो क्या है, इससे गुजारा क्यों नहीं चल रहा। भाई मेरा जो शौक है ना, मैंने वो वाला बैग ख़रीदना है जो कि 17 लाख का है, मैंने अपनी शादी पे ना वो वाला लहंगा पहना, जैसे अभी
मेरी कॉलर आया करती थी अरीबा, वो कहती थी यार कि मैंने इतना कमाना है कि मैंने अपनी शादी में 4 लाख रुपए वाला लहंगा पहनना है। अगर वो 50,000 वाला लहंगा भी पहन लेंगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ एक दिन की बात है। तो इस दौड़ के अंदर इन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ ने, चाहे वो डिजिटल के ऊपर हो, चाहे वो टेलीविज़न के ऊपर हो, चाहे वो हमारी ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर हो, कहीं भी हो, उस दौड़ के अंदर हमें डाल दिया गया है। और शायद कि वो दौड़ हमारे लिए कहीं अच्छी भी है और कहीं बहुत ज़्यादा बुरी भी है। अच्छी इस सेंस से है कि हम तरक्की करना चाहते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम नई चीज़ें हासिल करने के लिए शायद तगड़ो ज़्यादा करते हैं। लेकिन बुरी है कि हम जब हमें मिल नहीं पा रहा होता तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, अगर आपको अच्छा है, आप अच्छे ब्रांड्स की चीज़ें पहने, ज़रूर पहने, क्योंकि ब्रांड, जो भी ब्रांड बनता है वो उसने बहुत सारी चीज़ें करके बनता है। कहीं उसने क्वालिटी को इंक्रीज़ करना होता है, कहीं सर्विसेज अच्छी दे रहा होता है, कहीं आपको क्या चीज़, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको वो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जो है वो उनके ज़रूर होते हैं, USPs, जिसके थ्रू वो आपको सेल कर रहे होते हैं अपनी चीज़ें। तो उसको आप ज़रूर इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन उस दौड़ के अंदर कभी मत पड़िए। लेकिन हम पड़ जाते हैं कभी कभार। तो आपसे मैं अभी अगले जो एपिसोड में सवाल करने वाला हूँ वो ये है कि आपने आखिरी जो है वो ऐसा काम कौन सा किया था या आप कर रहे हैं कि जो आपको ज़रूरत नहीं थी, बस आपने ऐसे ही कर दिया था, या कोई ख़रीदी आपने चीज़, तो खुल के बताइएगा, बिल्कुल आपने छुपाना नहीं है किसी ऐसी चीज़ के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं 6 साल इस दौड़ में रहा कि मैंने लेटेस्ट फ़ोन जो है वो अपने पास अपडेटेड रखना है और नए मॉडल का फ़ोन लेना है और उसको दिखाना है ऐसे करके, यार यस मेरे पास नया लेटेस्ट मॉडल है। और आफ्टर 6 ईयर्स मैंने स्टॉप लगा दिया और 6 ईयर्स के बाद जो मेरे पास फ़ोन है आज भी वही फ़ोन है और मैं उस मॉडल से ऊपर उसको अपडेट नहीं किया। शायद 3 मॉडल और मज़ीद ऊपर आ गए हैं उसके, 2 और आ गए हैं, तीसरा अभी आने वाला है। तो मैंने अपडेट नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपके उसको अपडेट करने से, क्योंकि मेरा गुजारा बहुत बेहतरीन चल रहा है और शायद कि उस फ़ोन के ऊपर इतना सिस्टम मेरा नहीं चलता जितना दूसरे फ़ोन के ऊपर चलता है, जो बिल्कुल एक शायद कि लोकल ब्रांड का है, वो काम ज़्यादा अच्छे से करता है, वो मेरे ज़्यादा दिल के करीब है उससे जो कि अच्छे ब्रांड का है। सो इसलिए इन ब्रांड्स की दौड़ में हम पड़ जाते हैं और हम सारे के सारे पड़े होते हैं। हम सबको कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल करते हैं हम किसी को दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, कहीं ख़ानदान में किसी को दिखाने के लिए, कहीं कज़नों के साथ हमारी दौड़ लगी होती है, कहीं मोहल्लेदारों से लगी होती है, कहीं क्लास फेलो से लगी होती है। तो आप किसी अगर ऐसी दौड़ में हैं तो मुझे बताइए, खुल के बताइए, इसमें कोई ऐसी लज्जा की बात नहीं है कि आप शर्माएं, क्योंकि उससे हम सीखेंगे कि आपके अंदर वो दौड़ क्यों है, आपकी साइकी क्या कहती है, क्यों कहती है ये बात। और अगर आप नहीं हैं या थे आप कभी, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में मैंने उन कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करना है जो मुझे ये बताएंगे।

ओके जनाब, फेसबुक में मेरे साथ कुछ लोग हैं जी, नाम शामिल करने जाता हूँ जी। साइम राठौड़ है मेरे साथ और सलाम कह रहे हैं, प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और वेलकम कह रहे हैं, थैंक यू सो मच साइम राठौड़। फैसल अब्बास मेरे साथ हैं प्रोग्राम में शामिल हाल, ताहिर अजीज़ मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हाल हैं, कहते हैं सलाम अलैकुम, मोस्ट रिस्पेक्टेड ब्रदर, विश यू अ गुड लक। और मैं रावलपिंडी से हूँ, थैंक यू सो मच ताहिर अजीज़, बहुत शुक्रिया। साइम तबस्सुम मेरे साथ हैं, थैंक यू कह रहे हैं। उमर सबा उमर अब्बासी है मेरे साथ और कोमल ईमान है मेरे साथ, कहती हूँ व्हाट अ सरप्राइज, वेलकम जी, थैंक यू सो मच कोमल। मोहम्मद साजिद मेरे साथ हैं, सलाम कह रहे हैं, लाहौर से हैं, कहते हैं काफ़ी अरसे के बाद सुन रहा हूँ आपको और हसनैन रज़ा भाई का बहुत को बहुत मिस कर रहा हूँ, उनकी दुआ है। भाई जान जहाँ भी रहें खुश रहें, और मेरे फेवरेट आरजे थे वो और आप भी फेवरेट हैं, थैंक यू साजिद, बहुत शुक्रिया कोमल, थैंक यू सो मच। और सलमा राशिद मेरे साथ हैं जी, सलाम कहती हैं और कहती हैं के बी मैं लाहौर से हूँ और के बी शॉर्ट किन वर्ड्स का है, तो के बी जो है वो के फॉर खुर्रम एंड बी फॉर बेग है। माँ जी भी मेरे साथ हैं, सलाम अलैकुम, के बी कह रही हैं वालेकुम सलाम, और कहती हैं नींद नहीं, नींद आई हो तो मैं जाग नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सो जाती हूँ। मैरीना कहती हैं जी वेलकम टू द प्रोग्राम। और कोमल मुझे कहती हैं जी कि मैं जो है वो लिफ्ट के अंदर जैसे ही खड़ी होती हूँ बातें करना शुरू कर देती हूँ, और एलिवेटर में जाते जाते बहुत बातें करती हूँ, इवन अगर मैं ऊबर करवाऊँ या कोई राइड करवाऊँ तो मैं राइड वाले से भी बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, और इतनी बातें करती हूँ कि उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बातें करना शुरू कर देती हूँ और एलिवेटर में जाते जाते बहुत बातें करती हूँ, इवन अगर मैं ऊबर करवाऊँ या कोई राइड करवाऊँ तो मैं राइड वाले से भी बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ और इतनी बातें

0: सलाम
1: लाहौर से आयशा बात कर रही हूँ।
0: जी आयशा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? फिट फाट हैं? जी आयशा, तो बताइए आपकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो आपने कभी ऐसे खरीदा हो किसी को शो ऑफ करने के लिए कि यार इसको दिखाते हैं आज, या कुछ किया हो ऐसा? जी
1: अक्सर मुझे
0: अच्छा, मम्मा पसंद करती हैं। आपने कभी ऐसे किया किसी को दोस्त को दिखाने के लिए, कोई भी ऐसा काम किया हो जो सिर्फ आप अपने दोस्त को या किसी कजन को किसी को दिखाने के लिए किया हो?
1: मुझे भी पहनूं मुझे अच्छा लगता है।
0: अच्छा,
1: दिखाने के लिए ना भी पहनूं फिर भी अच्छा
0: लगता है। चलो ये भी अच्छा, खुद पसंदी बहुत अच्छी बात है वैसे, है ना?
1: आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और बड़ी शौक से सुन रही हूं, नींद आ रही थी, शो सुना तो नींद उड़ गई।
0: अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच आयशा, ख्याल रखें अपना और जागती रहें, ठीक है ना?
1: बाय,
0: अल्लाह हाफिज। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो
2: जी, वालेकुम अस्सलाम।
0: जी जनाब, कौन साहिबा हैं, कहां से?
2: जी मैं लाहौर से रिमशा।
0: क्या हाल है रिमशा आपके, कैसे मिजाज है आपके?
2: जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, और मिजाज भी बहुत अच्छे हैं।
0: ओके,
2: तो आप अपने मजाजों को बचाएं कि वो कैसे हैं?
0: कैसे लग रहे हैं आपको?
2: मुझे तो बिल्कुल बेहतरीन और स्वीट लग रहे हैं, हैप्पी हैप्पी।
0: हाँ बस, तो ऐसे ही हैं।
2: और उम्मीद ये भी है कि आप बिल्कुल फिट फाट भी होंगे और अल्लाह ताला की रहमत में होंगे।
0: हाँ फिट तो मैं बस अभी नहीं रहा, फैट हो गया हूँ बस।
2: वो कैसे?
0: हाँ बस जिम शिम छोड़ा हुआ ना।
2: अच्छा जिम शिम छोड़ा हुआ, लेकिन जिम के बगैर भी आप हेल्थ सही लगते हैं।
0: और तुन तुना के खाता हूँ आजकल मैं, आज भी मुझे
2: खाना चाहिए।
0: आज भी मुझे
2: इतना नहीं कि बंदा छोड़ दे, ये मगर ये है कि थोड़ी चिकनाई भी चीजों से थोड़ा प्रेस करना चाहिए।
0: आज भी मुझे कोई कह रहा था कि यार खुर्रम तुम ना फैट गेन कर रहे हो, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, दो महीने की गेम है, बस दो महीने मैंने टिका के लगाने हैं, बस खत्म सब।
2: लेकिन आजकल वो जब कहते हैं ना, जब इंसान के सामने चटपटी चीजें आ जाए ना, फिर वो हाथ नहीं रुकता।
0: नहीं खैर, से वैसे मैं खाने पीने के इतने शौकीन नहीं हूं, लेकिन आजकल जो मुझे मिल जाए ना मैं खा जाता हूं।
2: ओके माशाल्लाह, फिर तो अच्छी बात है।
0: हां तो रिमशा बताओ, ऐसा क्या है जो आपने कभी किया हो किसी को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए?
2: जी मैंने किया है एक बार।
0: बताइए, करेज चाहिए वैसे, ये बताने के लिए करेज चाहिए, है ना?
2: मैंने बिल्कुल ही किया है।
0: आ, क्या
2: वो
0: किया?
2: भी है, इसलिए किया है कि मेरी ना सबसे छोटी वाली जो आंटी की बेटी है ना, उसके पास था मोबाइल वीवो का, तो उसने खरीदा था एक आईफोन। ठीक है, तो मेरे पास आईफोन नहीं था, तो मुझे ना मतलब ना जेलसी फील करवाती थी कि देखो मेरे पास जो है ना आईफोन है। मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा उसके पास आईफोन मेरे ख्याल से 6 था,
0: अच्छा
2: मैंने आईफोन 7 खरीद लिया।
0: इस चक्कर में उसको दिखा सकूंगा मेरे पास लेटेस्ट है।
2: मैं उसको पंजाबी में मैंने बोला, मैं वेख रहा फिर तेरे तो महंगा मोबाइल लेता है, 7 लेता है। मैंने कहा वो हैरान हो गए कि रिक्शा तुमने कैसे ले लिया। मैंने कहा बस ले लिया, मैंने पहले ही मतलब वो काम किया था, उसके बाद दोबारा कभी नहीं किया ऐसा काम।
0: तो वो कैसे लिया था, कहाँ कहाँ से पैसे जोड़े थे? अब्बू की जेब काटी थी?
2: नहीं नहीं, अब्बू की जेब नहीं काटी थी, वो जो कुछ मैंने के मित्र ली हुई थी, कुछ मैंने कुछ पैसे जमा किए थे, कुछ मामा की मेहनत थी, फिर हमने खरीद लिया था।
0: अच्छा चलो, फिर खूब शशके मारे आपने घुमा घुमा के, हमेशा आप उसको उल्टा करके रखती थी, कैमरा नजर आया ना?
2: जी बिल्कुल। अब ये है कि अब ऐसा हो चुका है कि अब मुझे जो है ना, यानी कि मेरी कजने और मेरे हमसाये मुझे नोट करके ये चीजें वगैरह खरीदते हैं कि इसके पास है तो हमारे पास भी होनी चाहिए।
0: अमीर हो गई अब रिमशा, है ना?
2: हाँ नहीं, बस आपकी दुआ चाहिए।
0: चलो मेरी दुआएं बहुत सारी तुम्हारे साथ हैं, थैंक यू सो मच रिमशा, खुश रहो, आबाद रहो, हैप्पी हैप्पी मुस्कुराती रहो, थैंक यू। काले रंग परांदा, अस्सलाम वालेकुम, कौन है?
3: जी वालेकुम।
0: जी जी जी सर,
3: जी सर,
0: आवाज आपकी ना, आवाज आपकी बड़ी किस्तों में आ रही है मुझे, एपिसोड्स में।
3: अच्छा सर, सही आ रही है आपको आवाज?
0: जी अभी अभी ठीक आ रही है।
3: अच्छा मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोहम्मद अवैस बात कर रहा हूँ मैं, इस्लामाबाद।
0: जी अवैस साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
3: अच्छा सर, जो आपका टॉपिक है, इससे मैं ये कहूँगा कि मैंने ना, मुझे बहुत ज्यादा शौक था कबूतरों का, ठीक है, जो मेरे

0: मैं इसमें थोड़ा नाकाम रहा। मैंने बहुत इससे मतलब इन्वेस्ट किया, लेकिन मेरे दोस्तों के पास बहुत होते थे, लेकिन मैं उनसे अच्छी चीजें लाता था, मैं फेल हो गया था, इससे मैंने बहुत ज्यादा पैसा बनाया।
1: तो आप लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस दौड़ में कभी मत पड़िए।
0: बिल्कुल, दौड़ में कभी नहीं पड़ना चाहिए, कभी ना पड़िए।
1: चलिए, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।
0: बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू, बाय बाय। और वैसे जनाब, ये जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जब कॉलर्स आ रहे हैं ना, तो करेज के साथ एक चीज़ बता रहे हैं। ये करेज होनी चाहिए इंसान के अंदर, के भाई जो गलती इंसान के अंदर हो या जिस चीज़ से उसने सीखा हो उसको बयान कर सके। भाई कोई भी परफेक्ट नहीं होता है इस दुनिया के अंदर, और ये सब गलतियाँ करके हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और याद रखिए, जो इंसान गलती नहीं करता वो सीखता नहीं है, और वो कभी बड़ा इंसान नहीं बन सकता। गलती किए बगैर आप कभी भी कामयाबी तरक्की हासिल नहीं कर सकते, दिस इज अ डैम श्योर थिंग। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो, ओके जी, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम,
2: वालेकुम सलाम
1: जी सर, कैसे मिजाज हैं आपके?
2: सर मैं शहजादा बोल रहा हूँ, जुगिया से।
1: जुगिया से?
2: जुगिया से।
1: ये जुगिया किस इलाके की जगह है?
2: सर ये असल में तकरीबन मरी के इलाका है, उसमें रहते हैं।
1: एबटाबाद
2: जी, मरी का और एबटाबाद के फंटर में एक इलाका है जुगिया। वैसे हम जहाँ भी हमें जुगी मिले तो हम लगा लेते हैं।
1: अच्छा अच्छा, आप जुगी में रहते हैं बेसिकली?
2: जी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। बड़ा मुझे फैसिनेट करती थी कभी वो जुगिया ना, मैं जब कभी शुरू में जब मैं इस्लामाबाद आता था ना, तो रास्ते में मोटरवे की एक लेफ्ट साइड के ऊपर एक पूरी बस्ती हुआ करती थी जुगियों की, कच्ची आबादी की। तो मैं कभी कभार जब गाड़ी में बैठा था तो सोचा करता था कि यार मुझे कभी वक्त मिला ना तो मैं कुछ वक्त गुजारना चाहूँगा यहाँ के, किस तरह से लोग गुजारते होंगे, क्या किस तरह से लाइफस्टाइल होगा, क्या चीज़ें होती होंगी।
2: ऐसे लोगों की जिंदगी मुश्किल होती है, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ों से इंसान बच जाता है।
1: अच्छा, तो ये आपका अभी जो है पड़ाव, ये मैं कह सकता हूँ कि जो अहमदाबाद का इलाका है, नवा शहर, नवा शहर से जो नीचे पीएमए मिलिट्री एकेडमी है उसके की मिड में है, राइट?
2: ये पहाड़ी एरिया है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ भी हमें अच्छी जगह मिलती है हम जुगी लगा लेते हैं, कोई हमारी स्पेसिफिक जगह नहीं है कि हम यहाँ पे बैठेंगे।
1: अच्छा, तो आप गुजर बसर कैसे करते हैं, क्या जरिया माश क्या आपका?
2: असल में हमारा
1: बड़े इंटरेस्टिंग कॉलर हैं, लेकिन डिस्टॉर्शन हो गई जनाब। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सर आपने मुझे दोबारा कॉल करनी है, मैं आपसे बात करना चाहूंगा जी। नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, हेलो, कौन साहिबा हैं जी, कहाँ से?
3: मैं फातिमा बात कर रही हूँ, राजकृष्ण
1: से। जी फातिमा, क्या कहने आई हैं?
3: मैंने पहली दफा सुना है आपको, नाम सुना था लेकिन रेडियो लाइक प्रोग्राम पहली बार सुना आपको।
1: ओके, तो फातिमा कैसा लगा आपको?
3: मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा माशाल्लाह।
1: चले, थैंक यू सो मच। तो फातिमा क्या करती हैं आप? स्टूडेंट भी हैं और टीचर भी हैं, वेरी नाइस। तो आप इल्म बांटती हैं और हासिल करती हैं, राइट? इल्म की खेती उगाती हैं, उस फसल को काटती हैं, फिर लोगों में बांटती हैं।
3: कोशिश करते
1: हैं। कमाल कमाल। तो फातिमा क्या बताने आई हैं मुझे आप?
3: टॉपिक पे बात करते।
1: जी जी।
3: पहले ऐसा होता था, हाँ आपकी बात सही है, मुझे भी काफी शौक होता था कि जो मेरे पास हो वो किसी के पास ना हो, बहुत कुछ ऐसे सारा कुछ, लाइक घर वालों का पैसा था। जब अपना घुमाना शुरू किया फिर तलाक भी, फिर ये छोड़ दिए ये सारे शौक, फिर
1: आपकी कॉल करने का और इतना एक्सपीरियंस शेयर करने का, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ओके जनाब, एक गाना सुनते हैं जी, वापस आते हैं, मेरे साथ रही है, मुझे आज की भी कहते हैं, सुन रहे हैं आप इंटरनेशनल, और 1:25 हुए जाते हैं, बहुत सारे कॉलर्स मेरे साथ हैं, किसी ने परेशान नहीं होना, किसी ने भी परेशान नहीं होना, ठीक है ना। मैं सबको प्रोग्राम में उनका हिस्सा जो है वो लेके आया हूँ, उनको हिस्सा मिलेगा, थोड़ा हक तो मिलेगा, परेशान नहीं होना, ठीक है।

ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफा फिर खुश आमदीद। 1:32 हैं के भी आपके साथ है, वक्त जो है वो बहुत कम रह चुका है। 28 मिनट का मेरा और आपका साथ बाकी है। और आज मैंने आपको दो एपिसोड्स के अंदर दो अलग अलग सॉरी अलग अलग मौजूद जो है वो आपके सामने मैंने रखे हैं जी। एक मौजू ये रखा है कि आपने किसी को कुछ दिखाने के लिए अगर ज़िंदगी में किया है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़ेदार चीज़ें जो है वो मुझे बताई हैं जी। और एक ये कि अगर आपने ज़िंदगी में कोई उसूल बनाया है और वो उसूल आपको लगता है कि बड़ा ख़ास है, बड़ा अहम है, लेकिन लोगों की नज़र में बहुत ही फजूल और बेकार है, कोई ऐसा उसूल आपकी ज़िंदगी में है तो मुझे आप वो बता रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकली हैं देखने को सुनने को, और सब ने अलग अलग अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। और ये मौजूदात रखने का पर्पज़ सिर्फ ये होता है कि हम सीख सकें, हम देख सकें कि लोग ज़िंदगी में किस तरह चीज़ों को देख रहे होते हैं, मैं किस तरह सोच रहा हूँ, आप किस तरह सोच रहे हैं, दूसरा किस तरह सोच रहा है। जब ये सारी चीज़ें एक जगह पे क्लब हो जाती हैं तो फिर हम साइकीज़ को समझना शुरू कर देते हैं। और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में साइकोलॉजी को, दूसरों के माइंडसेट को पढ़ना, रीड करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे के माइंडसेट को रीड आउट कर लेते हैं तो फिर आप उसके मुताबिक आप उससे उसी तरह बिहेव करते हैं। बाज़ों का तो आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं लेकिन सामने वाले को अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन अगर आप वो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जो चीज़ें दूसरे को पसंद हैं, आपको भी वो अगर पसंद ना भी हो, अगर दूसरे को जिसको आप पसंद करवाना चाहते हैं अगर उसको पसंद आती हैं तो डेफिनेटली आपको वो वाला एलिमेंट ज़रूर मिल जाता है कि किसी दूसरे को आपने कोई चीज़ पसंद करवाई है, तो उसमें एक अलग खुशी होती है। जिस तरह मैंने आपको आते ही शुरू में बताया कि मैं रिसर्च करता रहता हूँ कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोग किस पे बात करना चाहते हैं, रात के इस पहर में मेरे साथ अगर कोई कनेक्ट हैं लोग तो वो क्यों कनेक्ट हैं, वो क्या मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उनसे बात करूँ। तो उस चीज़ को पहुँचने के लिए मुझे बड़ी तगोदो करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात मैं आपको अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी लोगों से गप लगा कर उनसे पूछता हूँ कि क्या सुनना चाहते हैं, आपके कॉल्स के ऊपर आपसे पूछ रहा होता हूँ, आपको मैसेजेस, आपके कमेंट्स पढ़ के मैं उससे वाइब्स क्रिएट कर रहा होता हूँ, ले रहा होता हूँ कि यार लोग क्या सुनना चाहते हैं। तो हर बंदे का जहाँ जहाँ जिस कदर जो जो एक्सपीरियंस होता है, जिस तरह का उसका ब्रॉटअप होता है, जिस तरह से वो चीज़ों को लाइक्स एंड डिसलाइक्स उसने ज़िंदगी में किया होता है, उसको वही चीज़ें पसंद आ रही होती हैं। नई चीज़ें मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूँ कि लेकिन फिर भी आपको कोई भी चीज़ सुन रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर कोई पते की बात हो रही है किसी जगह पे, तो आप उसको एक दफ़ा उसकी डेप्थ के अंदर ज़रूर आप डाइव इन कीजिए। आपको उससे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा कि जो आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर देगा। चाहे आप अच्छा सुन रहे हैं, चाहे आप बुरा सुन रहे हैं, चाहे कहीं अच्छी कॉन्वर्सेशन हो रही है, चाहे कहीं बुरी कॉन्वर्सेशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसको एक दफ़ा आप अपने लेंस से ज़रूर गुजारिए। और फिर आप उस लेंस से गुजारने के साथ उसको फिल्टर आउट कीजिए कि कौन सी चीज़ें अच्छी थी, कौन सी बुरी थी, तो आपका अपना एक एस्थेटिक डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जब वो एस्थेटिक डेवलप होगा तो फिर आप राइट एंड रॉन्ग के अंदर डिफ्रेंशिएशन कर सकेंगे। अब यकीन जानिए इसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जो मेरी फील्ड है उस फील्ड के अंदर मुझे मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलना होता है, डेली कुछ नए लोगों से मिलना होता है, उनसे वाइब्स लेनी होती हैं, उनको चीज़ें अपनी पिच करनी होती हैं, उनको बताना होता है कि ये चीज़ें इस तरह से हो रही हैं और मैं ये चीज़ें करता हूँ, और सामने बैठा हुआ शख्स होता है, मैं उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता हूँ या उससे वाइब्स ले रहा होता हूँ या उसको परसीव कर रहा होता हूँ ऐसे कि यार अच्छा ये जो सामने वाला शख्स है ये मेरी बात किस हद तक सुन रहा है, इसको मेरी बात किस हद तक समझ में आ रही है, या ये मुझसे क्या चाहता है। जब मैं ये जान लेता हूँ या समझ जाता हूँ कि ये मेरे सामने वाला जो शख्स बैठा है ये मुझसे क्या चाहता है, और अगर मुझे लगता है कि जो मुझसे ये चाह रहा है ये मैं इसके लिए कर सकता हूँ या मेरे लिए वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो यकीन जानिए मैं थोड़ा सा भी एफर्ट पुट इन करता हूँ उसको एकदम समझ आती है कि यार ये चाहिए था, बस ये ही मुझे चाहिए था। और उस सारी चीज़ों को जो उसके साथ मेरा कनेक्शन डेवलप होता है या जो हम चीज़ें फिर प्रॉफिटेबल बनाते हैं, उस सब चीज़ों के पीछे सिर्फ एक ही साइंस होती है कि मैं उसकी साइकी को समझने की कोशिश करता हूँ कि उसको क्या चाहिए। क्योंकि हमें पढ़ाया गया, हमने सीखा कि जब कभी भी आप किसी को कोई चीज़ सेल कर रहे होते हैं या कोई चीज़ आप मार्केट कर रहे होते हैं तो आपने हमेशा यू एटीट्यूड रखना होता है, वी एटीट्यूड नहीं रखना होता कि मुझे क्या चाहिए, ये आपने नहीं बताना या ना ये आपने इसको अपने माइंड सेट में रखना है। सामने वाले को क्या चाहिए आपने अगर वो पूरा कर दिया तो आपको जो चाहिए वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाना है। उसको आप अपनी नज़र में मत रखिए कि आपको क्या चाहिए, सामने वाला जो आपको वो दे सकता है अगर आपने उसको वो दे दिया कि जो उसको चाहिए तो आपको जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाना है। सो इसलिए हमेशा
ये एटीट्यूड रखें कि सामने वाले को आप क्या देना चाहते हैं। लाइक कि अगर मैं कहूं कि अब मैं इस माइक्रोफोन पे बैठा हुआ आपको जो चीज़ सेल कर रहा होता हूं, दैट इज़ माय वर्ड्स, दैट इज़ एंगेजमेंट, दैट इज़ कि मैं आपके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं, तो अगर मैं आपको वो सुनाने के काबिल हो जाता हूं या मुझे वो समझ आ जाता है कि मैंने आपको क्या सुनाना है या आपने क्या सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको वो सुना दूंगा एक दफ़ा, तो जो मुझे चाहिए ना वो सब मुझे मिल जाएगा, कि मेरा एक अच्छा क्वालिटेटिव टाइम भी गुजर जाएगा, मेरी ड्यूटी भी फुलफिल हो जाएगी, मेरी मैनेजमेंट भी हैप्पी हो जाएगी, मैं भी हैप्पी हो जाऊंगा, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। और उस सारी चीज़ को हासिल करने के लिए जो चीज़ मैंने करनी है वो आप सब लोगों को एक अच्छा सुनाना है, और जब तक मैं समझूंगा नहीं कि आपको क्या चाहिए तब तक मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। सिर्फ आपको मैंने एक एग्जाम्पल दी है। इस तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हमें किसी से कुछ भी चाहिए ना, आप याद रखिए, आपको ज़िंदगी का उसूल बता रहा हूँ कि आपको दुनिया में किसी से कुछ भी चाहिए, आप ये समझ लें कि उसको आपसे क्या चाहिए। अगर आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं, ये गिव एंड टेक की दुनिया है, अगर आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो आपको जो चाहिए वो आपको ज़रूर मिल जाएगा, चाहे वो चीज़ मादियत में है, चाहे आप साइकोलॉजिकली उसके लिए कुछ कर सकते हैं, चाहे छोटी सी खुशी उसके लिए पैदा कर सकते हैं। कुछ लोगों को दूसरों के काम आने में खुशी मिलती है, तो अगर आपको लगता है कि यार ये शख्स सिर्फ इसलिए मेरे साथ कर रहा है कि अगर मैं इसकी हेल्प आउट कर दूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, तो आप अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप उसके मुताबिक अगर चलेंगे तो आपको वो हेल्प ज़रूर करेगा। अगर आपको लगता है कि यार ये जो सामने वाला शख्स है इसको अपनी मैनेजमेंट को बहुत अच्छी चीज़ें दिखानी है, या इसने अपनी जॉब बड़ी अच्छी सिक्योर करनी है, या लोग उसको वाहवाह करें, उसको अगर वो चाहिए तो आप उसके लिए कुछ ऐसा करें कि आपकी वजह से उसको वाहवाह मिले, तो वो आपके लिए सब कुछ कर गुजरेगा, सब कुछ करेगा आपके लिए। सो ज़िंदगी में उसूल बना लें, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो आपका कारोबार है, चाहे वो आपकी नौकरी है, चाहे वो आप कुछ भी है आपके लिए, आप दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना सीखिए। और जो चीज़ आपसे दूसरा मंतज़र है आपसे करवाने के लिए, एक दफ़ा आप वो करके देखिए, आप जो चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाना है।

0: तायरा मसूद मेरे साथ हैं जी, सलाम करें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और कॉलर्स, हाँ जी कॉलर्स, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम। अरे इरम, इरम इतनी थकी हुई क्यों है? क्यों इतना ढीला ढीला बोल रही है?
1: नहीं भाई, अब आवाज ठीक आ रही है।
0: बस एक दफा आप कहें पाकिस्तान जिंदाबाद ऊंची आवाज में।
1: पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: नहीं ऐसे नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसे नहीं, सबक नहीं पढ़ना आपने ऊंची आवाज में।
1: पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: यस, अब आप जागी हैं ना इरम, क्या हो गया, नींद आ रही है?
1: जी सर, अभी लाइट नहीं है हमारे यहाँ।
0: अच्छा लाइट नहीं है तो फिर तो नींद नहीं आ रही होगी।
1: नहीं वैसे भी नींद आती नहीं है, हम आपका प्रोग्राम तो सुनते।
0: अच्छा नींद नहीं आती, नींद क्यों नहीं आती आपको?
1: बस मेरे भी अब ये रूटीन बन चुकी है 2 बजे से।
0: अच्छा ओके, तो इरम क्या करती हैं आप?
1: कुछ नहीं, बस घर में फारिग।
0: अच्छा घर में फारिग रहती हैं आप?
1: बस आप लोगों का ये जो प्रोग्राम होता है ये रेडियो पर सुनते
0: हैं। ओके, तो अब दोबारा नहीं सुना, मैं एक दफा फिर नारा लगवा दूंगा, ठीक है?
1: नहीं नहीं नहीं सर, तो टॉपिक पे आते।
0: हाँ जी आ जाए आ जाए।
1: टॉपिक पे ये बात है कि मुझे ऐसा कोई मतलब है ब्लाउजर नहीं करना पसंद नहीं,
0: शो ऑफ करना पसंद नहीं।
1: नहीं ये जो दूसरों को दिखाना वगैरह ये कुछ लेना वगैरह,
0: अच्छा
1: ये कुछ मुझे नहीं पसंद। वैसे भी इंसान को ना चादर देख कर पैर फैलाना चाहिए।
0: अच्छा कोई तो ऐसा है जो मुझे कहे मुझे शो ऑफ करना बहुत पसंद है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा।
1: जी जी अच्छा सच में बहुत अच्छा।
0: चले ठीक है, हम खुश रहे, आबाद रहे, हंसती रहे, मुस्कुराते रहे।
1: बहुत खुश हुई कि आप दो प्रोग्राम करेंगे भाई। और सब सुनने वालों को सलाम अनिल आपी को भी और मारी आपी निशाला आपी शायद आपी को भी
0: सलाम नहीं देने बस, ठीक है? सलाम के ऊपर सब पाबंदी है।
1: आपने पिछली बार मैंने आपको एक सॉन्ग कहा था, आपने रेडी पे भी किया था।
0: अच्छा कौन सा गाना?
1: मैंने पिछली बार आपको कहा था आतिफ असलम का, लेकिन इस बार ये जो फिर आपने पहले गाना लगाया था ना, सिंगर का मुझे नाम नहीं आ रहा, उसका गाना था कि मैं रख फुला के पैर सबके मौजूद।
0: अच्छा अच्छा इरम, होता ही है ना कि मेरा प्रोग्राम जो है वो सॉन्ग्स वाला प्रोग्राम नहीं होता और मुझे गाने निकालने में ना बड़ी कोफ्त होती है। पता है आज मेरे प्रोग्राम से पहले ना यूसुफ भाई बैठे हुए थे, तो उनको मैंने कहा यूसुफ भाई एक अच्छी सी लिस्ट बना ले, तो आज जितने भी गाने आप सुन रहे हैं ना वो सारे यूसुफ भाई की कारिस्तानी है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा टेस्ट बहुत बुरा है।
1: कोई बात नहीं, आप अपनी मर्जी का उन दोनों को आपियों को जो है ना डेडिकेट कर देना।
0: चलो ओके,
1: नाम लेकर
0: ओके रम, ओके रम, बाय बाय। ओके जी 15 मिनट बाकी हैं जी कॉलर मेरे साथ।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम।
2: जी मैं अब्दुल अमीर चौकाबा हरचंद गांव से बर्फी आला, ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, बर्फी वंगो मिठे हो, की हाल है तुहाडा?
2: वाह अल्लाह का शुक्र है। मैं ना सच्ची गल ते मैं झूठ नहीं मारता, मैं दाखल कमाया, मैं क्या कोई ना कोई शो लगा ते वन वन ना दोस्ती बड़ी है वाकई, मैं क्या कोई प्रोग्राम तो लगा ही होगा ना वन वन ते आपकी आवाज सुनी ते यकीन करो मैं जो दवाज दवाज नु मंगदे ना ते जिन्ने साडे मेंबर आ कालर आ वन वन दी टीम सारे वास्ते दिल च रखे, सारे वास्ते बहुत सारी दवा मंगी। चंगे चंगे मौजूद दसे कहिंदा यार मंगी ना, मैं कहा मैनू लियांदा चाहिदा, मैं कहा जे मैनू कोई चंगी सह सुनन नूं इत्थे आ आ तवा, मैं कहा उत्थे फिकरे आखर सी ते मैं कहा आ दवे ना यार तवा, मैं जरा डिस्क ला उहदे चंगी लगे दिल नू मंग लवे तो फिर ना नहीं होंगी, फिर इवें दलमां दियां कैसटां वगैरा ते भाजी साडे वास्ते बहुत सारियां दवा, सारे कलर आ गए हुण नीला भी आ रही है, कहिंदा माहौल आई है
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो नेक्स्ट कॉलर है जी मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम,
1: कैसे हैं भाई?
0: बड़ी मुश्किल से बुलवाना पड़ रहा है आपको, आपको भी नारा लगवाऊं मैं? चलो तो ऊंची आवाज में बात करें, कौन कौन सोया हुआ है अड़ोस पड़ोस में?
1: सब सोए हैं, तो जो है ना वो तो बहुत सख्त डांटते हैं।
0: अच्छा, नाम क्या है मोहतरमा का?
1: डॉक्टर
0: सादिया अवान। अबू का क्या नाम है? अबू का क्या नाम है आपकी? हाँ, इतना सोचना क्यों पड़ रहा है आपको, बताइए।
1: ताज,
0: ताज साहब देख लो, तुहाडी बच्ची फोन करी जा रही है रेडियो थे। ताज सफदर, सफदर अंकल, ये बंदी जो है ना फोन कर रही है डॉक्टर साहबा, लेकिन डॉक्टर साहबा जो है वो ऊंचा नहीं बोल रही, क्या चक्कर है, आपने डरा के रखा है? अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपको एक आज डेयर दिया जाए, अच्छा नहीं, अगर आपको एक डेयर दिया जाए तो आप कर लेंगी पूरा? पक्की है आप डेयरेंगे? आप डेयरेंगे वैसे आप? जी हाँ,
1: नहीं,
0: आज तो शहीदों का नहीं दिन था, आज तो 7 सितंबर थी, कल था।
1: आज उनका था ना, जो जंग जीत कर आए थे, तो उनका था, आज इनका था।
0: अच्छा अच्छा,
1: आप न्यूज नहीं सुनी?
0: हाँ अच्छा, आप डॉक्टर साहब का बैलेंस मुक गया, वरना मैं ताज साहब ने जरूर जगाना सी। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम,
1: कैसे हैं खुरम? वेलकम।
0: अरे कैसी हैं नीला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। हमारे जो जख्म थे ना हरे हुए हुए थे, आपने मरहम लगा दिया थे।
0: नमक छिड़क दिया?
1: नहीं, मरहम लगा दिए, एक खूबसूरत अच्छे अर्जे आ गए। और दूसरी बात ये कि हम हसनैन को बहुत मिस कर रहे हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। जैसे आप एक मेरे फेवरेट और खूबसूरत और बेहतरीन आरजे हो, इसी तरह हसनैन भी बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत आरजे।
0: अनिला ये ना कहो, ये बातें तो सबको कहती हो आप।
1: नहीं, मैं सबको नहीं कहती हूँ, मैं हर किसी की आवाज की तारीफ भी नहीं करती, हर किसी की बाकी चीजों के ये किया वो किया वो नहीं, इतना नहीं मैं करती हूँ। मैं शो की तारीफ जरूर करती हूँ अगर अच्छा हो रहा हो तो।
0: मैं क्यों मन्ना?
1: आपकी एक तो मुझे आते उनके शो में उनकी आवाज बहुत पसंद है, वो शायरी पढ़ते हैं, अच्छी खूबसूरत शायरी। एक आप बहुत जबरदस्त गुफ्तगू करते हो, बड़ी अच्छी आवाज के साथ। आपकी आवाज पता है, मेरे बड़े भाई है चीफ मार्शल, उनके जैसी आवाज है उनकी।
0: अच्छा तो आपको तब पसंद है, मैं आपके बड़े भाई की तरह बात करता हूँ, राइट? बाकी वो गल है नहीं।
1: जैसे तो शुरू शुरू में मैं आपको ना आपके जो शोज थे ना, स्टार्टिंग शोज जब आपने मतलब शुरू किया ना, तो मैं ना सिर्फ आपकी आवाज ही सुनती रहती थी। अच्छा। है कि ये ताहिर भाई तो नहीं आ गए, बिल्कुल आवाज वैसी है, कुछ भी कर सकते हैं।
0: अच्छा
1: करती रहती थी और फिर मैं सुनती भी रहती थी। फिर ऐसे ऐसे एक दफे जब आपका शो चल रहा था, मैं ताहिर भाई को फोन कर लिया। मैं ताहिर भाई कहते मैं क्या सो रहे हाँ ना, मैं क्या अच्छा सो रहे खैर है, मैं क्या हाँ खैर है खैर। मैंने क्या कन्फर्म वहम पड़ गया था ना मुझे।
0: अच्छा
1: तो बस आपके शोज भी बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, बड़ा मजा आता है। अब जो आज ये कहना चाहिए कि हर शो में जाके आरजे की तारीफ करते हैं सारे कॉलर, फरमाइशें जो करते हैं मुझे वो पसंद नहीं है। तो आप अपने खुद ही लगा के गाने सुन सकते हैं, फरमाइशों की जरूरत नहीं है। और जो आरजे इतना सारा जो काम कर रहा होता है, 2 घंटे आके वो प्रोग्राम कर रहा होता है, तो उसकी तारीफ, अगर वो अच्छा प्रोग्राम शो कर रहा है तो बनता है कि उसकी तारीफ की जाए, उसको हौसला अफजाई के लिए बताया जाए आके कि भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो।
0: बड़ा जरूरी होता है, कोई वो बड़ा जरूरी होता है अनिला, बहुत जरूरी होता है। अगर हमसे कोई पूछे ना, तो मुझे प्रोग्राम ना जब मैं करके यहाँ से जाता हूँ, जब आपका फीडबैक बहुत अच्छा होता है ना, और जब मेरी आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगु हो रही होती है, या जो मुझे आप सोशल मीडिया पे फीडबैक दे रहे होते, तो मुझे ना मजा आता है। और मैं जब निकलता हूँ ना या स्टूडियो से बाहर, तो थोड़ी देर के लिए दुनिया मेरे लिए बड़ी माउस सी होती है, मैं इसी दुनिया में होता हूँ, और थोड़ी देर बाद सास होता नहीं यार फिर मोड़ तू मुड़ आया चल चल उठे चलिए जिथे तू चले सी है चल उठे चलिए जिथे तू चले सी।
1: लेकिन पता है ऑक्सीजन का काम जैसे कहते हैं ना, ऑक्सीजन का काम दे रहा होता है हमारा फीडबैक और जो हम आके गुफ्तगु करते भाई, आफ्टर ऑल हम चाह रहे होते हैं, हम एंटरटेन हो रहे होते हैं, हमें इतना अच्छा आप लोग जो है ना अप्रिशिएट करते हो, हौसला देते हो, हमारे आने पे खुशी करते हो कि इतने अच्छे कॉलर आ रहे हैं, आप खुश होते हो, हमारा हिस्सा जो है आप अच्छा करके कबूल करते हो आना, तो हमारा भी काम है कि हम एक अच्छा आदमी जो अच्छा काम करे उसको आके हौसला देने के लिए उसकी दाद दे उसके प्रोग्राम की, उसकी करना चाहिए।
0: चलो अनिल सुन लो एक काम करते हैं
1: जी, जी.
0: अभी आपने मुझे बताना है कि आपके सबसे ज्यादा फेवरेट आर्जेस कौन से हैं, मैं ये रिकॉर्ड करूंगा और ये मैं ना डाल देना है सोशल मीडिया पे, ये सोच के बताना मुझे।
1: इस्लामाबाद के, इस्लामाबाद के आर्जेस जो है उनमें मेरे फेवरेट आर्जेस सबसे पहले तो एसएन मलिक, जिनकी वजह से मैंने 101 सुनना शुरू किया
0: और उनका प्रोग्राम भी मैंने ले लिया। हाँ
1: आपने तो उनका प्रोग्राम आपने ले लिया, हम बड़ा सड़े हम दूर सड़े कोरम, हमें बड़ा गुस्सा आया बेटी ये कहाँ से आ गए।
0: अच्छा फिर क्या हुआ?
1: उसके बाद हमने 2, 4, 5, 6 प्रोग्राम आपके 10 प्रोग्राम तकरीबन सुने, उसके बाद मैंने कहा नहीं बंदा काम अच्छा कर रहा है,
0: बाकजाए मजबूरी। हाँ
1: नहीं नहीं उस वक्त फिर नहीं, पहले हम सुन रहे थे मजबूरी मजबूरी में, लेकिन उसके बाद हम कुछ कॉलर्स के साथ भी मेरी गुफ्तगू हो रही थी, वो भी मुझे बता रहे थे कहते हैं ओ क्या बात थी एसन की, ये नहीं वैसे उनकी जगह ले सकेंगे। हाँ देखिए ना, हाँ वाकई देखते हैं, चलो देखो क्या करते हैं। अच्छा सुनते रहे सुनते रहे, नहीं बंदा चढ़ जाएगा भाई, खा जाएगा करेगा करे अच्छा काम करे, अब तो ये बहुत जबरदस्त शो रौनक लगनी शुरू होगी भाई, और इतने ज्यादा कॉलर भी शुरू हो गए आपके पास आने, और बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम होता चला गया आपका, नो डाउट आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे थे, बड़े अच्छे आप बीच में जो लेके आते हैं गेम्स ले आते हैं, कोई टेयर ले आते हैं, वो मुख्तलिफ चीजें बहुत मजा आता था, और मैंने तो आपके शो में एक गेम भी जीती थी शायद आपको याद होगा।
0: जी जी जी आपको गिफ्ट मिला था,
1: मुख्तलिफ आप चीजें करते हैं। हाँ आपने मुझे गिफ्ट दिया था, बड़ा खूबसूरत गिफ्ट भेजा था आपने मुझे, और मेरे पास अभी तक मौजूद है।
0: वेरी नाइस ग्रेट,
1: तो थैंक यू। और ये कि आपका शो पे उसके बाद फिर मुझे सज्जाद खान का शायरी का प्रोग्राम सुनना बहुत पसंद था, वो बहुत अच्छा बोलते, बहुत अच्छी उनकी जो ना शायरी पढ़ने का अंदाज बड़ा खूबसूरत होता था।
0: ओके
1: तलफ्फुज़ बहुत अच्छा, हम उनसे सीखते थे, बहुत खूबसूरत पढ़ते थे। फिर उसके बाद रौनक लगाते थे सलमान खान, उनके शो में बड़ी रौनक लगती थी, मजा आता था, एंजॉय करते थे रौनक उनके शो में। फिर हसनैन रजा मेरे फेवरेट आर्टिस्ट है, वो इतना अच्छा प्रोग्राम करते थे, पहले शुरू शुरू में पता मैं उनको भी सुनती थी, मैं घबराती होती थी ये बंदा बड़ा स्ट्रांग है भाई, बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का लगता है।
0: अच्छा
1: वो अपने बड़े पक्के होते थे अपने टॉपिक पे, उस पे कायम रहते थे, कोई भी आता था बड़ा कुछ सीखने को मिला, डिसिप्लिन और बहुत सी चीजें उनसे सीखने को मिली, बहुत खूबसूरत जैसे कहते हैं ना दिल चाहता था कि उनके प्रोग्राम को सुना जाए और सीखा जाए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी वो देते थे बहुत सारी चीजों की ना, तो हमने बहुत मिस कर रहे हैं और करेंगे भी। उसके बाद आप है और सॉरी इमरान अली मानी, तो फिर आपको पता है बहुत ग्रेट, बहुत ग्रेट। वो अभी तक हम सबके दिलों में है, हम उन्हें अभी तक नहीं भूल सके, अल्लाह उनको जवारे रहमत जगह अता फरमाए। और उत्तरी है कि आपने भी मेरे दिल में जगह ले ली है, आतिर ने भी, और हसनैन रजा जब चले गए, देखे ना अब ऐसे फील हो रहा है जैसे पता नहीं क्या हमारे साथ हो गया, इतने अच्छे अच्छे जो आज इस बीच में से चले गए हैं ना, तो बड़ा अजीब लग रहा है।
0: हसनैन ने जो प्रोग्राम छोड़ा है ना अनिला, उन्होंने उन्होंने एक रीजन जो उन्होंने बताई है, जो जिस रीजन को एक हमारा ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर वो शेयर उन्होंने की है जब लोगों ने लास्ट मैसेज किया, तो मैंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया और मुझे लगा कि यार स्नैन बड़ा अच्छा काम करते रहे और जाते जाते भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने उन्होंने लिखा कि मैं अपनी सीट जो है वो छोड़ रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यू टैलेंट, कि नया टैलेंट आए और नए टैलेंट को मौका मिले, हम कितना अरसा बैठे रहेंगे। So very, ये very, very ये bad. बहुत बड़ी बात है उसनैन की, कि उसनैन ने किसी दूसरे के लिए एक पोजीशन छोड़ी है,
1: बहुत बड़ी बात,
0: दैट्स वेरी ग्रेट। लेकिन अब क्या हो गया, वो उन्होंने पुरानी मुंडी को बगड़ा दिया।
1: लेकिन ये वाली भी तो बड़ी कमाल है ना।
0: बस तो फिर आपने अनिला आइंदा से कोई फेवरेट नहीं रखना अपना, वरना जिथे जिथे फेवरेट तू पाड़ा है ना, उधर तो मैं पहुंच जाना है।
3: ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰਿਟ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼
0: ਚੱਲੇ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ
3: ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਮ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ ਨਾ ਇਧਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਿਤਨੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਆਜਿਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਆਪ ਹੈ ਸਨੇਹ ਨੇ ਆਤੇ ਰਹੇ ਐਸਨ ਮਲਿਕ ਥੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਰੌਣਕ ਲਗਾਤੇ ਥੇ ਸੱਜਾਦ ਖਾਨ ਮਾਨੀ
0: तो होता ये है वन ओ वन की पॉलिसी ये है कि जब मॉर्निंग में लोग पॉलिश हो जाते हैं तो फिर उनको नाइट्स के प्रोग्राम्स में शिफ्ट किया जाता है तो आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत अच्छी आवाजें आपको सुनने को मिलेंगी बहुत अच्छे लोग आपको देखने को मिलेंगे नया कंटेंट ले जाएंगे नई चीजें
3: लाहौर में भी देखे ना लाहौर से जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें इतने सुपर डुपर आरजे आ रहे हैं डॉक्स हैं वसीम अहमद है रहमान है ज्यान जुम है फरहान खान है मतलब बहुत खूबसूरत और बड़ा अच्छा वो लेके आते हैं सारा माहौल इतना खूबसूरत हुआ था ना
0: चलो और ज्यादा कोई तरीफा नहीं हो गया लोग कह रहे हैं कि लगे
3: नहीं मैं इसलिए कह रही हूँ लाणिया ने जिथे भी लाणिया लाओ पता चले 101 सुपर डुपर है 101 के सभी आर्टिस्ट चाहे इस्लामाबाद से है चाहे लाहौर से सुपर डुपर है कमाल काम कर रहे हैं आप लोग अच्छी रौनक लगाते हैं
0: थैंक यू सो मच नीला आप भी हमारा एक एसेट है और डेफिनेटली जब आप आती हैं प्रोग्राम अच्छा होता है थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का
3: थैंक यू सो मच और मुझे ये कहना है कि जो चीजें बार दफा होता है ना लोगों में कि हम ये ब्रांड के कपड़े पहन के मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है इतने शौकिया इन चीजों का मुझे कोई नहीं होता लेकिन जब मैं ड्रेसेस पहन के जाती हूँ ना तो आप पे ही शौकी हो जाती है वो कहाँ से लिए अच्छा ये फ्लावर हाय ये बड़ा अच्छा है अच्छा इसमें और कलर है और थे ऐसी फिर मैं कहती हूँ सड़ो
0: अनिला अनिला अनिला सुनो
3: जी जी
0: चल मेले नू चलिए अनिला चल मेले नू चलिए क्या मेला लगाती है अनिला थैंक यू सो मच अनिला फॉर कॉलिंग मी और अनिला जब भी प्रोग्राम में आती हैं जी बड़ा क्वालिटेटिव टॉक उनकी होती है हमेशा से कुछ मेरे बड़े क्वालिटेटिव कॉलर्स हैं उनमें अनिला को शुमार होता अनिला सभी की फेवरेट है जी तो चल अनिला मेले नू चलिए

ये सुनते सुनते दिल कर रहा है कि मैं ये कहने लगूं कि चल सोने नू चलिए, हुण वेला हो चला सोने दा, चल हुण सोने नू चलिए।

0: एक आखिरी कॉलर, मैं चाहूंगा कि ऐसा वाला कॉलर हो कि जो मेरे प्रोग्राम को अच्छा सेंड कर दे। अब मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी लाइन से पिक करूं। और कौन है मेरे साथ जी, आखिरी कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
1: मैंने दूसरी बार कॉल की है।
0: कौन बात कर रही है?
1: आयशा बात कर रही हूँ। आयशा
0: थैंक यू, आयशा थैंक यू, बाय बाय। दूसरी दफा जो है ना वो मौका नहीं मिलता जी। मेरे प्रोग्राम का ये भी उसूल है ना, अजीब सा उसूल है भाई, दूसरी दफा गल नहीं करनी। एक अच्छा उसूल है ना, किसी और को मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैंने कह दिया कि प्रोग्राम की आखिरी कॉलर थी तो बस ये आखिरी होंगी, ठीक है ना? आपने आखिरी कॉलर थे तो बस आप आखिरी थे। तो हम इसी बात पे इत्तेफाक करते हैं जी कि जहाँ भी रहें आप खुश रहें, सुखी रहें, आबाद रहें और मोहब्बतें फैलाएं, मोहब्बतों के साथ चलें। और ये जो फोरम है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आके हमारी कोशिश रहती है कि हम मोहब्बतें बांटें। बहुत सारे लोगों के आपस में यहाँ से कनेक्शंस बनते हैं, बहुत सारे लोग आपस में अपनी मोहब्बतें बांटते हैं और हम सब एक फैमिली की तरह यहाँ पर रहते हैं। और इख्तलाफ़ राय होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, फैमिलीज़ के अंदर भी इख्तलाफ़ राय होता है। वो वैसे ना आप रियलिटी शोज़ अगर आपने देखे हों, आपको पूरी दुनिया के अंदर रियलिटी शोज़ होते हैं, आजकल पाकिस्तान में भी एक रियलिटी शो चल रहा है, तो उसके अंदर ना बड़ी लड़ाइयाँ दिखाई जाती हैं, बड़े गुस्से दिखाए जाते हैं, फिर उनका पैचअप दिखाया जाता है, फिर मोहब्बतें दिखाई जाती हैं। तो यही घर की खूबसूरती होती है कि घर के अंदर इख्तलाफ़ राय भी होती है, घर के अंदर गुस्सा भी होता है, घर के अंदर मोहब्बत भी होती है। और जहाँ सिर्फ मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत होना तो वहाँ वो घर नहीं बनता, और जहाँ सिर्फ नफ़रत नफ़रत लड़ाई लड़ाई हो तो वो भी घर नहीं बनता। तो मुझे खुशी हुई कि यहाँ पे इख्तलाफ़ राय भी रखी जाती है और लड़ाइयाँ भी होती हैं यहाँ पे, और ऐसे ऐसे लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन जी सबके लिए बहुत सारा प्यार इस प्लेटफॉर्म की जानिब से, बहुत सारा प्यार सभी लोगों के लिए। सभी लोग काबिल एहतराम हैं, सभी लोग हमारे दिल के, वो कहते हैं ना हमारे दिल के टोटे हैं, तो सबके सब हमारे दिल के टोटे हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मेरे लिए, मेरे प्रोग्राम के लिए सबसे खास लोग होते हैं आप सारे लोग जो सुन रहे होते हैं, मेरे लिए आप ही मेरा एसेट हैं। और होपफुली आज का जो दो घंटे का प्रोग्राम था ये आपको पसंद आया होगा। और आखिर में जाते जाते मैं एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगा कि जी आप हुसनैन रज़ा के जितने भी जो हैं वो लिसनर्स हैं, सुनने वाले हैं, उन्होंने प्रोग्राम जो है वो छोड़ दिया है, और आइंदा से जो है वो जो मंडे वाला प्रोग्राम होगा वो मेरे साथ आपका होगा। मुझे आर जे के बी कहते हैं, और आप मुझे फ्राइडे को 12 से लेकर 2 बजे तक 101 इंटरनेशनल में, और मंडे को 12 से लेकर 2 बजे तक 101 इंटरनेशनल में आप सुन सकेंगे जी। और अगर आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं, अगर आप प्रोग्राम में कोई बेहतरी चाहते हैं, अगर प्रोग्राम में आप इख्तलाफ़ राय रखते हैं तो खुल के बताइए मुझे। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो खुल के बताइए मुझे, मैं ओपन हार्ट के साथ, ओपनली, ओपन फेस के साथ उस सारी बातों को सुनने के लिए, ओपन माइंड के साथ सुनने के लिए तैयार हूँ जी। और मैं चाहूँगा कि मैं आपके लिए वो कंटेंट प्रोड्यूस करूँ जो कंटेंट आप सुनना चाहते हैं। आपके दो घंटे, ये आपके दो घंटे हैं, मैं आपके लिए वो चीज़ें रन करूँ, मैं इस गाड़ी को इस तरह से चलाऊँ जिस तरह से आप इसको चलाना चाहते हैं। तो मुझे अगर आपको फीडबैक देना चाहते हैं सो डू लेट मी नो। और आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, दैट इज़ kb.baig। आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिखेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा जी, आप मुझे वहाँ बता सकते हैं। आप मुझे मेरे स्टूडियो में कॉल करके मुझे बता सकते हैं, दिन को सुबह बताना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन टीम सारी बैठी होती है, आप उनको बता सकते हैं, या कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनको बता सकते हैं। पर्सनली अगर आप मुझे डायरेक्टली बताना चाहते हैं तो आप kb.baig लिखेंगे आप इंस्टाग्राम पे, मैं आपको मिल जाऊंगा, आप मुझे वहाँ पे इनबॉक्स में तमाम चीज़ें बता सकते हैं जी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जो जो लोग मेरे साथ शामिल हाल रहे, सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने मुझे फेसबुक पे कनेक्ट किया, जिन लोगों ने मुझे टेलीफोन कॉल पे कनेक्ट किया, जिन लोगों ने 447 पे कनेक्ट किया, सभी का बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने कनेक्ट नहीं किया, साइलेंटली सुना है, उनका भी बहुत शुक्रिया। उनसे मैं कहूँगा कि खामोशी तोड़ो, ठीक है ना? तो फीडबैक ज़रूर दो, क्योंकि फीडबैक ही लाइफ होती है एज़ पर अनिला और एज़ पर मी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। मुलाकात होगी आपके साथ जुम्मे की रात को, तब तक के लिए दीजिए केबी को इजाजत। केबी साइनिंग आउट, बाय बाय।

ساعت امر شعور ذات راستہ بنانے دے راستہ بنانے سے راستہ

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101.

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101 FM.

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.